0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉक्टर शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की यह सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर

0: पटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री पटेल चेन्नई भी जाएंगे और आईआईटी मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर नीट PG की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ के स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce at Delhi University yesterday evening. Mr. Modi said, India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said, India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said, the world is watching India become the fastest growing major economy.
2: Duniya Bharat ko fragile 5 bata rahi thi. आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister detailed that between April and June, electricity production increased by 9%. Mr. Modi said overall vehicle sales surged by over 20% during the period, driven by 20% growth in two-wheelers and nearly 30% in three-wheelers. He stressed that an 8% increase in steel and cement consumption proves that construction, housing and commercial activity are expanding rapidly. Mr. Modi shared that

जी, प्रोग्राम अमृत वेला दे तहत हुणे तुसी शब्द सरवण कीता आवाज़ सी भाई कमलजीत सिंह रागी दी, और अगला शब्द असी सरवण करन जा रहे हैं आवाज़ है भाई गुरमेल सिंह रागी दी।

कुछ आवाजें दिल में उतर जाती हैं, कुछ आवाजें दिल में उतर जाती हैं, बिना छुए ही अपना बना जाती हैं। चेहरे तो भूल जाते हैं अक्सर, मगर कुछ आवाजें उम्र भर याद आती हैं।

जी हाँ श्रोतियों, आवाज़ वाकई ही जो असि किसी खास की सुनते हैं तो फिर साढ़े मन तो सुकून पहुँचता ही पहुँचता है, और फिर वो आवाज़ के जो एहसास प्यार मुहब्बत का इकरार होंगे उसका भी सानू उस वेले ही पता लग जाता है, क्योंकि आवाज़ से उसके अंदाज के सानू सामने वाले की तबीयत का पता लग जाता है। सो आकाशवाणी एफ एम बठिंडा भी तुहाड़े पैगामा तो उसकी छनछनाहट तो और उसकी खुशबू तो पहचान लेंदा है कि साडे श्रोते साढ़े आकाशवाणी एफ एम बठिंडा के प्रोग्राम पैगाम नू किन्ना प्यार कर रहे हैं। सो उन्हां दे प्यार ते उन्हां दे इस खूबसूरत जे पैगामा नू सदके जाते हुए विजय लक्ष्मी कोल फिर श्रोतियां दे मुखातिब हुई है। प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब ते गुड मॉर्निंग दे नाल प्रोग्राम पैगाम 77173 ते बहुत सारे पैगाम अज भी मेरे को पहुंचे हुए हैं, तो उन्होंने पैगामा नू गीत एंड संगीत नू लेके एक बार फिर सारे श्रोतियों के मुखातिब 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते तुहाड़ी दोस्त ते होस्ट विजय लक्ष्मी एक बार फिर सारे श्रोतियों का करती है जी बहुत बहुत स्वागत।

शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सीमिया रोड गली नंबर 3 नेड़े पिंड गिलपत्ती बठिंडा तो अमरजीत सिंह सिद्धू, अमनजीत कौर सिद्धू, वंशमीत कौर सिद्धू और मीता सिद्धू कर रहे ने पैगाम। प्रोग्राम पैगाम दे विच कहिंदे, सच्ची कोल मेरे जद होवे तू, मेरे जच के नाल खड़ोवे तू, मेरे दिल दियां बुझ लैना है पर अपने दुख लुकोवे तू, तेरे सुपने विच वी जे आवां मैं उठ के तेल बरूही चोवे तू, मेरी खुशी दिखा तिरहाण दिया मेरे लिए हासे हंजुआ कोलो खोवे तू, हथा विच हथ फड़ के मेरा सजना वे बै हमदर्दी दे रहार परोवे तू, अपने दिल दियां सिद्धू दस्ता नहीं पर मेरे दिल दियां गल्लां टोवे तू, धरती दे उत्ते पैर टिकाए रखे मीते जां अंबरां नूं छोवे तू, मैं हरदम तेरे नाल रहूंगी क्यों मुख हंजुआ दे नाल धोवे तू जी। अमरजीत सिंह सिद्धू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम पैगाम दे विच बड़ी ही खूबसूरत जी तुसी रचना लिखी भेजी, कविता लिखी भेजी, इसलिए तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑलवेज तुहाडा पैगाम प्रोग्राम पैगाम दे विच बहुत ही वधिया हुंदा है, अज वी तुहाडा पैगाम बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिला फजलका पिंड कड़ियाणा तो मलकीत सिंह कड़ियाणा, दिपिंदर सिंह बराड़, गुरशबद सिंह बराड़, मनजीत कौर कर रहे ने पैगाम। प्रोग्राम पैगाम दे विच सही सलाह कहिंदे, सुनो नवी पीढ़ी दे बच्चों, तुसी अकल नू हाथ मारो क्यों पंजाबी नू विसार रहे हो, कुछ ता विचारो मां दी ममता चो उमड़ के आउंदी मां बोली अखवाउंदी है, पंज आबा चो पैदा हुई मां बोली पंजाबी है, कॉन्वेंट स्कूल विच पढ़ के अंग्रेजी सिखी जांदे हो पंजाबी वल क्यों नहीं ध्यान दिंदे, इस तों क्यों घबराउंदे हो, अंग्रेजी वांगू जे पढ़ाई नू भी समा पढ़ोगे गलतियां रहत हो जाऊगी, जे सही पढ़नी आऊगी शान वधा देगी तुहाडी, कुछ नंबरां विच प्रतिशत भी वधाउंदी है। देवे मनजीत कौर सलाह, तुहानू पंजाबी वध तो वध पढ़िया करो, मिठी पंजाब दी बोली वध तो वध सत्कार दियो। लो जी वाकई सही सलाह है जी तुहाडी, मिठी पंजाब दी बोली ते वध को वध सलाह देनी भी बहुत जरूरी है। सो तुसी भी सानू प्रोग्राम पैगाम दे राही बड़ी खूबसूरत जी सलाह दी, मलकीत सिंह कड़ियाणा, मनजीत कौर, दिपिंदर सिंह पोता, गुरशबद सिंह, जीत सिंह, दर्शन सिंह ते पिंड कोटशमीर तो कुलवंत मलोट, दर्शन बंस, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम पैगाम दे विच आप सब दा बड़ा ही खूबसूरत पैगाम तुसी भेजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक कुमार बांसल, अनीता नानी, दीपक बांसल, गली नंबर 6 अजीत रोड बठिंडा तो करने पैगाम, कहंदे मोहब्बत की कोई उम्र नहीं, ये वो एहसास है जो हर उम्र में खूबसूरत होता है, कुछ लोग किस्मत में नहीं फिर भी दिल उन्हें उम्र भर मोहब्बत करता है। हाउ स्वीट, सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पैगाम, प्रोग्राम पैगाम दे विच फ्रॉम अशोक कुमार दा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अशोक कुमार बंसल जी, अनीता रानी एंड दीपक बंसल। आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट पैगाम इन प्रोग्राम पैगाम फ्रॉम अजीत रोड बठिंडा, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बंसल फैमिली दा।

मंजीत तनेजा, राम गोपाल तनेजा, प्रवीण तनेजा, मनोज, सीमा पायल, अर्चना, शहदिल, हनीशा ते कावेरी कर रहे पैगाम प्रोग्राम। पैगाम दे विच गिदड़वाहा तो बड़ा ही खूबसूरत पैगाम है जी इन्हां दा। इन्हां ने खूबसूरत जी शायरी लिखी भेजी है प्रोग्राम पैगाम दे विच 77173 73 140 ते। कहिंदे दिल की बात हर किसी से कही नहीं जाती। बिल्कुल सही है जी, दिल की बात हर किसी से कही नहीं जाती, कुछ दर्द ऐसे हैं जो आंखों से बयां हो जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, अखा चो जो दर्द बयां हो जान ओही ते मोहब्बत हुंदी है ते ओही ते सच्चा रिश्ता हुंदा है। सो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पैगाम दे विच तुसी कीता पैगाम प्रोग्राम। पैगाम दे विच मंजीत तनेजा ते तुहाडी पूरी तनेजा फैमिली दा बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत कौर तालीवाल, गुरनूर कौर तालीवाल, गुरफतेह सिंह तालीवाल, पिंड गाजियाना, जिला मोगा तो कहिंदे नमस्कार विजय लक्ष्मी, प्यार भरी नमस्कार तुहानू भी जी। कहिंदे धी दे शौक पूरे करदियां करदियां मां दे अपने रह गए चा भी पूरे हो जांदे ने। धी लई सूट लैंदी मां नूं अपना बचपन चेते आ जांदा है। धी नूं सजदी वेख के अपनियां अधूरियां रीझां पूरियां लगदियां ने। धी दी हर खुशी विच मां अपनी खुशी लभ ही लैंदी है, क्योंकि धी सिर्फ धी नहीं मां दे दिल विच वसदियां उसका अपना ही एक सपना होंदी है। इंद्रजीत जी बिल्कुल जी बिल्कुल एग्री कर दी हां, क्योंकि मैं भी एक धी दी मां तो समझ सकदी हां जी। जदों बेटियां तैयार होंदियां ते मावां दे दिल नूं किन्नी खुशी होंदी है, तो फिर जिहड़े मावां दे कोई चा अधूरे रहे हुंदे ने ना, वह अपनियां बेटियां दीआं खुशियां दे विच, उहनां दीआं तरक्कियां दे विच, उहनां दे कपड़े जुत्ती चप्पल हर एक चीज़ दे विच लभण दी कोशिश करदी है। ते एक मां हमेशा ही अपनी धी नूं मुकम्मल करना चाहती है। सो बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत जी, ब्यूटीफुल एंड इमोशनल पैगाम तुसी कीता पैगाम प्रोग्राम। पैगाम दे विच बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कीर्ति वर्मा, प्रियांशी वर्मा, सिद्धक वर्मा ते इन्हां दी माता जी कृष्णा रानी वर्मा ते पूरी वर्मा फैमिली कर रही है पैगाम प्रोग्राम। पैगाम दे विच मंडी आने वाला डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो कहिंदे रिश्ते ओ नहीं जो दुनिया नूं दिखाए जाण, रिश्ते ते ओ नहीं जो दिल नाल निभाए जाण, जिन्हां नूं साडी खामोशी भी समझ आए ओही तां असल अपने कहाए जाण। मुस्कुराहट दे के जो दर्द भुला देवे ओ इंसान जिंदगी दी खूबसूरत दौलत हुंदा है जी। कीर्ति वर्मा ते पूरी वर्मा फैमिली दा बहुत बहुत शुक्रिया, ब्यूटीफुल पैगाम। वाकई जी दिल दे रिश्ते तो होंदे ने जिहड़े जिंदगियां नूं आबाद करदे ने। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पैगाम दे विच कीर्ति वर्मा जी, तुसी पैगाम कीता ते नाल तुहाडी पूरी वर्मा फैमिली, अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा, पिंड बुर्ज हनुमानगढ़, मंडी अनिवला डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो आप सब श्रोतियां दा बहुत बहुत स्वागत एंड बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पैगाम दे विच इन्ना ज्यादा खूबसूरत जिहा पैगाम करन दे लई शुक्रिया। मलकीत सिंह घड़ीसाज गुनियाना मंडी तो कर रहे ने पैगाम प्रोग्राम। पैगाम दे विच कहिंदे ओ भावे अज बेगानी होई सी पर मेरी लाश देख के रोई सी, बड़ा चुप कराया सखियां ने उदे जांदा नीर नैणा चो चोई सी, चुप करके बैठी रही किन्ना चिर दिल विच बैठी दर्द लकोई सी, लांबू निकले सी जद सीवियां चो ओ जांदी मुख हंजुआ दे नाल तोई सी, मलकीत दो जिसम इक जान होए असी उसकी रूह मेरे जिसम विच परोई सी, बिन तेरे तो कहंदे मैं रह नहीं सकती, एक मिक नाल मेरे अज होई सी सारियां अखां देखण बस उसे नूं ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪੈਗਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੋ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਗੀਤ, ਦਰਦ ਵਾਲਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਆਫਟਰ ਯੂਰ

जी श्रोते हो, ऐसे खूबसूरत से गीत तो बाद ही विजयलक्ष्मी नू आज दा प्रोग्राम पैगाम इत्थे ही खत्म करन दी दियो इजाजत। आज दे प्रोग्राम पैगाम दे विच पैगाम करन दे लई बहुत बहुत शुक्रिया सारे ही श्रोतियां दा। और 77173 143 146 ए है प्रोग्राम पैगाम दे विच पैगाम दा नंबर। थैंक यू कर दिया जी पूरी टेक्निकल टीम दा एंड प्रोग्राम पैगाम दे निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा जी दा भी बहुत सारा धन्यवाद। ते नाउ इट्स टाइम टू टेक अ लीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड से गुड बाय टू एवरीवन। सो अपना ख्याल रखो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बट ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद 101.1 मेगाहर्ट्ज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।

0: 09 से कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विद जारी।
1: जी प्रोग्राम पिंडा विचों पिंड सुनी दा भाग पहला तुसी सुनिया, ते इस प्रोग्राम दा दूजा भाग तुसी सुनोगे अज दोपहर ठीक 2:30 ते। इस प्रोग्राम विच गूंजेगी पिंड दियां बीबियां गबरुआं अते साथ विच बैठे बाबियां दी आवाज। सो सुनना ना भुलना अज दोपहर ठीक 2:30 ते प्रोग्राम पिंडा विचों पिंड सुनी दा। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा।
2: मिति 8 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:30 प्रोग्राम घर परिवार दे दौरान तुसी सुनोगे सिलसिला छावां ठंडियां ने बोर दियां। ते इस वार दे साडे मेहमान होणगे श्री राम प्रसाद मदान, ते उहनां नाल गलबात करांगी मैं यानी कि दीपा छाबड़ा। सो सुनना जरूर इस वार दा सिलसिला छावां ठंडियां ने बोर दियां, मिति 8 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:30।
3: जी श्रोतो हुण तुहाडी नज़र मरवाउने आ अज दीआं खास खास खबरां दे उप्पर। पहली खबर जिहड़ी कि पंजाबी ट्रिब्यून तो लगी है, झोने दे आगामी सीजन लई छड़ाई नीति नूं हरी झंडी। पंजाब मंत्री मंडल वल्लों पंजाब दी ढोआ ढोआई नीति अते अनाज लेबर ते कार्टेज नीति मंजूर। साल 2025-26 दे अलाट कीते झोने विच्चों 90% चौल सौंपण वालियां नूं पहला मिलेगा झोना। पंजाब लोक सेवा कमिशन ग्रुप ए सेवा नियम 2012 विच सोध नूं प्रवानगी। ते इस दे नाल ही जिहड़ी खबर चंडीगढ़ तों लगी है, बघेल दी छुट्टी पायलट नूं पंजाब कांग्रेस दा चार्ज। हिमाचल प्रदेश दे विच 9 ग्लेशियर झीलां ने खतरे ਸੋ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੁਰਮੂ। ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਢਾਂ ਲਈ 82 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ। ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਆਊਟਡੋਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ ਪਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 82 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ 82 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਜੀ ਸਵੀਰ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ 7:59 ਤੇ 47 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ 8 ਵਜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ, 8:15 ਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਤੇ 8:30 ਸੁਣਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर के हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। NIA की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को पहले आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। भारत ने दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनी

0: कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
0: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा, आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा, भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा।

0: सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
1: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
2: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
3: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्रीचरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हे जीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, OpenAI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, AI को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। NIA की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आए ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला T20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses centenary celebrations of Shriram College of Commerce at Delhi University, calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. NIA Special Court convicts 10 Maoists in 2013 Chhattisgarh Jhiram Valley Massacre case. IBRICS Summit to be held in New Delhi. On the sidelines of BRICS Summit on the 12th and 13th of this month, over 500 institutional investors, finance ministers and business leaders to participate in the two-day event. And in cricket, India beat Pakistan by 7 wickets in the Women's T20 Asia Cup match in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? Prime Minister was addressing the centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, at Delhi University yesterday evening.
4: कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
3: मिस्टर मोदी सेड इंडिया 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहलां चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौजवानों नूं वड्डे सुपने देखण ते लेखा वित्त कानून ते कंसल्टिंग नाल जुड़ियां जिहियां संस्थावां बनाउण दी अपील की है, जो दुनिया की अगवाई करन दे समर्थ होण। बीजेपी के राज्यसभा मैंबर दिनेश शर्मा नूं अंडेमान ते निकोबार तों उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। 8 हाई कोर्टां विच नवें चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होणगे। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 छत्तीसगढ़ की जीरमवादी में माओवादी हमले के संबंध में सारे 10 मुलजमान को दोषी ठहराया है। महिला क्रिकेट में दुबई में 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकटों से हरा दिया है। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौजवानों नूं वड्डे सुपने देखण ते लेखा वित्त कानून ते कंसल्टिंग नाल जुड़ियां अजिहियां संस्थावां बनाउण दी अपील कीती है, जो दुनिया की अगवाई करन दे समर्थ होण। कल दिल्ली यूनीवर्सिटी के श्री राम कॉलेज आफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह विच बोलदिआं उन्हां कहा कि अज भारतीय मूल के बहुत सारे लोग दुनिया दीआं चोटी दीआं कंपनियां दी अगवाई कर रहे हैं अते भारतीआं वल्लों स्थापित कंपनियां भी दुनिया की अगवाई कर सकदीआं ने।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि विश्वव्यापी अनिश्चितता के बावजूद भारत की 7.8% की विकास दर इसकी आर्थिक समर्था को दर्शाती है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
0: उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामले में खड़ोत तो गतिशीलता तक एक लंबा सफर तय किया है। दुनिया देख रही है कि भारत आर्थिक तौर पर सब तो तेजी नाल वध रही आर्थिकता बनिया होया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहशतगर्दी को हराया गया है, आत्मविश्वास नाल परे हथियारबंद बल दुश्मन के गढ़ से हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तो उत्तर पूर्व तक शांति बहाल की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अप्रैल और जून दरमियान बिजली उत्पादन में 9% का वाधा होया। उन्होंने कहा कि इस समय दौरान वाहनों की बिक्री में 20% तो वाधा दर्ज किया गया, जिसका मुख्य कारण दुपहिया वाहनों में 20% वाधा और तीन पहिया वाहनों में लगभग 30% वाधा है। उन्होंने यह भी कहा कि स्मार्ट फोनों की बरामद हुण 25 लाख करोड़ रुपए तो वाधा है, घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तो सब तो उच्चे पद्धर से पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तिमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई।
1: अगला गीत असी सुनन जा रहे हैं फिल्म हशर दे विचों आवाज बब्बू मान दी।

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तिमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई
1: जी। अगला गीत असीं सुनन जा रहे हैं फिल्म जोड़ी दे विच्चों जिसनों आवाज़ दिती है दिलजीत दुसांझ ते निमरत खैरा ने।

जी प्रोग्राम चल रहा है सदाबहार गीत ते स्टूडियो की घड़ी ते समा हो रहा है 8:54 ते 56 सैकेंड का। अगला गीत सुनन जा रहे हैं फिल्म 11 नाल बहारा 2 दे विचों आवाज़ हरमीत सिंह दी।

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई
1: जी।

0: सनम तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। शब्बीर अहमद के बोलते हिमेश रेशमिया का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर साल 1-7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है। इसका उद्देश्य है लोगों को संतुलित आहार और सही पोषण के महत्व के बारे में बताना, मोटापा, मधुमेह जैसी बीमारियों से बचाव करना। आज के इस भागदौड़ में हम अक्सर स्वाद के चक्कर में सेहत को भूल जा रहे हैं और काम की व्यस्तता में पानी पीना भी भूल जाते हैं। तो आइए हम ये संकल्प लें कि हम स्वयं अच्छा और पोषक भोजन बनाएंगे, खाएंगे और अपने परिवार के साथ ही समाज को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। और अब आपको सुना रहे हैं ये गाना जावेद अली, सुनिधि चौहान की आवाजों में। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

जावेद अली, सुनिधि चौहान की आवाजों में कौसर मुनीर का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। साजिद वाजिद संगीतकार थे। फिल्म का नाम था दावते इश्क। आपको याद दिला दें कि आज शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के अंतर्गत सुनेगा नाट्य तरंग में, यादों के अंतर्गत सुनेगा नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग, प्रस्तुति तेजश्री कामले की।

श्रोताओं, आपको फिर से बता दें, शाम 4 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के अंतर्गत सुनिएगा नाट्य निर्देशक, शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत का 4th भाग, संपादन सहयोग योगिता जाधव का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में आपको अब सुनवा रहे हैं गोल्ड फिल्म का गीत। यासीर देसाई की आवाज है, गीतकार हैं अर्को प्रभो मुखर्जी, संगीतकार भी हैं अर्को प्रभो मुखर्जी।

0: यासिर देसाई की आवाज में आप सुन रहे थे गोल्ड फिल्म का गीत। गीतकार और संगीतकार थे आर्को प्रभो मुखर्जी।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

चिंगारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हिमानी कपूर की आवाज में। समीर के बोल थे आदेश श्रीवास्तव का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये प्रोग्राम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, पर या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवां बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

6 सितंबर 1949 को मुंबई में जन्मे राकेश रोशन, संगीतकार रोशनलाल नागरत के पुत्र और संगीतकार राजेश रोशन के भाई हैं और ऋतिक रोशन के पिता हैं। और अब तो राकेश रोशन का नाम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्माता निर्देशकों में शुमार होता है। लेकिन पिता संगीतकार रोशन के अचानक देहांत के बाद राकेश रोशन के लिए अपने करियर को लेकर

बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ऐसे में उनकी मदद के लिए आगे आए निर्माता निर्देशक मोहन कुमार। इन्होंने कई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को राकेश रोशन का नाम सजेस्ट किया एक्टिंग के लिए, और आखिर 1970 में फिल्म घर घर की कहानी से राकेश रोशन की एक्टिंग की कहानी शुरू हुई।

ये गाना जो अभी आपने सुना, अभिनेता जलाल आगा पर फिल्माया गया था। इस फिल्म घर घर की कहानी में राकेश रोशन सपोर्टिंग रोल में थे। बतौर अभिनेता उन्होंने अधिकतर सपोर्टिंग रोल्स ही किए। सोलो हीरो के रूप में उनकी कम ही फिल्में आईं, लेकिन जो भी आईं वो भी यादगार रहीं और उनका संगीत तो सुपर डुपर हिट रहा।

0: इन दोनों ही फिल्मों में हालांकि मुख्य भूमिकाओं में देवता में संजीव कुमार थे और जख्मी में सुनील दत्त, लेकिन राकेश रोशन ने अपनी उपस्थिति बहुत ही पुरजोर तरीके से जाहिर की। उसके बाद फिल्म खट्टा मीठा में गोविंदिया गोस्वामी के साथ इनका ये गीत आज भी लोगों का दिल जीत लेता है।
1: ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ,

ऐसी ही और भी फिल्में हैं। इनमें एक फिल्म याद आती है, फिल्म खूबसूरत। हालांकि फिल्म में टाइटल रोल रेखा का था, लेकिन राकेश रोशन और रेखा की जोड़ी ने बहुत ही कमाल अभिनय किया।

ऐसी ही और भी फिल्में हैं जिनमें राकेश रोशन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे, लेकिन इससे राकेश रोशन खुश नहीं थे। इसीलिए 1980 में राकेश रोशन ने स्थापित की अपनी फिल्म निर्माण संस्था फिल्म क्राफ्ट और फिल्म बनाई आपके दीवाने।

तेरा ताबा है तेरा जलवा हो, जी चाहे जी भर के तारीफ करूं हो, क्या कहना।

0: हसीन तो लाखों हजारों है, कोई भी तुम सा नहीं था। काली जुल्फे उड़ते बादल गोरा चांद सा चेहरा, तेरा जलवा तौबा है तेरा जलवा, जब से देखा तौबा है तेरा जलवा।
1: फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया तो फिर बाद में जो फिल्म बनी वो थी काम चोर।
2: तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर

ये फिल्म कामचोर सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म को राकेश रोशन ने प्रोड्यूस किया था और यहीं से शुरू हुआ राकेश रोशन की फिल्मों में क शब्द का कमाल। यहां से आगे राकेश रोशन ने जो भी फिल्में बनाई उनका शुरुआती अक्षर क रहा और अब तो राकेश रोशन एक ब्रांड बन गए। राकेश रोशन ने 1987 में निर्देशन की कमान भी संभाल ली। फिल्म थी खुद

खुदगर्ज की सफलता के बाद राकेश रोशन सफलता की गारंटी माने जाने लगे। खून भरी मांग 1988 में रेखा के साथ, फिर किशन कन्हैया 90 में, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला और इसके बाद कुछ वर्षों तक बतौर अभिनेता कुछ फिल्मों में कभी कभार नजर आए। लेकिन सन 2000 में बिग बैंग के साथ आए अपने बेटे को लेकर ऋतिक रोशन के साथ कहा, कहो ना प्यार है।

0: इस फिल्म कहो ना प्यार है की सफलता को तो सभी जानते हैं और ये भी जानते होंगे कि बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस फिल्म का नाम है क्योंकि इसे सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले। इसके बाद राकेश रोशन ने जितनी भी फिल्में बनाई सभी ने सफलता का एक नया मकाम हासिल किया। यहाँ ये भी बता दें आपको कि खूबसूरत फिल्म में रेखा के साथ अभिनय करने वाले राकेश रोशन ने अपनी दोस्ती को निभाया और रेखा को कोई मिल गया और क्रिश जैसी फिल्मों में बहुत ही दमदार भूमिका दी। तो अब वो फिल्में जिन्होंने सफलता का इतिहास रचा, कोई मिल गया।
1: यूं तो हम तुम मिलने को मिलते रहे, पर क्यों आज ऐसा

0: फिल्मकार राकेश रोशन पर केंद्रित इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: जी स्वागत करते हैं बच्चों के प्रोग्राम निक्के निक्के तारे दे विच। मैं बनी हुई हाँ तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो दोस्त कमल सिद्धू। तो अज का प्रोग्राम निक्के निक्के तारे लैके आ रहे ने मनदीप रजौरा ते सुधा। सो श्रोतियां नूं दस दिए कि अज का ये प्रोग्राम तुसीं पहलां भी सुन चुके हो।
1: प्यारे बच्चों बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम निक्के निक्के तारे च तुहाडा। जी पिछले हफ्ते श्रोतियो तुसी इन्हां बच्चियां दे नाल प्रोग्राम निक्के निक्के तारे दा भाग पहला सुनिया सी ते असी तुहाडे नाल वादा कीता सी कि भाग दूजा जिहड़ा है इन्हां ही बच्चियां दे नाल तुहानू जरूर सुनावांगे। इन्हां बच्चियां दे विच कुछ होर बच्चे भी क्योंकि साडे कोले प्रोग्राम च शामिल हो गए ने। असी इन्हां सारे ही बच्चियां दा बहुत बहुत स्वागत करदे हां। बई दोस्तो छोटे निक्के प्यारे बच्चियो तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
2: थैंक यू।
1: प्यारे प्यारे बच्चे जेडे के साडे नाल हुण बैठे आ फटाफट इन्हां बच्चियां दा असीं नां जाण लैने आ। एक हफ्ते दे वक्फे दे दौरान बच्चियां दे नां साडे कुछ साथी जेड़ा है ओह उन्हां ने आपस च रला मिला दित्ते होणे आ। मैं नहीं कहूंगा कि साडे स्रोते इन्हां बच्चियां दे नां भुल गए होणगे, नां जेड़े है क्योंकि बच्चे जेड़े है छोटे हुंदे ओह इक्को वर्गे ही लगदे हुंदे, असीं उन्हां दा नां रला मिला दिंदे आ। फटाफट इन्हां दा नां जाण लैने आ। बच्चे की नां है तुहाडा?
3: प्रतीक।
4: मनदास कौर राणा।
5: गणेश।
6: मन्नत।
7: गर्व।
8: अनिरुद्ध।
9: रहत प्रकाश कौर वंडर।
1: रहत प्रकाश कौर वंडर जी, रहत प्रकाश। अखीर दे विच जेड़े बच्चे ने अपना नां दस्या ओ सारे बच्चियां तो छोटा जिहा बच्चा है, बल्कि एक होर छोटा जिहा बच्चा साडे नाल आ गया प्रोग्राम दे विच। असी इस नाल भी गल करांगे। बच्चे आओ मेरे कोले, छोटा जिहा बच्चा हाथ दे विच तिरंगा फड़ी आ रहा हैगा जी। बच्चे की नाम है तुहाडा?
10: रणविजय।
1: रणविजय, रणविजय तुहाडी ता ड्रेस बड़ी सोहनी है, यूनिफॉर्म तुहाडी ता बड़ी सोहनी है। एह तुहानू ड्रेस कौन दवा के लिया?
10: पापा
1: दवा के लिया सी। पापा एह काम बड़े करदे है ना, सानू बड़ियां चीजां पापा साडे दवा दवा के लियांदे है ना। ते मम्मा तुहानू फिर की बना के खवांदे रणविजय?
10: रोटी।
1: अज रणविजय भी साडे नाल प्रोग्राम दे विच गल्लां करूगा। इथे बैठो, शाबाश। रहत प्रकाश दी वारी चल रही सी, रणविजय दी एंट्री हो गई। रहत प्रकाश, मैं कह रहा सी कि सब तो छोटा बच्चा साडे स्टूडियो च बैठा है, उस तो भी छोटा एक होर बच्चा रणविजय साडे कोले आ गया है, झंडा फड़ी आ गया है। दोनों ही बच्चियां दे नाल गल करांगे। रणविजय नु थोड़ा जा असी दम लै लैण दिंदे आ, असी रहत प्रकाश कोले चलदे आ। रहत प्रकाश, असी तुहाडे नां बारे पिछले बारी भी गल कीती सी, इस तुहाडे नां दा रहत प्रकाश कौर की मतलब है?
10: रहत दा मतलब गुड लाइफस्टाइल है, ते प्रकाश दा मतलब लाइट।
1: मतलब लाइट दे नाल साडा जो कह रहे हां असी कि ज्ञान दी रोशनी दे नाल साडा लाइफस्टाइल जेड़ा है ओह गुड हो जांदा है। रहत, ते तुसी ये दसो भी तुसी केड़े स्कूल च पढ़दे हो?
10: सिल्वर ऑक्स स्कूल।
1: सिल्वर ऑक्स, ते तुहाडी क्लास केड़ी है?
10: सेकंड ए।
1: सेकंड ए दे विच तुसी पढ़दे हो, वेरी गुड। सिल्वर ऑक्स दे विच तुसी पढ़दे हो, ते तुहानू तुहाडे स्कूल च रहत केड़ी चीज वधिया लगदी है? सब तो ज्यादा तुहानू तुहाडे स्कूल च की पसंद आउंदा है?
10: डांस पसंद आउंदा है।
1: यानी कि डांस क्लास पसंद आउंदी है। रहत जदों डांस क्लास दे विच हुंदी है उदों स्कूल दे विच सब तो ज्यादा खुश हुंदी है। रहत केड़े गाने ते डांस करना पसंद है तुहानू भाई?
10: ये देश है वीर जवानों का।
1: ओ वेरी गुड, ये देश वीर जवाना दा ता हैगा ही हैगा। छोटिया छोटिया जो बच्चिया ने अगे चल के ये माई भागो है ना, राणी लक्ष्मी बाई दुर्गा भाभी वर्गिया ये वीरांगनावा भी बन गिया। दोस्तो बच्चे जेड़े ने सारे ही साडे नाल बड़े प्यारे प्यारे है, असी इन्हां बच्चियां दे नाल गल्लां जेड़ियां ओह जरूर करांगे। रणविजय दी भी वारी असी लगावांगे, उस तो बाद अनिरुद्ध दी वारी आएगी साडे कोले। गर्व

0: है, मन्नत है, कनिष्क है, मंताज है, ते प्रतीक है। प्रतीक जड़ा है वो इशारा कर रहा है भी मेरी वारी जड़ी है थोड़ी जी पहला लगा दो। प्रतीक क्यों तुसी अपनी वारी पहला लगाना चाहते हो दसो बई सानू। ते प्रतीक पिछले बारी जदों तुसी साडे नाल गल कर रहे सी ते तुसी सानू बड़िया वधिया वधिया गल्लां दसियां सीगियां, एक तुसी सानू गीत भी बड़ा वधिया सुनाया सीगा, ते अज इस प्रोग्राम च एक होर गीत सुना दोगे सानू बई।
1: मैं फैन भगत सिंह दा जेड़ा नहीं सी गुलामी करदा।

0: उठे उड़दा उड़दा मोर मेरी चीची उत्ते बह गया, उड़दा उड़दा मोर मेरी चीची उत्ते बह गया, छू छा करके उड़ा दिनिया नी तेनू गिद्दे विच नचना,
1: वेरी गुड,
0: सिखा दिनिया नी तेनू गिद्दे विच नचना सिखा, चढ़िया जे ठाल दा मीना मैनू आंदा बड़ा पसीना, चढ़िया जे ठाल दा मीना मैनू आंदा बड़ा पसीना।

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना, मिति 7 सितंबर दिन सोमवार नू शाम 5 बजे प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत दौरान, सिलसिला अपना विरसा अपना सभ्याचार।

0: जी स्वागत करते हैं प्रोग्राम सुखन दे वारिस दे विच। मैं बनी हुई हूँ तुहाडे नाल, तुहाडी रेडियो दोस्त कमल सिद्धू। सो अज दा प्रोग्राम जिस दे विच साडे मेहमान ने कवित्री कुलविंदर कौर ढिल्लों, ते इन्हां दे नाल गलबात कर रहे ने मनदीप रजौरा।
1: आकाशवाणी एफ एम बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, मिती 7 सितंबर दिन सोमवार नूं शाम 5 बजे प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत दौरान तुसी सुनोगे सिलसिला अपना विरसा अपना सभ्याचार। ते साडा इस वार दा विशा होएगा मालवे दे देसी रुख।

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना, मिति 7 सितंबर दिन सोमवार नू शाम 5 बजे प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत दौरान, सिलसिला अपना विरसा अपना सभ्याचार।

0: जी बहुत अच्छी।
1: जिथे वड्डे वड्डे चा ते निक्के रोसे हुंदे सी, जिथे सांझे घर से बणदे ना लोकी होशे हुंदे सी। पर अज नशियां विच गर्क होई इस पीड़ी दा, अज नशियां विच गर्क

0: जी बहुत अच्छे।
1: जद बचपन विच बैठ फटियां पोचदे हुंदे सी,
0: क्या बात है जी।
1: हाय

0: जी बिल्कुल, तुहाडी इस गजल दे, तुहाडे इस बहुत वधिया जिंदगी नाल ते जिंदगी दियां सच्चाइयां नाल भरे हुए इस गीत दी तारीफ जिन्नी कीती जावे उन्नी घट है, ते उन्ना ही तुसी सोना इस नू गुणगुणाया भी। ते जिंदगी
1: धन्यवाद
0: दे
1: जी
0: मोड़ां दी गल तुसी कीती है,
1: जी।
0: जिंदगी दे केड़े केड़े मोड़ जिहड़े ने हुण कुलविंदर कौर ने सर कर ले है, असीं तुहाडी जिंदगी बारे, परिवारक जिंदगी बारे थोड़ा जिहा जानना चाहुंदे हां, जिहदे च असीं तुहाडे पेके पिंड, तुहाडी पढ़ाई लिखाई सारियां गल्लां, सारे ही ओह मोड़ जिन्हां दी तुसी गल कीती है
1: जी
0: अपनी
1: जी
0: इस
1: जी
0: रचना दे विच,
1: जी
0: केड़े केड़े मोड़ मुड़ आए हो जिंदगी दे विच।
1: जी पहली गल तां इह आ कि असीं जिहड़ी जिंदगी निकल चुकी है साडे हत्थों वापस नहीं आउणी, तां
0: जी
1: मेरा गीत उन्हां पलां नूं समर्पित है।
0: वाकई
1: ते मेरा जन्म हैगा आ कि गुजरांवाला पिंड

0: आए माहे छुट्टी लेके आया कुट सीने नाल लाया जो सी सुपना अधूरा ओ सकार हो गया है मैनू सोन दे महीने नाल प्यार हो गया है।
1: क्या बात है जी।
0: मैं

0: दीदार हो
1: क्या
0: गया
1: बात है जी, बहुत अच्छे।
0: मैनू सौन दे महीने नाले प्यार हो गया है
1: जी,
0: मैनू सौन दे महीने नाले प्यार हो गया है। पींगा पिपला ते पाइया नचण ननद पर जाइया।

0: वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा, भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास से अवैध हथियार होने की बात भी सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि अधिकारियों ने उन्हें नशीले पदार्थों के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए मजबूर किया था। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री, 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। इस सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे बारिश के पानी में डूबा हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय ने बताया कि वीडियो अप्रैल 2024 का है, जब दुबई हवाई अड्डे पर तेज बारिश हुई थी। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज उनका सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। सात्विक और चिराग ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरियन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया था। दुबई में महिला क्रिकेट के 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने 18 ओवर और एक गेंद में 55 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: इसलिए है कि उत्तम कुमार जी का अभिनय जब हम सिनेमा में देखते हैं, फिल्मी पर्दे पर जब हम देखते हैं, तो उनके बारे में एक शब्द बहुत ही खास तौर पर कहा जाता है कि वो बहुत ही मासी एक्टर थे। लेकिन मासी के साथ साथ जब हम उनके अभिनय कौशल को देखते हैं पर्दे पर, तो हमें उनके मासी आम तौर पर ऐसा कहा जाता है एक्टर को कि जो बिल्कुल ही आम दर्शक होते हैं उनको प्रभावित

0: वाले कलाकार, लेकिन उत्तम कुमार आम से आम और खास से खास दर्शक को भी उतने ही प्रभावित करते हैं। खास कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी क्लासिक किस्म के जो दर्शक होते हैं, जो बहुत ही गुड सिनेमा को देखते हैं और अभिनय की ऊंचाई को पहचानते हैं, उनकी बारीकियों को, उसमें बहुत ही उनको सुखानुभूति मिलती है, तो वो सब कुछ हम उत्तम कुमार जी के अभिनय कौशल में देखते हैं। तो मासी एक्टर के साथ साथ वो एक मेथड एक्टर के तौर पर भी हमारे सामने आते हैं, और जिस वक्त वो बांग्ला सिनेमा में बतौर अभिनेता अपनी पहचान उन्होंने बनाई, उस वक्त अगर हम देखें तो हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार साहब भी थे, देवानंद साहब भी थे, राज कपूर थे, इतने बड़े बड़े दिग्गज थे। इसके बावजूद उत्तम कुमार जी की जो पहचान थी, आज की शब्दावली में जो हम पैन इंडिया कहते हैं, पैन इंडिया इम्पैक्ट छोड़ने वाला कोई एक्टर, तो वो उस वक्त, आज सोचिए कि इतने सालों पहले हमने उत्तम कुमार जी के अभिनय कौशल में एक पैन इंडिया का प्रभाव हमने देखा था। क्योंकि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, मेरा पूरा अनुमान है कि उनकी बांग्ला फिल्में जितनी भी हैं उनसे कम वाकिफ होंगे, लेकिन जो हिंदी फिल्में उनकी है, अगर उसमें देखे अमानुष एक बहुत ही चर्चित फिल्म है
1: जी।
0: लेकिन इसके अलावा भी उनकी दूरियां बहुत ही अच्छी फिल्म है, और भी कई सारी फिल्में हैं, 2-3 फिल्में और भी हैं, उनमें अगर हम अभिनय कौशल देखते हैं उनका, तो पता चलता है कि वाकई क्या रेंज है। मासी के साथ साथ वो कितने शानदार मेथड एक्टर के तौर पर भी हमारे सामने आते हैं, और मेथड एक्टर की जब भी बात होती है हिंदी में तो दिलीप कुमार जी का जिक्र करते हैं
1: जी।
0: मासी का जिक्र करते हैं, तो फिर देखिए देवानंद का जिक्र करते हैं, तो दोनों की क्वालिटी, बल्कि दोनों बहुत ही उनको बहुत पसंद करने वाले कलाकार भी रहे हैं, तो सारी खूबियां हम उत्तम कुमार जी में पाते हैं। तो अपने नाम को वो बिल्कुल सार्थक करते हैं, उत्तम कुमार सिनेमा के उत्तम है, सर्वोत्तम है,
1: उत्तम कुमार सिनेमा के सर्वोत्तम जी। बहुत खूब आपने कहा। मैं प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगी, हम सत्यजीत रे जी की फिल्म का अगर जिक्र करें, नायक या फिर सप्तपति हो या फिर है चिड़ियाखाना, तो किसी भी फिल्म का हम जिक्र करें, उत्तम कुमार ने अपने आप को कभी भी एक छवि में बांध कर नहीं रखा। अलग अलग किरदार उन्होंने निभाए और पूरी तरह से उस किरदार को उन्होंने जीवंत किया पर्दे पर। तो एक अभिनेता के तौर पर आप उनकी रेंज के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से वो न्याय करते थे उस किरदार के साथ?
2: देखिए, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा
1: जी
2: कि उन्होंने उत्तम कुमार को उनकी जन्म शताब्दी पर याद किया। अभी 3 सितंबर को उनकी जन्म शताब्दी थी
1: जी,
2: और उससे पहले उन्होंने उनको याद किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब आप देखिए, उत्तम कुमार जी को दुनिया से विदा हुए 46 साल हो गए, 1980 में उनका निधन हुआ था, और उन्होंने अपने 30 वर्ष उनके बहुत ऐसे रहे बंगाली सिनेमा में, उसके बाद हिंदी सिनेमा में भी, कि उन्होंने बहुत नाम कमाया, उनको महानायक कहा गया। सत्यजीत रे तक ने जो नायक फिल्म बनाई वो उसी लिए बनाई, उनको ध्यान में रखकर
1: जी।
2: तो वो इस तरह का उनका वो था, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उत्तम कुमार को नहीं मिला। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ सब उत्तर भारत के जो सिनेमा है, हिंदी सिनेमा है, बॉलीवुड का है, इवन जो साउथ का सिनेमा है, उनके लोगों को भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिल जाते हैं, उनको दादा साहब फाल्के मिल जाते हैं, लेकिन उत्तम कुमार को पद्मश्री पुरस्कार तक नहीं मिला जबकि उन्होंने इतना काम किया। उनको बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार, सबसे पहले जब राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई तो 1957 में सबसे पहले उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया, जो ये बताता है कि वो राष्ट्रीय पुरस्कार के काबिल थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उनको भुला दिया गया है, बड़ा खराब लगता है। उनको बाद में फिल्म निर्माता के रूप में भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, कुल 5 बार पुरस्कार मिले, उसके बाद उनको इस तरह के सम्मान तो मिलते रहे, फिल्म फेयर में मिलते रहे, साउथ के इस तरह के मिलते रहे, लेकिन जो राष्ट्रीय पुरस्कार इस तरह के हैं, जो मतलब राष्ट्रीय सम्मान जो हमारा एक अलग मान देते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या दादा साहब फाल्के जो फिल्म जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, वो उनको नहीं मिला। तो उनके साथ सुचित्रा सेन ने 30 फिल्में की। आप देखिए सुचित्रा, उनकी जो रेंज है उसकी बात इसमें आ जाएगी कि उन्होंने, सुचित्रा सेन ने अपने जीवन में कुल 60 फिल्में की, लेकिन 60 में से 30 फिल्में सुजीत कुमार, 30 फिल्में उत्तम कुमार के साथ की। तो उत्तम कुमार के साथ 30 फिल्में करना थी बड़ी एक्ट्रेस का बहुत बड़ी बात है, और उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा मशहूर हुई। तो ये जो है, उसके बाद इन्होंने खैर और बहुत सारे, इन्होंने तो बहुत अभिनेत्रियों के साथ काम किया, इन्होंने 200 से ज्यादा अलग अलग फिल्में की, और इसमें कभी वो एक चोर बनते हैं तो कभी न्यायाधीश बनते हैं, कभी जादूगर बनते हैं, तो कभी अलग अलग इस तरह की भूमिका नायक बनते हैं। जो नायक फिल्म है उसमें का नायक का रोल है, उसमें एक देखिए जो सत्यजीत रे इस तरह की इसकी फिल्म बनाई, एक नायक जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार लेने के लिए कलकत्ता से, आप तो कोलकाता बोले, आप कोलकाता से दिल्ली आ रहा था, तो 24 घंटे की जर्नी थी उस समय जो ट्रेन की, उसमें किस तरह एक पत्रकार को मिलती है शर्मिला टैगोर, जो शर्मिला टैगोर के साथ में इनकी बांग्ला फिल्मों भी जो भी रही, और हिंदी फिल्मों में तो ज्यादातर फिल्में इनकी उन्हीं के साथ आई, शर्मिला टैगोर के साथ
1: जी।
2: तो ये जो वो जो नायक का वो जो था, इतना बढ़िया चित्रण था इस फिल्म के अंदर। सत्यजीत रे साहब तो ऐसे वो थे जिनको सबसे ज्यादा फिल्म पुरस्कार मिले, और फिल्म जगत के अकेले ऐसे वो फिल्मकार हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा

0: कर लिए कि अभी तो उनके निधन को इतने साल हो गए, अगर वो अभी तक रहते तो शायद ऐसा रिकॉर्ड बन जाता कि किसी को नहीं मिलता,
1: जी
0: ऑस्कर तक सत्यजीत रे को मिला। तो सत्यजीत रे जैसा अभिनेता फिल्मकार, इतना बड़ा फिल्मकार जो इनको पसंद करे और आप इनकी इस तरह को फिल्म बनाए। बाद में भी इन्होंने सुचित्रा सेन के साथ एक फिल्म बनाने की सोची थी, लेकिन सुचित्रा सेन ने सत्यजीत रे के साथ फिल्म करने से मना कर दिया, तो सत्यजीत रे ने वो फिल्म बनाई ही नहीं। लेकिन इनकी जो रेंज है वो तो आप देखिए कमाल की रेंज है, और आप सत्यजीत रे से इन्होंने सीखा भी। इस तरह निर्माता थे, निर्देशक थे, लेखक थे, संगीत पर ध्यान देते थे, वही खूबियां उत्तम कुमार में
1: उत्तम
0: भी
1: कुमार
0: है।
1: में
0: उत्तम
1: भी।
0: कुमार ने देखिए निर्माता के रूप में 9 फिल्में बनाई,
1: जी
0: निर्माता निर्देशक इतने की, और संगीत में भी उनको बहुत था, गायक के उस रूप में भी काम किया, निर्देशन भी किया, और हिंदी फिल्मों में भी जो उनकी देखिए चाह है वो बंगाल के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत महानायक कला है और उनकी अलग वो थी। और मुझे वो दृश्य भी अभी तक याद है जब 1980 में उनका निधन हुआ, तो इतना सैलाब था, जन सैलाब उभरा हुआ था उस समय के हिसाब से, इतना जन सैलाब बहुत किसी अभिनेता के रूप में शायद कभी ना देखा गया हो। बाद में तो हम चाहे नया जमाना आ गया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल सब कवर करते हैं, उस समय तो कोई था ही नहीं। फिल्म डिवीजन ने कुछ बनाई, कुछ और लोगों ने बनाई उनकी फिल्म, कुछ सत्यजीत रे ने भी बनाया था उनका वो हिस्सा जब उनकी शव यात्रा निकली हुई थी, इतना बड़ा वो था, लेकिन वो इतनी कम उम्र में चले गए, सबसे बड़ी बात है।
1: यानी एक अभिनेता के रूप में भी परिपक्व थे और उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे अंश हुए, पहलू थे, और अगर व्यक्ति के तौर पर भी हम देखें उन्हें तो समाज से वो गहरे से जुड़े हुए थे, इसीलिए इतने सारे लोग जो है जब उनके निधन की खबर उन्हें पता चली तो तुरंत वहां पहुंचे।
0: हाँ।
1: जी यहाँ मैं प्रदीप जी इसी मोड़ पर आपसे आपकी पसंद का कोई गाना पूछना चाहूंगी उत्तम कुमार से जुड़ा हुआ।
0: देखिए उनके मेरे को कई गाने पसंद है, हिंदी फिल्मों के गाने तो सारे समझ में आते हैं, बंगला फिल्म के गाने भी जब सुनते हैं थोड़े अच्छे लगते हैं। हिंदी फिल्मों की बात करूंगा तो उनकी अमानुष फिल्म,
1: जी
0: उन्होंने हिंदी में आप देखिए करीब 15 फिल्मों में काम किया, लेकिन अमानुष उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म थी।
1: जी
0: और जो मुझे अभी तक याद है दिल्ली के कश्मीरी गेट पर ब्रिटिश सिनेमा है जहां इसकी सिल्वर जुबली हुई थी अमानुष की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमानुष वहां खूब चली, और उत्तम कुमार बहुत खुश थे देखकर कि मेरी दिल्ली जैसे शहर के अंदर कलकत्ता में उनकी बंगाली फिल्मों ने तो बहुत जुबली बनाई, और कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो उनकी हिंदी में भी आई, बंगला में भी आई, अमानुष भी ऐसी फिल्म थी, इसके अलावा एक बंदी फिल्म भी ऐसी थी जो हिंदी बांग्ला दोनों में साथ बनी, तो वो वहां बंदी वहां चली यहाँ नहीं चली, लेकिन अमानुष वहां भी चली और यहाँ भी चली। तो उसका जो गाना है सबसे अच्छा वो तो भूल ही नहीं सकते, जो अमानुष का टाइटल सॉन्ग है और उसको जो इंदिवर ने लिखा है, और किशोर कुमार का बहुत बेस्ट गाना है
1: दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा,
0: ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। आप देखिए इतने सुंदर शब्द, इतने सादे बड़े शब्द है, कहीं मुश्किल बड़े शब्द नहीं है, इंदिवर ने इतने अच्छे से इस गाने को लिखा, और जो उसके अंदर चलता है बोट के अंदर, शिप के अंदर, शिवा टैगोर पीछे लेटी हुई है, और जब गाना सुनती है तो आ जाता है उनकी इनसे प्रेम होता है, लेकिन
1: और
0: बाद में
1: ये शब्द भी अमानुष,
0: अमानुष
1: जो
0: बना के छोड़ा, अमानुष को तो अभी भी लोग सोचते हैं अमानुष क्या है, लेकिन अमानुष वही जो क्रूर व्यक्ति हो
1: जी,
0: जो अपना जानवरों जैसा व्यवहार करता हो, बहुत कठिन हो, उसको बोलते हैं
2: अमानुष। जो फिल्म का टाइटल है उस पर मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, और बहुत ही एक रोचक प्रसंग मुझे याद आ गया है अमानुष शब्द को लेकर के, क्योंकि मैं परिचित रहा हूँ कमलेश्वर जी से
1: जी।
2: और उनका भी लेखन इस फिल्म में रहा है अमानुष में, और शक्ति सामंत साहब ने यह फिल्म बनाई थी, तो मुझे उनकी एक मेमोरी याद आ रही है इस वक्त कमलेश्वर जी की, और उन्होंने मुझे बताया भी था, और जब उनसे जिक्र होता था काफी फिल्मों पर चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया था कि कैसे इस शब्द को लेकर के एक मंथन हुआ था, एक बहस हुई कि क्या हिंदी वाले, हिंदी के दर्शक अमानुष शब्द को क्या ठीक से समझ पाएंगे, और ये क्या बॉक्स ऑफिस पर, जो एक मासी एक्टर का अपना एक इमेज है वहाँ, क्या बॉक्स ऑफिस में यह शब्द उतना पॉपुलर हो पाएगा, लोग क्या देखने आएंगे,
1: और नायक की छवि से इसे जोड़ पाएंगे,
2: नायक की छवि से जोड़ पाएंगे, जो सत्यजीत रे ने नायक बनाई थी, इतनी ऐसी एक्टिंग है उस फिल्म में उत्तम कुमार।
0: असल में इनका जो है उसके अंदर एक शराबी एक ऐसा व्यक्ति है
2: हाँ।
0: जो दिल का बड़ा अच्छा है, लेकिन वो शराबी बन गया बहुत ज्यादा, उसका बहुत संपन्न परिवार होता था, मधुसूदन उसका नाम है, मधु जिसको बोलते हैं, और शर्मिला टैगोर रेखा की भूमिका में है, रेखा है वो, तो इनका जो आपस का प्रेम है बहुत अच्छा दिखाया है, उसमें नफरत भी है, प्रेम भी है, हमदर्दी भी है, एक दूसरे से दूर होते हुए पास होते हुए हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा मानुष में जो चित्रण किया था। और कमलेश्वर ने उनकी खाली इसी की नहीं, और भी फिल्मों की कथा उन्होंने लिखी,
2: हाँ लिखी है,
0: कमलेश्वर जो है उनके साथ इतने पसंद बन गए थे कि बहुत पसंद आते थे उत्तम कुमार को, और जो फिल्में बाद में जो भी आई उसकी पटकथा भी हिंदी में, जो भी फिल्म आई वो कमलेश्वर ने लिखी।
1: यानी ये गीत हमें बहुत सारी कहानियां, एक साथ
0: सारी कहानियां जोड़ता है।
2: मैं उसमें यही जोड़ना चाह रहा था कि अमानुष शब्द को रखा गया सोच समझ करके, एक चुनौती ली गई
1: जी बिल्कुल,
2: कि ये नाम रखकर देखते हैं वाकई कितना पॉपुलर होता है, और ये वाकई प्रयोग जो है सफल हो गया, और यह फिल्म बहुत पसंद की गई।
0: अब देखिए ना, वैसे दिल तोड़ने को लेकर बहुत गाने अलग तरह के, ऐसा कोई गाना नहीं मिलेगा कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा अमानुष बना के छोड़ा
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: ये जो गाना है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है
1: जी, तो ठीक है हम आपकी पसंद का यही गाना अपने

गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अभिनेता उत्तम कुमार के बारे में और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं जाने माने फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव और प्रदीप सरदाना जी। तो संजीव जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, हम जब उत्तम कुमार का जिक्र करते हैं तो एक अभिनेता के तौर पर तो बहुत सारी बातें हम उनके बारे में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो नायक के साथ जननायक भी थे, क्योंकि वो जनता के दुख दर्द के साथ जुड़ते थे, वो औरों के बारे में सोचते थे और सुभाष चंद्र बोस जी से भी उन्हें जोड़ा जाता है। मैं

0: से ये अनुरोध करूंगी कि हमारे श्रोताओं के लिए आप पूरा एलोबरेट करें वो जो संपर्क है, वो जो सूत्र है उनके बीच का।
1: नहीं, जो जननायक वाली बात जो आपने कही है ना,
0: जी
1: जैसे प्रदीप जी ने जिक्र किया कि सन 1980 में जब उनका देहांत हुआ तो एक जन सैलाब उमड़ा था,
0: जी
1: तो वो जननायक का ही एक प्रभाव था। सन 1980 में तो मैं बहुत छोटा था,
0: जी
1: स्कूल में पढ़ रहा था, तो मुझे तो वो तस्वीर नहीं मालूम। लेकिन एक फिल्म अध्येता होने के नाते, एक फिल्म
0: जी
1: समीक्षक होने के नाते, जो हम इतिहास के पन्नों में जब घुसते हैं, बहुत कुछ अध्ययन करते हैं, तो किसी भी फिल्म अभिनेता के बारे में, निर्देशक के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल करते हैं। तो उत्तम कुमार जी के बारे में जो एक जननायक वाली जो छवि है, वो जो हमें एक देखने को ये मिलता है कि वो आम जनता से,
0: जी
1: आम जनता के दुख दर्द से बहुत ही जुड़ाव रखते थे, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत तरह के सामाजिक कार्य भी किए थे।
0: जी
1: आजादी मिलने से पहले की

0: एक फिल्म अध्येता होने के नाते, एक फिल्म
1: जी
0: समीक्षक होने के नाते, जो हम इतिहास के पन्नों में जब घुसते हैं, बहुत कुछ अध्ययन करते हैं, तो किसी भी फिल्म अभिनेता के बारे में, निर्देशक के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल करते हैं। तो उत्तम कुमार जी के बारे में जो एक जननायक वाली जो छवि है, वो जो हमें एक देखने को ये मिलता है कि वो आम जनता से,
1: जी
0: आम जनता के दुख दर्द से बहुत ही जुड़ाव रखते थे, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत तरह के सामाजिक कार्य भी किए थे।
1: जी
0: आजादी मिलने से पहले की बात है, सन 1943 की बात है, जब आनंद मठ का जब मंचन
1: जी
0: होने वाला था, उसके लिए उन्होंने आर्थिक सहयोग किया था।
1: जी
0: तो समाज सेवा, संस्कृति और साहित्य को लेकर के उनमें में उनके भीतर कैसा एक प्रेम था, लगाव था, वहीं से समझा जा सकता है।
1: जी
0: उसके बाद फिर बंगाल में बहुत तरह की सामाजिक समस्याएं आई। 1978 की बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, उस वक्त उन्होंने सामाजिक कार्य किए, पैसे इकट्ठे किए और तत्कालीन मुख्यमंत्री के राहत कोष में उन्होंने जमा करवाया, और इस तरह से समाज सेवा अपनी जारी रखी।
1: जी
0: इसके अलावा कुछ और काम उनके हैं जो कि उनके जननायक की छवि को उजागर करते हैं।
1: जी
0: जैसे उन्होंने शिल्पी संगठन बनाया था फिल्म आर्टिस्ट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म आर्टिस्ट जब उम्र दराज हो जाते हैं, उनको जब काम मिलना कम हो जाता है, वैसी स्थिति में उनके पास आर्थिक स्रोत कम हो जाते हैं,
1: जी
0: वहां पर उन्होंने एक संगठन के माध्यम से उन सभी कलाकारों को, जरूरतमंद कलाकारों की मदद के लिए काम किया, पैसे इकट्ठे किए, उन सब तक पैसे पहुंचाते थे।
1: जी
0: इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट का आयोजन भी कराया था एक मदद के लिए, है ना, जिसमें वो खुद कैप्टन बने थे पश्चिम बंगाल से,
1: जी
0: और मुंबई से कैप्टन बने थे दिलीप कुमार साहब।
1: जी
0: इस तरह के कई सारे काम करते थे। लेकिन एक जो सबसे दिलचस्प है वाकया, वो ये है कि वो मुरमुरे के बड़े शौकीन थे, मुरमुरे के बड़े शौकीन थे, और पकौड़े जो होते हैं ना, खाने
1: जी
0: वाली चीजें, पकौड़े जो लोकेशन पर, वो सबको वो मुरमुरे और पकौड़े खिलाते थे। और उनका जो मानना था ये कि जो छोटा आर्टिस्ट है या कोई बड़ा डायरेक्टर है, उन सबको वो अपनी तरफ से ये खाने की चीजें वितरित
1: जी
0: करवाते थे, उनको देते थे, और उनके मन में एक ये भाव था कि कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता है।
1: जी
0: तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, एक अभिनेता सिल्वर स्क्रीन के एक बड़े नायक होने के साथ साथ सिल्वर स्क्रीन के पीछे की जो उनकी एक छवि है, कि
1: जी
0: आम जनता से जुड़ाव का, सामाजिक कार्य का, उसने उनको एक जननायक की छवि प्रदान की।
1: जी और इंडियन नेशनल आर्मी के लिए भी वो फंड देते
0: हाँ,
1: थे,
0: इंडिया
1: आर्थिक मदद करते थे।
0: करते थे।
1: जी
0: इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसमें उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो उन्होंने गुप्त दान बहुत किए थे, गुप्त कार्य बहुत करते थे,
1: जी
0: ऐसे काम जिनको लेकर के पब्लिक में मैसेज जाना बहुत जरूरी नहीं है। अगर हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो पब्लिक में ये जाना बहुत जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े समाज सेवी है, बहुत बड़े सामाजिक नायक है, क्रांतिकारी व्यक्ति हैं,
1: जी
0: इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह की छवि भी उन्होंने बनाई थी, और गुप्त दान के जरिए जो आम लोगों तक उनकी सहायता पहुंचती थी,
1: जी
0: इससे भी उनकी एक जननायक की छवि बनी थी।
1: प्रदीप
0: जो
1: जी आपसे
0: 1971 की जो वार थी, उसमें उन्होंने सेना के लिए बहुत पैसा खर्च किया,
1: जी
0: उनके परिवार के लिए, जो शहीद हो गए थे उनके लिए, उन्होंने कई सेवेंटी
1: कार्यक्रम भी किए उसके लिए, अपनी जेब से भी
0: एट
1: बहुत दिया, तो
0: जी
1: ये बड़ी बात थी। और दूसरा जो जो आनंद मठ का बता रहे थे राशि, उसके अंदर जो मेरी जानकारी है कि 5,000 रुपये उन्होंने उस समय दिए थे उसके लिए, तो बहुत बड़ी राशि थी।
0: जी जी प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगी, 1950 से 70 के दशक के दौरान जब समाज में बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस की ये बात है, तब ऐसा कहा जाता है कि उत्तम कुमार की फिल्मों ने बंगाली अस्मिता और मध्यम वर्गीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने फिल्में भी वो की जो सामाजिक मुद्दों को उजागर करती थी, और इस तरह से भी एक सॉफ्ट स्किल के माध्यम से उन्होंने लोगों में एक तरह की क्रांति जगाई। इस बारे में आप क्या कहना
1: नहीं, बिल्कुल
0: चाहेंगे?
1: आपकी सही बात है कि उन्होंने इस तरह की फिल्में करते रहे, उनकी चाहे सामाजिक उद्देश्यों को लेकर हो, खाली
0: जी
1: देशभक्ति को लेकर ना हो, लेकिन समाज में आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो
0: जी
1: बदलाव आए और जो जिस तरह भारत में तरक्की शुरू की, उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी किस तरह की फिल्में बनाई, और
0: जी
1: साथ ही एंटरटेनमेंट भी किया, क्योंकि एक बड़ा एक ऐसा एटमोसफेयर बन गया था। बंगाल तो बहुत ज्यादा प्रभावित था स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि बिल्कुल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था, उधर कुछ
0: जी
1: लोग बांग्लादेश में चले गए, कुछ इधर आ गए, तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि बहुत परिवार बिछड़ गए थे। तो इन्होंने मनोरंजन को भी बहुत ज्यादा दिया, जिस
0: जी
1: तरह राज कपूर ने 1951 में आवारा फिल्म बनाई, तो रूस में इसलिए चली कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा एटमोसफेयर बन गया था कि लोग उदास थे, निराशा में जी रहे थे, तो इसलिए इन्होंने भी ऐसी फिल्में की जो लोगों को एंटरटेनमेंट करें, उनको उभारें, उनको नया संदेश दें, नया जीवन दें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो दें। तो
0: जी
1: बहुत बड़ा था। उत्तम कुमार की कितनी ही बात करें, एक बात याद करते 10 बात याद आ जाती है। अब ये बोल रहे तो मुझे कई बात याद आ जाती है बोलते बोलते।

0: वैसी याद आ जाती हैं। एक ऐसा भी नेता जो महानायक रहा, तो उसको आप देखिए, वहां के लोगों ने, बंगाल ने बहुत वो किया, विदेशों में भी उनकी कुछ फिल्में चली, रूस में भी चली और जगह भी चली, नायक फिल्म भी बहुत जगह उसको अवार्ड मिले, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी गई और उसको फिल्म को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनको इस तरह का सम्मान नहीं मिल सका, वो भी इस बात के लिए परेशान से रहते थे कि मैं भी पूरे विश्व में छाऊं, बंगाली सत्यजीत रे के माध्यम से, या अपनी वक्त सत्यजीत रे की फिल्में तो पूरे विश्व में जाती जाती थी, कोई फेस्टिवल ऐसा नहीं होता था जहां उनकी फिल्म नहीं जाती थी। कि उन्होंने तो शुरुआत की अपनी जब पहली फिल्म से, पाथेर पंचाली से ही, उसी से उन्होंने विश्व में नाम कमाना शुरू कर दिया था। तो अपनी पहली फिल्म से हो गई, तो इसलिए उनकी जो भी फिल्म बनती थी वहां जाती थी। लेकिन वो भी चाहते थे कि मैं हिंदी सिनेमा में जाऊं, उससे भी मेरा नाम हो, मेरी पहचान बने। की अभिनेता की ख्वाहिश होती है ना, हम भी मान लो लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी पाठक सभी वर्ग में हो, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सब जगह सुने जाएं, सब जगह देखे जाएं। तो अभिनेता की तो बहुत बड़ी चाहत होती है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, जब उसको एक जगह इतनी बड़ी मान्यता मिल जाती है वो चाहता है। आप ये देखिए उनको, हालांकि राज कपूर ने एक बार कहा कि आप मेरी फिल्म में काम कीजिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की, उन्होंने मना कर दिया। राज कपूर ने सुचित्रा सेन से भी कहा, जो उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्म की, लेकिन सुचित्रा सेन क्या थी, वो ऐसे व्यक्ति को पसंद करती थी जो बुद्धिमत्ता वाला हो, बातचीत में जिसकी मजबूती हो, उसका कोई आकर्षण शरीर का या उसके अंदाज, वो उनको पसंद नहीं थे। तो राज कपूर उनको आमंत्रित करने गए, उनको घर पे मेरी फिल्म में काम कीजिए, जैसे वो बैठी उनके पैरों में जाकर बैठ कर उनको फूल दिया, सुचित्रा सेन को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने भी राज कपूर के साथ काम करने से मना कर दिया। लेकिन बाद में राज कपूर को जब लगा, जब उनकी संगम पिक्चर के लिए उन्होंने कहा था, और राज कपूर ने उत्तम कुमार को, जो राजेंद्र कुमार का रोल था, वो सबसे पहले उन्होंने उत्तम कुमार को ऑफर किया था
1: जी।
0: तो लेकिन उनको लगा कि पता नहीं मैं अभी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब 1964 में वो फिल्म रिलीज हुई, राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म जिसकी शूटिंग विदेशों में पहली बार की, तो उनकी सुपरहिट हो गई और राजेंद्र कुमार और राज कपूर की जोड़ी साथ में विजयंती माला एकदम हो गई, तब उनको लगा रही है तो मैंने शायद गलती करी, तो मुझे कोई फिल्म करनी चाहिए। उसी का नतीजा था कि उन्होंने 1967 में खुद प्रोड्यूसर बने, विजयंती माला को हीरोइन लिया। वैजयंती माला से मेरी कितनी बार बात होती है, तो जब भी कहती है उस बात का जरूर जिक्र करती हैं कि वो फिल्म चली नहीं, लेकिन उत्तम कुमार ने बहुत ही दिल से बनाया था, बहुत पैसा लगाया उस समय के हिसाब से, और कलर फिल्म थी पहली वो, तो उन्होंने वो बनाया, तो तब वो फिल्म 1967 में आई छोटी सी मुलाकात, और वो इतनी मशहूर हो गई। वैजयंती माला के साथ उनकी मतलब फिल्म चाहे बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हो गई और वो कर्ज में डूब गए, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उस फिल्म को आज भी हम याद करते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी।
1: तो पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता उत्तम कुमार के बारे में। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं संजीव श्रीवास्तव, आप जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, लेखक हैं, और इस बार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक के तौर पर आप ही को प्रदान किया जा रहा है, स्वर्ण कमल पुरस्कार। संजीव जी शुरुआत में रह गया, लेकिन मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस उपलब्धि के लिए, आपकी लेखनी यूं ही चलती रहे और बहुत सारी उपलब्धियां आपको प्राप्त हों।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और तमाम श्रोताओं को, और साथ में इस पुरस्कार के लिए मेरा चयन करने के लिए जूरी के सदस्य को और सभी चाहने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं प्रदीप सरदाना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं, और पिछले 50 वर्षों से हम एक सक्रिय मीडियाकर्मी के तौर पर अलग अलग भूमिकाओं में आपको देखते रहे हैं। तो संजीव जी, अब मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी,
0: मुझे भी बधाई दीजिए 50 साल होने की।
1: जी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको।
0: एक साल से सेलिब्रेशन चल रहा है मेरा
1: जी,
0: शताब्दी का
1: जी, इस अर्धशताब्दी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
2: नीलम जी, मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि प्रदीप जी इतने बड़े दिग्गज व्यक्ति हैं, 50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं करीब 25 साल से कर रहा हूँ
1: जी,
2: बिल्कुल आधे का फर्क है। आज उनके साथ मैं बैठकर वार्ता कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है
1: जी। तो प्रदीप जी, आपका ये जोश जो है दमखम यूं ही बना रहे, हम ये कामना करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हम आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे जी। तो संजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी, उत्तम कुमार जी की बहुत सारी फिल्में, बांग्ला फिल्में जो हिट रही, उनका रीमेक बाद में बॉलीवुड में बना, यानी हिंदी फिल्मों के रूप में हमारे सामने आया, और जो भूमिकाएं उत्तम कुमार ने निभाई थी वो भूमिकाएं बाद में हिंदी फिल्मों में देवानंद साहब ने भी निभाई, फिर दिलीप कुमार साहब भी उसमें रहे और अपने समय के बहुत ही दिग्गज अभिनेता रहे। मेरा एक तो सवाल ये कि उनकी फिल्मों के रीमेक क्यों बने, दूसरा ये कि क्या वजह थी कि वो भूमिकाएं खुद उत्तम कुमार ने नहीं निभाई बल्कि हमारे हिंदी फिल्म कलाकार जो थे बाद में उन्होंने निभाई।
2: इसकी वजह तो नहीं कही जा सकती कि उस समय के डायरेक्टर, उस समय के प्रोड्यूसर और हिंदी में जिस अभिनेता की जो छवि बन चुकी है
1: जी,
2: वो भी वजह होती है, साथ में कलाकार के पास क्या समय है, वो किस तरह के काम में और इन्वॉल्व है, दूसरी फिल्मों में इन्वॉल्व है, टाइमिंग, ये सब भी बड़े फैक्टर होते हैं
1: जी।
2: लेकिन कुछ बड़ी फिल्में हैं जो कि बांग्ला में पहले बनी और फिर उनका हिंदी में रीमेक हुआ, और

0: तो हिंदी में रिमेक हुआ, वे सारी फिल्में
1: जी
0: बहुत ही पसंद की गई, बहुत ही चर्चित वो फिल्में हैं। जैसे कि अगर मैं एक जिक्र करूं, साहब बीबी और गुलाम,
1: जी
0: ये बांग्ला में बनी जिसमें खुद उत्तम कुमार जी थे, लेकिन जब उसका हिंदी रीमेक बना,
1: जी
0: जो उसमें बांग्ला में भी वो भूतनाथ बने थे, और जब हिंदी रीमेक हुआ तो उसमें गुरुदत्त साहब ने उसमें भूतनाथ का रोल किया।
1: जी
0: इसके अलावा और भी कई सारी फिल्में हैं, जैसे कि बांग्ला में सवार ओपोरे नाम की एक फिल्म बनी 1955 में। इसमें क्या है कि एक बेसिकली ये क्राइम थ्रिलर था, जिसमें एक अपने बेगुनाह पिता को बचाने के लिए बेटा प्रयास करता है, और तो ये कहानी थी। और ये कहानी हिंदी में बनी काला पानी नाम से, जिसमें देवानंद साहब थे। इसके अलावा भी कई सारी फिल्में हैं, जैसे कि अग्नि परीक्षा, जिसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं। अग्नि परीक्षा का हिंदी रीमेक बना था, छोटी सी मुलाकात, जिसमें वो खुद ही थे।
1: जी
0: लेकिन इसके अलावा दूसरी फिल्म है जैसे लाल पत्थर बनी थी, लाल पत्थर भी बांग्ला
2: जैसे
0: में बनी।
2: आशापुर देवी के उस पर थी,
0: हाँ,
2: जी
0: उपन्यास पे थी। जी
2: उपन्यास
0: जी
2: पर
0: जी
2: आधारित
0: बिल्कुल
2: थी।
0: बिल्कुल। तो लाल पत्थर बनी थी, तो लाल पत्थर जब हिंदी में बनी तो उसमें राजकुमार एक्टर थे, और लाल पत्थर प्रसिद्ध फिल्म हुई अपने आप में, बहुत ही
2: बहुत अच्छा
0: क्लासिक फिल्म है,
1: जी
0: बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, बहुत पसंद की गई थी। बांग्ला में एक फिल्म बनी थी भ्रांति विलास, वो हास्य बोध की फिल्म थी,
1: जी
0: उसमें वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर होते हैं, और जब हिंदी रीमेक उसका जब बना,
1: तो चुपके चुपके फिर
0: ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बनाई वो
1: जी
0: फिल्म, जिसका नाम चुपके चुपके है, और
1: जी
0: धर्मेंद्र उसमें
1: परिमल त्रिपाठी का
0: परिमल
1: किरदार जो
0: त्रिपाठी
1: है
0: का रोल में आते हैं,
1: वो
0: और
1: सबके
0: धर्मेंद्र की वो
1: नजदीक।
0: बहुत ही क्लासिक फिल्म है। धर्मेंद्र की मुझे लगता है मेरी चॉइस में, अगर अगर हम उनकी हम 5 पसंदीदा फिल्में अगर एक साथ रखते हैं, तो उसमें
1: जी
0: चुपके चुपके को भी हम शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी फिल्में हैं। एक फिल्म आई थी 1975 में, हम इसे ओ सखा, इसका जब हिंदी रीमेक बना, वो बना बेमिसाल नाम से।
1: जी
0: उसमें डॉक्टर के दोस्त अमिताभ बच्चन उसमें बनते हैं, विनोद मेहरा उस फिल्म में डॉक्टर बने हैं।
1: जी
0: तो अमिताभ बच्चन का जो रोल था, वो रोल बांग्ला फिल्म में उत्तम
2: उत्तम
0: कुमार
2: कुमार
0: जी ने निभाया
1: जी
0: था।
1: और अंगूर तो बहुत
0: अंगूर,
1: चर्चित फिल्म
0: गुलजार
1: थी।
0: साहब की अंगूर,
1: जी
0: वो भी एक तरह से बांग्ला की ही रीमेक थी। लेकिन इसके अलावा कुल मिलाकर हम ये
2: ऐसा
0: देखते
2: वो
0: हैं।
2: शेक्सपियर के उस पे थी
0: जी
2: जी,
0: जी जी
2: कॉमेडी ऑफ
0: कॉमेडी ऑफ
2: एरर्स
0: एरर्स
2: पे,
0: जी
2: लेकिन उसको बंगला में बहुत चली वो।
0: इसके अलावा देखिए अमर प्रेम, अमर प्रेम को लेकर से बहुत सारी कहानियां हैं।
1: जी
0: राजेश खन्ना उसमें आते हैं, और इसमें राजेश खन्ना को तो कहा गया बकायदा, शक्ति सामंत साहब ने बकायदा कहा कि आप जब बांग्ला में जो बनी है, उसमें जो उत्तम कुमार जी ने जो अभिनय किया है, उसको आप देखिए और उसको फॉलो करने की भी कोशिश करिए।
2: वैसे ही धोती कुर्ता बांधा उन्होंने,
0: धोती को
2: जैसे उसमें बांधा
0: जी, वैसे ही धोती कुर्ता पहना, और आयुष खन्ना अपने लिए बहुत ही गौरवान्वित उन्होंने एक
1: जी
0: भाव व्यक्त किया कि वाकई मुझे उत्तम कुमार जी की पोशाक को धारण करने का मौका मिला है, उनकी भूमिका को निभाने का मौका मिला है। तो राजेश खन्ना जैसे स्टार समझिए, उस वक्त जिस
1: जी
0: समय अमर प्रेम फिल्म आती है, उस समय राजेश खन्ना का क्या सितारा बुलंद था।
1: जी
2: और
0: मैंने
2: इसका
0: देव
2: इसका ये बता दूं, इसका जो गाना है ना चिंगारी कोई भड़के,
0: जी
2: वो भी हुगली में वहीं पिक्चराइज किया गया, उसी जगह जहां वो किया गया। और शिवया टैगोर बता रही थी कि वहां इतना पानी सड़ चुका था कि बड़ी बदबू आती थी, और हमको ऐसा लगता फिल्म में ऐसा दिखा रहा था, बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर है। कहते हमने उसमें भी काम किया, 5 दिन हमने इस गाने को शूट किया वहां पर।
1: ये उत्तम कुमार की छवि का प्रभाव था उस समय। जी
0: तो कहने का आशय यह है कि उतने बड़े स्टार, जो उस वक्त के इतने बड़े कलाकार थे, उन्होंने भी उत्तम कुमार की निभाई हुई भूमिका को हिंदी में निभाया, और
1: जी
0: बहुत ही सफलता पूर्वक निभाया।
1: जी
0: राजेश खन्ना तो कहते थे कि अगर मैं 50% भी उनके भावों को ठीक से व्यक्त कर पाया, तो शायद मेरी वो बहुत बड़ी सफलता होगी।
1: प्रदीप जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम जब कहते हैं उत्तम कुमार तो एक छवि हमारे सामने आती है। एक तो ये छवि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में संजीव कुमार से बहुत मिलती जुलती है, तो क्या इसका कुछ नकारात्मक पहलू रहा कि उत्तम कुमार को अपनी एक इमेज बनाने में समय लगा? और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये नाम जो उनसे जुड़ा हुआ है, इस नाम के पीछे की कहानी क्या है?
2: देखिए, पीछे कहानी यह है कि इनके पिता ने इनका नाम अरुण कुमार रखा।
1: जी
2: तो अरुण कुमार चट्टोपाध्याय, अरुण कुमार चटर्जी जैसे आप जानते हैं, दोनों बोले जाते हैं, तो अरुण कुमार चट्टोपाध्याय इनका नाम रहा। इनके दो भाई और रहे, एक वरुण कुमार और एक तरुण कुमार। तरुण कुमार तो फिल्मों में रहे, उन्होंने तो 500 से ज्यादा फिल्में की, इनके छोटे भाई थे, 5 साल छोटे थे इनसे,
1: जी।
2: और उन्होंने, वरुण ने कोई फिल्में नहीं की। और जो इसकी बात है, तो इन्होंने जब शुरुआत की, सबसे पहले जो इनकी फिल्म थी 1948 में दृष्टिदान, दृष्टिदान, तो दृष्टिदान के अंदर ये अरुण कुमार के नाम से,
1: जी।
2: तो वो फिल्म नहीं चली। तो इनके साथ ऐसी हुआ, जैसे 5 साल अमिताभ बच्चन ने बहुत संघर्ष किया ना, सारी फिल्में फ्लॉप होती रही। उसके बाद जंजीर से चले वो, 69 में उनकी पहली फिल्म आई सात हिंदुस्तानी, 1973 में जंजीर आई, से चले। इनका भी ठीक ऐसे ही रहा कि 5 साल इन्होंने खूब संघर्ष किया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने नाम नहीं बदले, इन्होंने नाम बदले। उसके

0: जिन्होंने अपने नाम अनूप कुमार के नाम से फिल्में की, ठीक, इन्होंने उत्तम चटर्जी के नाम से फिल्में की,
1: जी
0: उसके बाद जाकर इनका जो है ये नाम आया उत्तम कुमार, उसके बाद इनकी गाड़ी चल निकली, और उसके
1: जी
0: बाद जो इनकी जो बसु परिवार फिल्म आई थी वो सबसे ज्यादा चली, बसु परिवार। उसके
1: जी
0: बाद तो बस फिर अग्नि परीक्षा और ये सब सारी फिल्में ऐसे चलती रही, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिर तो पूरा जो भी समय था वो लगातार उत्तम कुमार का था।
1: जी
0: आप देखिए, इतनी फिल्में करना और उसमें से अधिकतर फिल्में जुबली होना और इतनी सफलता मिलना, इतनी लोकप्रियता मिलना, लगातार जो ये सब करना, ये बहुत बड़ी बात थी। जिस तरह महानायक के रूप में मुंबई इंडस्ट्री के अंदर, मैं उसको बॉलीवुड कहना नहीं चाहता, मैं उसको
1: जी
0: हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्म उद्योग ही कहूंगा, बॉलीवुड की निकल पे बॉलीवुड मुझे नहीं जमता। तो उसके अंदर जिस तरह दिलीप कुमार को महानायक कहते रहे, या आप
1: जी
0: जाके अमिताभ बच्चन को महानायक कहते हैं, उसी तरह उत्तम कुमार अकेले महानायक रहे वहां पर, अभी भी वही महानायक है, उनकी जगह कोई नहीं ले सका। चाहे कई लोगों ने, और हिंदी के अभिनेता भी वहां गए, उन्होंने भी फिल्में की, विश्वजीत भी इधर भी करते रहे, वहां भी करते रहे, मिथुन चक्रवर्ती भी जुड़े रहे, तो दोनों सिनेमा से, और भी बहुत सारे जुड़े रहे, विश्वजीत के पुत्र भी जुड़े रहे,
1: जी
0: इनके पोते भी जो है उत्तम कुमार के, वो भी अब कर रहे हैं फिल्म जो है। फिर बाकी और एक बेटा था, उनकी डेथ होगी बाद में, फिर बाद में उसने किया, तो वो भी इस तरह सिनेमा कर रहा है। इनका असल में परिवार जो था, वो इनके जो फादर थे, हमारे सिनेमा था इंदिरा सिनेमा,
1: जी
0: उसके अंदर प्रोजेक्टर चलाते थे, तो उसी को देखकर इनको फिल्में करने का मन किया। और लेकिन इनका बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था, तो वो थिएटर भी साथ साथ करते रहते थे, तो उससे क्योंकि ये सिनेमा तो कर नहीं सकते थे, आप सिनेमा देख कर, ये नहीं कि आप सिनेमा में आपको काम मिल जाएगा, तो
1: जी
0: ये थिएटर में काम करना शुरू किया। तो फिर थिएटर से जो है इनको धीरे धीरे वो हुआ, फिर 1948 में इनकी दृष्टिदान आई, और फिर जाके इनकी पिक्चर 1953 के अंदर इनकी चलनी शुरू हुई, और फिर देखिए वो तो इतिहास बन गया उत्तम कुमार, आज हम
1: जी
0: याद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि इतने साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तम कुमार का जिक्र करके
1: जी
0: उनको दोबारा से लाइव कर दिया, जो
1: जी
0: उनको भूल भी रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, उनको
1: जी
0: जब पुरानी किसी सरकार ने पद्म पुरस्कार नहीं दिए, चाहे दादा साहब फाल्के नहीं दिया, लेकिन ये याद करके सबसे बड़ा पुरस्कार है। आज देखिए सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं उत्तम कुमार, कि उत्तम कुमार कौन है, नई
1: जी
0: पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं जानती, मेरे परिवार में उत्तम कुमार कौन है, क्योंकि उत्तम कुमार एक तो भगौर में ज्यादा रहे, यहाँ जैसे बताया कि उनकी फिल्में आई, 15 फिल्में की उन्होंने,
1: जी
0: और जैसे
1: और
0: बताया
1: संजीव कुमार जी से चेहरा
0: संजीव कुमार
1: मिलता
0: साहब,
1: था
0: देखिए
1: तो
0: जो आदि
1: उनसे भी
0: फिल्म है
1: जोड़ते हैं लोग।
0: वो भी कमलेश्वर ने लिखी थी,
1: जी
0: और कमलेश्वर पहले चाहते थे कि इसके अंदर इन्हीं को ले, उत्तम कुमार को। अब आपने बात की, मुझे याद आ गया,
1: जी
0: जो कमलेश्वर जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे बहुत लंबे सालों तक, तो उन्होंने ये कहा कि हम उनको लेना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हो
1: किस
0: रहे थे।
1: फिल्म में?
0: आंधी फिल्म में,
1: आंधी में।
0: नाइनटीन
1: जी
0: सेवेंटी थ्री में जब ये
1: जी
0: फिल्म हुई, तो उत्तम संजीव कुमार का जो रोल था वो चाहते थे वही करें,
1: सुचित्रा सेन के
0: सुचित्रा सेन
1: साथ।
0: इसके अंदर थी, और
1: जी
0: सुचित्रा सेन उनकी फेवरेट हीरोइन थी, दोनों बहुत अच्छी उनकी जोड़ी थी, लेकिन उस समय उन्होंने वो फिल्म नहीं की इस तरह का।
1: जी
0: तो लेकिन आप देखिए वो आंधी फिल्म है, वो भी इतनी चली संजीव कुमार की, संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उसके अंदर मिला, और
1: जी
0: शिल्पा टैगोर भी उसको बहुत याद करती हैं, क्योंकि शिल्पा टैगोर के साथ भी इनकी अच्छी जोड़ी थी, और सुचित्रा सेन के साथ भी इनकी अच्छी रही, तो ये दो अभिनेत्रियां तो उनकी बहुत ज्यादा रही जो इनकी इस तरह। बाकी सुप्रिया देवी जो उनके
1: जी
0: साथ बाद में जीवन में आई, पहले उन्होंने शादी की गौरी देवी से, तो वो लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाई, 1963 में इनका अलगाव हो गया था दोनों का,
1: जी
0: फिर ये इनके साथ रहने लगे, उनके साथ पूरा तलाक नहीं हुआ था, लेकिन वो अंत तक 1980 तक इनके साथ रहे। तो
1: जी
0: इनका जो परिवार है वो एक अपना एक अलग तरह का था, वैसे दिल खोल परिवार था, मतलब वो इतना संपन्न भी नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था संयुक्त परिवार था, तो एक ने कमाया, दूसरे ने ज्यादा कमाया, तीसरे कम कमाया,
1: जी
0: तो इस तरह आता था कि वो तो आनंद में रहते थे, तो समाज सेवा में भी सक्रिय रहते थे, सिनेमा में, रंगमंच में बहुत काम किया। रंगमंच का काम तो सामने आ नहीं पाता जो पुराने लोगों
1: जी
0: ने किया, हम पृथ्वीराज कपूर को याद करते हैं, कोलकाता में उन्होंने इतना किया, शशि कपूर ने भी जाकर किया,
1: और उस
0: जेनिफर,
1: समय रंगमंच जन जागरण का कार्य
0: हाँ
1: करता
0: उनकी
1: था।
0: जेनिफर जो उनकी पत्नी रही, वो
1: जी
0: भी उनको शशि कपूर को वही मिली, तो वो थिएटर करती थी उन अपने
1: जी
0: फादर के साथ, और शशि कपूर अपने फादर पृथ्वीराज कपूर के साथ करती थी। तो थिएटर का जो देखिए कोलकाता के अंदर सबसे बड़ी बात है, रंगमंच सिनेमा और कला का जो जुनून मैंने वहां देखा है, मैं
1: जी
0: तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1985 से कवर कर रहा हूँ, तो जब भी वहां जाता था तो लोगों के पास कपड़े फटे हुए हों, चप्पल टूटी हुई हो, लेकिन फिल्म देखने के लिए बड़े शौक से आते थे टिकट खरीद कर, क्योंकि वो जो रंगमंच और ये सब जो है उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, रंगमंच के अंदर
1: जी
0: उत्तम कुमार के योगदान को भी नहीं बुलाया, तभी जो है आप ये देखिए यहाँ के लोग हम वहां जाके सिनेमा करते थे, न्यू थिएटर वहां रहा जिसने इतनी फिल्में बनाई, बड़े बड़े एक्टर वहीं जाके काम करते थे। तो
1: जी
0: इसलिए कोलकाता जो पश्चिम बंगाल का, तो कोलकाता तो खासतौर से कहेंगे वो तो बिल्कुल कला संस्कृति और सिनेमा
1: सांस्कृतिक
0: की
1: राजधानी भी कहा
0: राजधानी है
1: जाता था।
0: संस्कृति।
1: जी बिल्कुल
2: एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें,
1: जी
2: और प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छी बात शुरुआत में कही थी कि उनकी उपेक्षा बहुत हुई, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया मन की बात में, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उत्तम कुमार जी कौन थे,
1: जी
2: ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मन की बात का, इस बारे में हमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं देखता हूं, जो मैं चाहता हूं

0: मेंशन करूं, वो ये कि मन की बात में इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने फिल्म कलाकारों को याद किया है, और खास तौर पर अगर याद करें साल 2024 के अंत में जब राज कपूर की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी
1: जी,
0: और मोहम्मद रफी साहब की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी, तपन सिन्हा की, इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने काबुलीवाला और सगीना महतो जैसी फिल्म बनाई
1: जी
0: हिंदी और बांग्ला में, उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी, तेलुगु फिल्म के एक बहुत बड़े कलाकार थे नागेश्वर राव
1: जी,
0: उनकी जन्म शताब्दी, उन सबको उन्होंने
2: भूपेन हजारिका को उन्होंने
0: मन की बात में याद किया, बहुत शिद्दत से याद किया है। और सिनेमा को लेकर के उनका एक दृष्टिकोण है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात जब हम करते हैं
1: जी,
0: तो सिनेमा हमारा जो है उसमें एक बहुत बड़ा झंडा की तरह दिखाई देता है कि सिनेमा कैसे पूरे भारत को जोड़ता है और दुनिया में हमारी भाषा को पहुंचाता है, इस बात को उन्होंने मेंशन किया है। और खासतौर पर राज कपूर के लिए उन्होंने ये कहा कि जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की उसको उन्होंने दुनिया के मंच पर पहुंचाया।
1: बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो भारतीय फिल्मों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसकी भी एक बड़ी भूमिका है, और साथ ही जो हमारी कला और संस्कृति का पूरी दुनिया में परचम लहराता है।
2: राज कपूर तो ऐसे हैं, उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री का पहला परिवार है
1: जी,
2: जिसको राज कपूर परिवार, कपूर परिवार, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने सब इकट्ठे सदस्यों को अपने घर पर बुलाया, उनसे चर्चा की, उन्होंने वो भी सॉफ्ट पावर की चर्चा की।
1: बिल्कुल, कई पीढ़ियों का दृष्टिकोण उसमें एक साथ दिखाई देता है।
2: राज कपूर भी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जिस तरह सत्यजीत रे और यहाँ राज कपूर, दो हमारे ऐसे हैं भारतीय सिनेमा के जो फिल्मकार बड़े, जिनको बुलाया जा सकता, दोनों ने अभिनय, सत्यजीत रे उस तरह की, राज कपूर ने तो खैर अभिनय भी किया, दोनों में उनका इस तरह का वो रहा, तो वो जो उनको कभी बुला ही सकते, उनकी अब जन्म शताब्दी अब देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, पिछले 3-4 साल से हम अलग अलग लोगों की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, उत्तम कुमार की,
1: वहाँ
2: संगीतकार के रूप में हमने अभी रवि और ओपी नैयर है उनकी जन्म शताब्दी मनाई है, अभी आगे भी हम राजकुमार की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, प्रेमनाथ की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, उससे पहले भी हम लगातार शैलेंद्र, गुरुदत्त, देवानंद, राज कपूर, देवानंद, इन सब की हम जो त्रिमूर्ति रही, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, तीनों की जन्म शताब्दी मनी मनाना, तो जन्म शताब्दी के बहाने इस तरह याद करना, और उल्टा खासतौर से ऐसे लोगों को याद करना जिनका बहुत अच्छा उनका अतीत, बहुत इतना काम किया उन्होंने, अब जाकर उनको लोग बुला रहे हैं, तो ये जन्म शताब्दी के बहाने और प्रधानमंत्री के कहने से तो इतना आगे हो गया
1: जी,
2: हम सब इनको, हमने इसलिए इनको 3 तारीख को बहुत याद किया
1: जी, और नई पीढ़ी भी इनके बारे में अब जान रही है, और विभिन्न माध्यम है हमारे पास जानने के, बहुत चर्चित नाम आपने लिए। मैं यहाँ संजीव जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम उत्तम कुमार जी का जिक्र कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि किस तरह से वो चाहे अपने नाटकों का मंचन हो या फिर वो अलग अलग इवेंट करते हो और उससे जो कलेक्शन है, फंड रेजिंग कार्यक्रम है, उनसे वो जन साधारण के लाभ के लिए, उनके कल्याण के लिए दान करते थे, और जैसे बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की बात कही तो वो हमेशा सजग रहते थे और उसमें अपनी ओर से योगदान करते थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, युवा पीढ़ी खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, जो लोकप्रिय चेहरे हैं, उनसे बहुत प्रेरित होती है और उनको बहुत फॉलो भी करती है, उनके जैसा अंदाज अपनाती है, उनके जैसा लाइफस्टाइल वो जीना चाहते हैं और कुछ कुछ चीजों की नकल भी करते हैं। ऐसे में जब ये चर्चित चेहरे जो हैं, प्रतिष्ठित हस्तियां हैं, जब आगे बढ़कर और अपना जो कार्य क्षेत्र है उससे अलग हटकर कुछ करती है और समाज के प्रति योगदान करते हैं, ये गंभीरता का स्तर बनाए रखते हैं और लोगों से जुड़ना चाहते हैं, इसकी क्या भूमिका है, इससे कैसे हमारी युवा पीढ़ी को एक दिशा मिलती है?
0: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, मुझे लगता है युवा पीढ़ी को बहुत अच्छी दिशा मिलती है और जिनको नहीं मिलती है उन्हें दिशा हासिल करनी चाहिए ऐसे कार्यों को देख करके। उत्तम कुमार जी ने जिस तरह से काम किया, सामाजिक काम किए, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार हैं, सुनील दत्त साहब ने कितना सामाजिक काम किया था ये हम लोग जानते हैं, उन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा मुझे लगता है कि जो विरासत उन्होंने खड़ी की, उस विरासत की कड़ी किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है
1: जी।
0: वह विरासत की कड़ी चलती रहती है, एकदम से लुप्त प्राय नहीं होती। जैसे कि पिछले दिनों हमने एक बड़ी सेलिब्रिटी को देखा कोविड के दौर में, सोनू सूद को, उसका सामाजिक काम करते हुए
1: जी।
0: आज के दौर के हमारे एक बड़े गायक हैं अरिजीत सिंह, वो भी सामाजिक सेवा, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं
1: जी।
0: इस तरह के कई सारी पर्सनालिटीज हैं जिनको देख करके युवा पीढ़ी इंस्पायर्ड होती है। हाँ, यह ठीक है कि लाखों की संख्या में अगर फैंस होते हैं तो शायद सामाजिक कार्यों से इंस्पायर्ड होने वालों की संख्या शायद 10-20-25 ही होती है, जो कि उस काम को आगे बढ़ाती है
1: जी।
0: लेकिन वो कड़ी बनी रहती है। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी है कि आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दीबाजी में है। मैं भी कभी

0: युवा था, जो आज के जेन जी युवा है, उसी तरह से मैं भी कभी युवा था। लेकिन जो आज स्पीड दिखाई देती है कि एक बार में, एक ही झटके में, एक ही कम समय में बहुत सारी चीजें हासिल हो जाए, ये जो जल्दबाजी है उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है जरूर। लेकिन उसी भीड़ में एक दो लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो कि सामाजिक काम कर रहे हैं, तो उससे
1: जी
0: आशा की किरण चमकती है कि एकदम से सामाजिक कार्यों की विरासत जो है वो खत्म नहीं हुई है। इसलिए वहां पर हम आशान्वित होते हैं
1: जी
0: कि ये काम चल रहा है और चलता रहेगा आगे भी।
1: जी तो यानी हमारी जो चर्चित हस्तियां हैं, लगातार उन्हें स्वयं आगे बढ़कर इस तरह के कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि उनसे प्रेरित होते हैं लोग।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारा ये कार्यक्रम सुनते सुनते अगर हमारे किसी युवा श्रोता के मन में ये बात आए कि उन्हें भी फिल्म क्रिटिक बनना है या फिल्म लेखन से जुड़ना है या वो पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो क्योंकि आप दोनों दिग्गज इस समय यहाँ हैं, तो मैं आपसे चलते चलते ये जरूर चाहूंगी कि आप हमारे युवा साथियों के लिए कोई एडवाइस यहाँ जरूर दें, वो कैसे आगे बढ़ें।
0: देखिए, आज तो एडवाइस देने की जरूरत ही नहीं है।
1: जी
0: सोशल मीडिया जब से आया है हर कोई क्रिटिक बन गया है।
1: जी
0: यूट्यूब पे देखिए, कोई फिल्म नहीं आती वो हमसे पहले वो उसका रिव्यू कर देते हैं। कई लोग तो अभी उसका ट्रेलर एक्चुअली लॉन्च ही नहीं होता, उससे पहले उसका रिव्यू कर देते
1: जी
0: हैं।
1: लेकिन बहुत
0: हमने क्या है कि
1: सतही है ये
0: देखिए,
1: सब
0: हमने जिस
1: चीजें।
0: दौर में शुरू किया, वो ऐसा दौर था 1974 में,
1: जी
0: कि जब ये बहुत आप किसी से कोई, आज तो आप वो ट्वीट कर देते हैं, आप उनके बारे में जान लें, तब तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था।
1: जी
0: हम तो अमिताभ बच्चन से एक बार मिले तो हमें पता है कि हम अमिताभ बच्चन से घर पे जाके मिले, दिल्ली में 1976 में उनके बर्थडे पे गए, या उनके पिताजी डॉक्टर हरवंश साहब बच्चन जो मेरे गुरु रहे, हम
1: जी
0: तब भी उनसे मिलते थे इतने सालों से। तो हमें जो अमिताभ बच्चन बात बताते थे, हमें पता ये बात कहीं जाने वाली नहीं है कि उनके मेरे बीच में बात हुई है। हम उसको
1: जी
0: जरूर कल दे, परसों दे, तरसों दे, कभी भी दे देते थे। आज तो स्थिति ये है कि आप बात करके निकलिए, तभी का तभी दीजिए, लेकिन पता लगे वो एकदम आउट हो जाएगी। तो अब जो है हमने, लेकिन हम देखिए उस समय जब मैं वी शांताराम से मिलता था, ताराचरण बड़गियातिया से मिलता था, बी आर चोपड़ा चोपड़ा रामानंद सागर, जो उस समय
1: जी
0: के जितने दिग्गज फिल्मकार थे पुराने पुराने, तो इनसे बात करने का अलग आनंद आता था और अलग सुख मिलता था। हमसे वो खाली हम उनसे सलाह लेते थे। ताराचरण बड़गियातिया जी ने जब फिल्म मैंने प्यार किया बनाई, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे उसका पोस्टर दिखाया, उसकी स्टूडियो में मुझे उसके रशेस दिखाए कि जरा
1: जी
0: बताइए कैसे हैं। उसके गाने दिल्ली में मुझे अपनी एम्बेसडर कार में सुनाए, जनपथ पे गाड़ी रोक कर जब
1: जी
0: हमने रिकॉर्डिंग कर कर आप गाने सुनी है। तो उस समय फिल्म समीक्षा की इतनी अहम भूमिका होती थी कि उसे सराह ली जाती थी कि आप जानते हैं, सिनेमा देखते हैं, लोगों की नफी पहचानते हैं, तो आप बताइए क्या है। हम आपके कौन जब लगी पहली बार, तो उसमें जो हमारे और क्रिटिक्स से बड़े क्रिटिसाइज कर रहे थे, नहीं नहीं क्या फिल्म का चित्रा बनाया, चलेगी नहीं, यही नहीं। तो जो उसके यहाँ दिल्ली के जो महावीर बड़जातिया थे, वो उसके बाद भाग गए कि मेरे को पकड़ लेंगे, क्या फिल्म बनाई है ये। तो मेरे को फोन आया, मैं कहा चिंता मत कीजिए, ये फिल्म सुपरहिट होने वाली है, क्योंकि मैं आसपास के लोगों को देख रहा था, बहुत एंजॉय कर रहे थे। मैं
1: जी
0: तो कर ही रहा था, मैं आसपास के लोगों को भी देखता हूँ, तो उससे अंदाजा लग सकता है। तो फिल्म क्रिटिक बनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी आलोचना कीजिए। आजकल रास्ता सबके पास यूट्यूब के और सोशल मीडिया के माध्यम से आ गया है, उससे भी कर सकते हैं,
1: जी
0: अखबार में भी और रेडियो में भी और टीवी में भी बहुत रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन उसको गंभीरता से लीजिए,
1: जी
0: जल्दबाजी अभी भी मत कीजिए। चाहे बेशक आप कर लें, ये नहीं कि उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, उसको देखकर मैं बोल दूं, आप अपने दिमाग से बोलिए। हम आपके कौन के लिए, सब लोग बोल रहे थे, मैं भी बोल देता तो मैं उसी हवा में बह जाता, लेकिन नहीं, तो इसलिए मेरी उनकी नजर में मेरा सम्मान और भी बढ़ गया कि
1: जी
0: इसने कहा था ऐसे होगा, पोस्टर दिखाया कि ये होगा। तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे, गंभीरता से करेंगे, आप इसको ये ना सोचे हवाई हो जाए एकदम सब कुछ
1: जी
0: और हम ये बन जाए, पॉपुलर हो जाए, बहुत सारे पैसे कमा लें। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसपे आपको लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, इसलिए आज भी हम बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारी बातों पर लोग ट्रस्ट करें, तो हमें अच्छा
1: जी
0: लगता है कि आज भी हमारी बातों पर लोग ट्रस्ट करते हैं कि जैसे प्रदीप सदा ने लिखा है या कहा है तो वो सच होगा। तो
1: जी
0: ये चीज आज की फिल्म जो बनना चाहते हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी विश्वसनीयता बनाए,
1: जी
0: हवा हवाई बातें ऐसे ना करें कोई भी, अपना जो भी लिखे, जो भी बोले, जो भी करते हैं, तो बहुत ही ईमानदारी से करें, आपको भी जो जैसी फिल्म लग रही है उस ईमानदारी से करें और बहुत अच्छे से करें। ये
1: जी
0: सबसे मैं चाहूंगा,
1: जी
0: ईमानदारी कर्मठता से करें, परिश्रम से करें, दिमाग लगाएं और फिल्मों के साथ अच्छी तुलना करें। ये नहीं कि आपने लिख दिया, तो अगर वो करेंगे तो वो भी उनकी अच्छी फिल्म समीक्षक के रूप में अच्छी
1: जी
0: पहचान
1: यानी
0: होगी।
1: फिल्म अध्ययन सिर्फ मनोरंजन नहीं है, एक जिम्मेदारी भी
0: जिम्मेदारी
1: है, और आपकी जो लेखनी है या आपके जो शब्द हैं
0: हाँ,
1: उनमें गंभीरता
0: हमारे
1: भी बनी
0: बातों पे
1: रहे।
0: लोग अपना देखने जाते हैं।
1: जी
0: मैंने सबसे पहले टीवी के अंदर जो फिल्म आती थी संडे को, मैं सबसे पहले नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका रिव्यू करना शुरू किया कि
1: जी
0: आज की टीवी फिल्म और टाइम्स ऑफ इंडिया में टू डेज टेली फिल्म, तो उसमें बताता शाम को, जो क्योंकि एक ही मनोरंजन का साधन होता था उस समय,
1: जी
0: तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की कि लोग शाम को फिल्म देखें या ना देखें। तो वो इतना पॉपुलर हुआ लोग कॉलम, तो लोग कहते थे कि हम उसको देख के प्रोग्राम बनाते हैं कि जो आपने लिखा है आज ये फिल्म देखें या बाजार में परिवार के साथ घूमने जाए या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाए। तो
1: जी
0: वो जो हमने दौर देखा है, हम उसको आज तक उनकी जो दर्शकों की भावना थी, तो
1: जी
0: उसको मैं

0: झुकाता हूं हमेशा, इतना सम्मान दिया, तो आज भी मैं उसी लकीर पर चल रहा हूं।
1: जी, यानी अपने काम के लिए ईमानदार भी रहना
0: बिल्कुल
1: है और जो सामाजिक दायित्व है उसे भी समझना है,
0: बिल्कुल
1: और ये समझ बनी रही है, इसीलिए फिल्म से जुड़े हुए लेखन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल रहा है।
0: बिल्कुल,
1: और पुरस्कार विजेता जब यहाँ
0: हमारे सामने
1: बैठे हैं
0: बैठे
1: तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, संजीव जी, चलते चलते एक तो आपकी पसंद का गाना और हमारे श्रोताओं के लिए आपकी कोई सलाह।
0: हैं। श्रोताओं के लिए सलाह किस मायने में, फिल्म समीक्षा के बारे में?
1: जी
0: अभी प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दे दिया इस बारे में कि फिल्म समीक्षक जो भी नए आ रहे हैं और फिल्में देख के कुछ लिख रहे हैं तो उनके लिए उसमें बहुत कुछ टिप्स है,
1: जी
0: लेकिन एक दो बात मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि जब फिल्म आप देखते हैं, कोई भी नया युवा अगर देख रहा है, मैं भी अपने आप को भी युवा ही मानता हूँ, है ना, तो पर्दे पे दिखाई जो भी चीजें दिखाई दे रही है, जो भी चीजें, वो केवल खेल तमाशा नहीं है।
1: जी
0: सिनेमा के भीतर सारे विषय हैं, राजनीति भी है, इतिहास भी है, संस्कृति है,
1: जी
0: तमाम कलाओं का संगम है, पूरा समाज है, पूरा परिवार है, युवा है, सब कुछ है, महिला है, महिला मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, सब कुछ है। आप
1: जी
0: उसको केवल एक मत समझिए कि केवल खेल तमाशा देख रहे हैं और गाने देख रहे हैं,
1: जी
0: केवल उस दृष्टि से सिनेमा को कभी मत देखिए। हाँ, उस नजरिए की फिल्में कुछ आती हैं, वह एक अलग मसला है। आज तो सिनेमा पर देखिए पीएचडी हो रही है, विश्वविद्यालयों में फैकल्टीज हैं, पढ़ाई हो रही है, अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल रहा है कई सालों से, तो ये इसलिए मिल रहा है और ये इसलिए पीएचडी मिल रही है क्योंकि सिनेमा को एक गंभीर विषय माना गया है जो पूरे समाज को प्रभावित करता है सिनेमा। तो
1: जी
0: फिल्म अगर हम देखते हैं, किसी फिल्म को हम देखते हैं तो उसके बारे में हम क्या लिखें? सबसे पहली बात तो यह है कि फिल्म को समझना, फिल्म को हम समझ कितना पाए हैं। अगर फिल्म हमें पसंद आई तो क्या हम ये लिख दें कि मुझे पसंद नहीं आई? क्या यह समीक्षा है? अगर हमें पसंद आ गई तो हम क्या ये लिखते हैं कि हमें पसंद आ गई? यह क्या यह समीक्षा है? फिल्म समीक्षा एक एजुकेशनल पार्ट है,
1: जी
0: फिल्म समीक्षा जो है एक एजुकेशनल पार्ट है। जैसा कि प्रदीप सर ने अभी बताया था कि उनकी टिप्पणी पढ़ने के बाद लोग इंस्पायर्ड होते थे कि फिल्म देखने जाते थे। पहली
1: जी
0: सूचना आप देते हैं फिल्म की गुणवत्ता के बारे में, आप उसमें बताते हैं, हाँ ठीक है फिल्म में खामियां हैं, अभिनय खराब है, कहानी खराब है, उसका भी जिक्र करिए, लेकिन आप जजमेंटल मत होइए कि
1: जी
0: ये फिल्म कैसी है। दर्शकों के लिए, दर्शकों को पहले आप बताइए उस फिल्म में क्या है, और खामियां है तो बताइए, फिल्म के संदर्भ में बात करिए, वो कहानी के
1: जी
0: संदर्भ में है। ये नहीं कि अगर लव स्टोरी है तो उसकी तुलना हम वॉर वॉर मूवी से कर दें और वॉर मूवी है तो हम लव स्टोरी की अपेक्षा उसमें डालें,
1: जी
0: ऐसा नहीं होता। ऐसी समीक्षा कभी भी मानक नहीं मानी जाती।
1: जी तो सही और सटीक शब्दों में दोनों पक्ष जो हैं वो सामने रखे जाएं, उसे फिल्म
0: बिल्कुल
1: समीक्षा हम कहेंगे,
0: जी,
1: कि दर्शकों के नजरिए से भी आपने लिखा है और साथ ही जो फिल्म निर्माता है उनके नजरिए से भी।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल।
1: और अब चलते चलते आपकी पसंद का एक और गीत।
0: आनंद आश्रम का एक गाना है,
1: जी
0: सारा प्यार तुम्हारा बांध लिया है आंचल में,
1: जी
0: ये बहुत ही खूबसूरत गाना है
1: जी
0: और मुझे लगता है कि चलते चलते आप इस गाने को अगर सुनाएं तो मुझे भी बहुत सुकून मिलेगा और जो हमारे तमाम श्रोतागण हैं
1: जी
0: उन्हें भी बहुत ही आनंद आएगा।
1: जी ठीक है, तो हम सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: गाने के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहे हमारे ऐसे दो विशेषज्ञ जिनके माध्यम से हमने उत्तम कुमार जो अभिनेता थे उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं को जाना, हमने जो समसामयिकता रही उनके अभिनय की उस दौर की उसे पहचाना, और फिल्म लेखन की गंभीरता क्या है, वो कैसे समाज पर अपना असर डालता है, किस तरह से करियर के साथ साथ ये एक जिम्मेदारी भी है, अपने दोनों विशेषज्ञों के माध्यम से हमने ये समझा। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहे जाने माने फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव, जो कि एक लेखक भी हैं और स्वर्ण कमल पुरस्कार विजेता, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेणी में आपको प्रदान किया जा रहा है इस बार का, और साथ ही प्रदीप सरदाना जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। पिछले 50 वर्षों से आप अलग अलग शैलियों में अलग अलग माध्यमों में लगातार सक्रिय रहे हैं, आप स्तंभकार रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहे हैं, विभिन्न चैनल्स में हम आपको देखते हैं पैनलिस्ट के तौर पर, समीक्षक के तौर पर, जाने माने फिल्म समीक्षक भी आप हैं, और दोनों का संदेश यही कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं है। जब हम कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना है, तो जो सिनेमा के पात्र हैं वो भी हम में से ही निकले हुए हैं, और उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति है, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो अभिनय हम पर्दे पर देख रहे हैं उसके इतर जाकर हम उस व्यक्ति को भी समझने का प्रयास करें जो उस पात्र को जीवंत कर रहा है पर्दे पर। तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम में।
1: हुनी तुसी सुन रहे सी FM रेनबो दिल्ली दे प्रसारण। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी ट्यून कीता है आकाशवाणी FM बठिंडा। स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक समा है 11:59:35 ते ठीक 12 बजे तुसी सुनोगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन ते 12:05 ते तुसी सुनोगे अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो। खबरां लई कुछ पल करो इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म्स

0: हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती। हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
0: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा हुई है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास अवैध हथियार होने की भी बात सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए कार्य करना है। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व की 5वें नंबर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरियन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप एक के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग। Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" Prime Minister was addressing centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, at the Delhi University yesterday evening.

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना, मिति 7 सितंबर दिन सोमवार नू शाम 5 बजे प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत दौरान सिलसिला।

आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे स्रोतियो, मिति 7 सितंबर सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत तुसी सुनोगे सिलसिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस दे तहत तुसी सुनोगे दिलचस्प विषय आवाज दा सफर। पुराने जमाने तो लेके आज दी एआई तक जिथे जानांगे आवाज नू रिकॉर्ड करन संभालन अते दुनिया दे एक कोने तो दूजे कोने तक पहुंचान दी टेक्नोलॉजी किवें बदल दी गई। प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भुलना, मिति 7 सितंबर दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत सिलसिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय आवाज दा सफर।

जी श्रोतियों, रजिंद्र मान हाजरा प्रोग्राम घर परिवार लैके ते प्रोग्राम सुन रहे सारे ही श्रोतियों नूं मेरे वल्लों सत्कार भरी नमस्कार। अज दा प्रोग्राम घर परिवार ते दिन हैगा जी एतवार ते एतवार नूं हुंदा है साडियां भैणां दा पसंदीदा सिलसिला भैणां दी पसंद लाइव फोन इन प्रोग्राम ते जिस दे विच साडियां भैणां फोन करदियां ने ते मेरे नाल करदियां ने गल्लबात ते सुनदियां ने अपनी पसंद दा कोई भी पंजाबी गीत। सो स्टूडियो दा नंबर 0164-242-3131 करो डायल ते मेरे नाल करो गल्लबात। ते अज मैं इक भैणा नूं छोटी जी फरमाइश पाउनी आ भी जिहड़ी भी भैण अज कॉल करूगी ओह कोई भी सिठणी दोहा गीत बोली टप्पा कोई भी जरूर सुणाऊगी। सो ए नहीं हो सकदा कि ओह बिना सुणाए प्रोग्राम दे विचों अपनी पसंद दा गीत सुन सके। सो जिहड़ियां भी भैणां ने अज फोन मिलाउणा है ओह सानूं कुछ ना कुछ ते साडे श्रोतियां नूं अज कुछ ना कुछ जरूर सुणाउण। सो उन्हां चिर सुणदे आं जी रोशन प्रिंस की आवाज़ दे विच इक गीत।

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना, मिति 7 सितंबर दिन सोमवार नू शाम 5 बजे प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत दौरान, सिलसिला अपना विरसा अपना सभ्याचार।

0: जिथे जानांगे आवाज नूं रिकॉर्ड करन संभालन अते दुनिया दे एक कोने तो दूजे कोने तक पहुंचाउण दी टेक्नोलॉजी किवें बदलदी गई। प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भुलना, मिति 7 सितंबर दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत सिलसिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय आवाज दा सफर।
1: दस साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होवेगा अज ही खरीदो। TNC अप्लाई।

0: जोगे देते की बगदी है। ठीक है मैडम जी।
1: जी, धन्यवाद जी, बहुत वधिया गीत तुसी सुनाया।

0: ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ।
0: ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
2: दस साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम दो थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1,000+ विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होवेगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई।
3: मिति 8 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम घर परिवार दे दौरान तुसी सुनोगे सिलसिला छावां ठंडियां ने बोर दियां। ते इस वार दे साडे मेहमान होंगे श्री राम प्रसाद मदान ते उन्हां नाल गलबात करांगी मैं यानी कि दीपा छाबड़ा। सो सुनना जरूर इस वार दा सिलसिला छावां ठंडियां ने बोर दियां मिति 8 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:30 बजे।

ہم سفر ہم راز ہوں تا قیامت تا قیامت جو چیز

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना, मिति 7 सितंबर दिन सोमवार नु शाम 5 बजे प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत दौरान, सिलसिला अपना विरसा अपना सभ्याचार।

0: आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे श्रोतियों, मिति 7 सितंबर सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत तुसी सुनोगे सिलसिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस दे तहत तुसी सुनोगे दिलचस्प विषय आवाज दा सफर। पुराने जमाने तो लेके आज दी AI तक जिथे जानांगे आवाज नू रिकॉर्ड करन संभालन अते दुनिया दे एक कोने तो दूजे कोने तक पहुंचाउण दी टेक्नोलॉजी किवें बदल दी गई। प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भुलना, मिति 7 सितंबर दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत सिलसिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय आवाज दा सफर।
1: आवाज हमारी इसी वादी में रहेगी।
2: 0164-242-3331 डायल करना सी जी तुसी, ते मेरे नाल जुड़ना सी प्रोग्राम टेलीफोन मिलाओ जी दे नाल। ते इसी तरीके नाल साडे आखरी कॉलर साडे नाल जुड़ चुके ने, आओ देखदे आ कौन ने ते किथों ने। हेलो,
3: हां जी भाई, नमस्कार।
2: नमस्कार जी, नमस्कार, कौन गल कर रहे हो?
3: मैं जी गंगाराम हूं, बाकी चमड़ी हूं।
2: गंगाराम जी, तुहाडा प्रोग्राम टेलीफोन मिलाओ जी दे विच बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद भाई जी।
2: हां जी, गीत केड़ा सुनना पसंद
3: करूंगा? सबले साजन के विच ड्यूट साउंड है जी, कभी भूला कभी याद किया।
2: वाह जी, क्या गीत पसंद किया है जी तुसी, ये तो मेरा भी मनपसंद गीत है जी। चलो, तुहाडा मनपसंद गीत ते मेरा भी मनपसंद गीत थोड़े रेडियो सेट ते हाजिर है।
3: धन्यवाद भाई जी।
2: हां जी,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय

0: दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं।
1: अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
0: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
2: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
3: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात

की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1,270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पन बिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण ये दुर्घटना हुई है।

0: भूस्खलन में दो लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण यह दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
2: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
3: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
4: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष फरहतनाज।
0: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
5: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूं।

0: जी श्रोतियों, तो सुन रहे हो आकाशवाणी एफएम बठिंडा, एफएम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर ते प्रोग्राम चल रहा है पिंडा विचों पिंड सुनीदा। ते पिंडा विचों पिंड सुनीदा जी बड़ा सोहना पिंड, बड़ा हरिया भरिया पिंड, पिंड पूली। तो पिंड पूली दे असी खेतों के पहुँच गए हैं, हरे भरे खेत जिथे साडा देश का अन्नदाता दिन रात पसीना बहा के पूरे देश का पेट पालदा है। मेरे नाल इस वेले खेत विच मौजूद ने पिंड पूली दे बहुत ही मेहनती ते अगां वधू किसान वीर
1: इंद्रजीत सिंह सिद्धू।
0: इंद्रजीत सिंह जी, तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत।
1: धन्यवाद जी।
0: इंद्रजीत, ये दसो सानू तुहाडे पिंड दे विच जिहड़े किसान ने परिवार ने वो किस फसल की खेती ज्यादा करते हैं?
1: ज्यादातर साडे कणक झोने की खेती ज्यादा करते जी जिहड़े किसान ने, पर विच कई किसान हैगे आ दो चार जिहड़े वी तीजी फसल भी लैंदे आ मक्की जां मूंगी करके, वह बहुत वधिया फसल लै रहे ने। ते इक

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके पत्र, आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। और कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइशें भेजी है आप सभी दोस्तों ने, गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी और शुभम दयाल खटक, चारकोप कांदिवली वेस्ट मुंबई से अनिल कुमार वैद्य, गांव पालधी महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनना चाहते हैं संजय पाटिल, नरेंद्र पाटिल, शेखर पाटिल, चेतना पाटिल, मानसी पाटिल, किरण पाटिल और शैलाबाई पाटिल, कृष्णा कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो उबैद, अलीना जुनैद, रजिया मुआज और आयात मंसूरी, और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंदडाने, अर्चना प्रतिभा ताई और पद्माकर गोंदडाने। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गीत किशोर कुमार और सपना मुखर्जी की आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है जांबाज़।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी खत लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। राजनगर कांति निकेतन मधुबनी बिहार से कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा रिद्धि सिद्धि और कोमल गुप्ता ने, कुंवर कॉलोनी एमपी से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और जंक्शन प्लॉट राजकोट से प्रभुदास कोटेचा, हंसाबेन कोटेचा और आशीष कोटेचा, खामगांव जिला बुल्डाना से करीम शाह, गणेश गरड़, शेख मोहसिन, लक्ष्मण उपासे, गोपाल काड़े और राम बाड़खे ने।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। कस्बा हरदुआगंज अलीगढ़ से मुन्ने मियां अंसारी, अयान अंसारी, नफीस अंसारी, शाहिद अहमद अंसारी और विंस टेलर। सदर नागपुर से कमल गोल्दा, अंकित गोल्दा, अभिषेक गोल्दा, प्रेम लता गोल्दा और समस्त गोल्दा परिवार। आमला ग्राम अंधारिया बैतूल एमपी से वीरेश झारे, योगेश झारे, त्रिवेश झारे और नवदीप। नेरदे वर्धा छिंदवाड़ा से पूजा देवी, बलराम पटेल, जानवी, रामा और देव। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलविंदर कौर धीमान, रोनित, नीशु और भूपेंद्र। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और स्वीट बेबी प्रियांशी। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आवाज है मोहम्मद रफी की, गीत को लिखा है निदा फाजली ने, संगीत है उषा खन्ना का और फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थी।

साथियों, कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है और इसे सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त मालेगांव जिला वाशिम महाराष्ट्र से अरविंद साखरकर, सुनीता, रोहित, निखिल और दीपमाला साखरकर। रणपिसे नगर अकोला महाराष्ट्र से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनिषा वेनो संगेफर, रीना रोहित, मनु गयालकर और राज भारती। कोपर गांव से पेंटर दारूवाला, मतिन दारूवाला, मसूदा दारूवाला, दिया और दानिश खान। बाला चौक यवतमाल से पत्र लिखा है मीना ताई, गायत्री, भूमि, नितिन, तनिश, मुकेश, दीपिका, लवीसा, शौर्य, शुभम, कल्याणी, कुकू और सुनीता श्रीवास ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आवाज है आशा भोसले की, गीत को लिखा है शहरयार ने, संगीत है खयाम का, फिल्म का नाम है उमराव जान।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर खत लिखे हैं आपने। शैलू बाजार जिला वाशिम से नारायण गवार गुरु, सरला गवार गुरु, सचिन खाडेकर, दक्ष, आयुष पुरवा, निर्मोही और आधीराज ने, रिधोरा से बाबूलाल बोराखडे, गोकुला बोराखडे और मंगेश बोराखडे, दुर्ग रायगढ़ से गेंदालाल श्रीवास, कुशल और गेंदू भाई, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक, रामना हड़दी से मोहम्मद आरिफ, फातिमा अरफा और एमएच शरीफ, जलगांव सोमनाथ से आपने खत लिखा है डॉक्टर नामदेव भुतेकर, अभिषेक भुतेकर, कार्तिक और अश्विनी भुतेकर, संभाजी नगर महाराष्ट्र से वैष्णवी जगदाड़े, हर्षुल साउंगी, संभाजी नगर भाव सिंह पूरा से वैभव और गौरव लोखंडे, और बदनापुर से मेघराज युवराज कोलते, रिधोरा देवी और रुद्र कोलकर ने ये पत्र लिखे हैं। साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रवि, फिल्म का नाम है आँखें।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। आपको बता दें, आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला आकांक्षा विश्वकर्मा और चंचल वर्मा से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।

0: विविध भारती। आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आंख की किरकिरी का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा।
1: कौन? तुम?
2: क्या पढ़ रही हो? जरा देखूं तो।
1: कुछ नहीं, ऐसे ही।
2: देखूं तो सही। अच्छा, विष वृक्ष पढ़ रही हो। और मैं तो समझा कि कोई गुप्त चीज होगी।
1: मेरे पास गुप्त क्या हो सकता है?
2: जैसे बिहारी की कोई चिट्ठी।
1: क्या क्या कहा तुमने?
2: अरे मैं तो परिहास कर रहा था।
1: छोड़ो मेरा हाथ। परिहास किसका कर रहे थे? यदि उनकी मित्रता के योग्य होते तो तुम्हारा परिहास मैं सह लेती। तुम्हारा मन छोटा है, मित्रता करने की शक्ति ही नहीं तुम में।
2: मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ।
3: महिंदा, ओह, बड़े समय में आ गया, किंतु ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। केवल एक बात कहने आया हूं। मैं काशी गया था, जानता नहीं था कि भाभी वहां है। बिना जाने उनके सामने जाकर अपराधी हुआ, पर उनसे क्षमा मांगने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। मेरे मन को ज्ञान अज्ञान में यदि किसी पाप ने स्पर्श किया हो तो उसके लिए उन्हें किसी तरह का दुख ना सहना पड़े। बस
2: मैंने तो ना तुमसे दोष स्वीकार करने को कहा है ना स्वीकार करने को, तब तुम क्षमा मांगकर साधु बनने क्यों आए हो?
3: मैं
1: बिहारी लाला जी, तुम कुछ मत कहो। इस आदमी ने जो कहा है उससे इसी के मुंह पर कलंक लगा रहेगा।
3: अच्छा, मैं जाता हूं।
1: लाला जी मुझसे तुम्हें क्या कुछ भी नहीं कहना। यदि तिरस्कार करने की बात हो तो तिरस्कार करो। लाला जी कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। लाला जी
2: हट जाओ मेरे सामने से। अरे तुम्हारे बाएं हाथ की कोहनी से खून बह रहा है। ला फिरो, मैं अभी पट्टी बांध देता हूं।
1: कुछ मत करो, गिरने दो खून।
2: कैसी बात कर रही हो? पट्टी बांधकर अभी एक दवा देता हूं, दर्द जाता रहेगा और घाव शीघ्र अच्छा हो जाएगा।
1: नहीं, इस दर्द को बना रहने दो, मुझे अच्छा नहीं करा रहा है।
2: मैंने अधीर होकर लोगों के सामने तुम्हें अपदस्त किया, इसके लिए मुझे क्षमा करो।
1: क्षमा किस लिए? अच्छा किया। मैं क्या किसी से डरती हूँ? जो लोग थक्का देकर चोट पहुंचाकर छोड़ जाती है वे ही क्या मेरे सर्वस्व हैं? और जो पांव पकड़ कर रखना चाहते हैं वे कोई नहीं।
2: तो तुम मेरे प्रेम को कभी नहीं ठुकराओगी?
1: नहीं, मैं उसे माथे पर लगाकर रखूंगी।
2: चुन्नी, काशी से लौटने के बाद

0: तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया है।
1: और तुम कैसे रहे?
0: अच्छा ही था। सुनो, मैं कॉलेज जा रहा हूं।
1: आज इतनी जल्दी?
0: हाँ, कुछ आवश्यक कार्य है। अच्छा, चलता हूं। महेंद्र, तू ये क्या कर रहा है? कभी तेरा मन आशा की ओर भागता है, कभी विनोद की ओर। आशा जब जब तेरे पास आती है तो उसकी ओर उपेक्षा का भाव रखता है और विनोदनी के पीछे पीछे भागता है। तुझे क्या मालूम कि उस सरल हृदय पर क्या बीतती होगी। लेकिन लेकिन आज ना तो भोजन के समय और ना उसके बाद ही आशा आई। मैं तो सोच रहा था कि अपने प्यार दुलार से उसकी सारी वेदना को दूर कर दूंगा। आशा को अब भी मैं कितना प्यार करता हूं, वो बहुत कम स्त्रियों के भाग्य में होता है। और विनोदनी, आशा और विनोदनी दोनों के लिए मेरे हृदय में स्थान है और दोनों में से किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं। ओह, ये मौसम, ये चांदी रात, लेकिन लेकिन विनोदनी मुझसे दूर। नहीं नहीं नहीं, मैं भी उससे मिलूंगा, उससे मिलूंगा। चलिए उसके कमरे में। विनोद, विनोद बिस्तर बिछा है, विनोद ने कहा है?
1: कौन?
0: मैं हूं, मैं।
2: अरे महेश, इतनी रात को तू यहां कैसे? महेश, विनोदिनी, महीन बहू को छोड़ इतनी रात कर यहाँ क्या करने आया था?
1: मुझे क्या मालूम, शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी। आज भी समय से पहले कॉलेज चले गए, ना हमसे कुछ बोले ना कुछ कहा। चलो उनके कपड़े निकाल दो। अरे चिट्ठी देखो तो किसकी है? ये तो विनोदनी यानी किरकिरी की चिट्ठी, इनके नाम। हे भगवान, जरा पढ़ो तो। कल रात तुमने जो कुछ किया
3: उससे भी क्या तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई? आज फिर नौकरानी के हाथ गुप्त चिट्ठी क्यों भेजी?
1: चिट्ठी,
3: वो अपने मन में क्या सोचती होगी? मुझे क्या तुम जगत में किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रखोगे? तुम मुझसे चाहते क्या हो? प्रेम? तुम्हारी ये भिक्षा वृत्ति क्यों है? जन्म से तुम केवल प्रेम पाते आ रहे हो, तब भी तुम्हारे लोभ का अंत नहीं है? जगत में मुझे प्रेम करने और पाने का कोई स्थान नहीं, इसी से मैं खेल खेल कर प्रेम का खेत मिटा लिया करती हूं। जब तुम्हारे पास अवसर था तब उस मिथ्या खेल में तुमने भी साथ दिया, किंतु खेल की छुट्टी क्या कभी समाप्त नहीं होती? अब घर में तुम्हारी पुकार हुई है, अब धूल झाड़ कर घर जाओ, मेरे तो घर नहीं है। हाँ, मन ही मन अकेले बैठकर खेलती रहूंगी, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी।
1: हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों? क्या क्या ये हमारा संपूर्ण सर्वनाश है? मौसी, मौसी!

0: आज माँ ने मुझे रोज की तरह अभी तक आवाज नहीं दी, बात क्या है? चलो मैं स्वयं ही उनके पास भंडारे में जाती हूँ।
1: माँ, माँ,
0: माँ जान पड़ता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बात भी है ऐसी है। उस रात देखो ना एकदम पागल की तरह खड़े हो गए, मुझे तो फिर नींद ही नहीं लगी। शायद शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी। फैसले के लिए मुझे धर पकड़ना चाहा, रात भर सब्र कहा। आपके लड़के में माँ और चाहे 1000 गुण हो, पर धैर्य तो

0: लेश मात्र भी नहीं है, इसीलिए अक्सर मेरे से उनका झगड़ा हुआ करता है।
1: बहू, तुम झूठ पक रही हो। मुझे आज कोई बात अच्छी नहीं लग रही।
0: मुझे भी आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा माँ। तुम्हारे मन को चोट लगेगी, इसीलिए झूठी बातों से तुम्हारे लड़के के गुणदोष ठगने की चेष्टा कर रही थी, किंतु जो हो गया उसे ठगा नहीं जा सकता।
1: अपने बेटे के दोष गुण मुझे मालूम है, परंतु परंतु तुम ऐसी मायावी हो, ये मैं नहीं जानती थी।
0: कोई किसी को नहीं जानता माँ, अपने मन को ही क्या सब जानते हैं। तुमने क्या कभी अपनी बहू से द्वेष करके इस मायावनी से अपने लड़के का मन बहलाने की इच्छा नहीं की?
1: अभागिन, बेटे के बारे में तू माँ पर अपवाद रखती है, तेरी जीभ क्यों नहीं गिर जाती?
0: माँ, हम सब मायावनी की जाति की हैं। मेरे अंदर क्या माया थी ये मैं ठीक नहीं जानती, तुम जान गई। तुम में जो माया है उसे तुम नहीं जानती, मैं जान गई। माया थी अवश्य, अन्यथा ऐसी घटना ही न होती। मैंने कुछ जाने कुछ अनजाने जाल बिछाया, और तुमने भी कुछ जानकर कुछ अनजाने बिछाया था। हमारी जाति का धर्म ही ऐसा है।
1: अभागिन, तू तू
2: विनोद,
0: जाओ मेरे कमरे से, तुम चले जाओ।
2: क्यों, क्या किया है मैंने?
0: क्या किया है? डरपोक, कायर, तुम्हें क्या करने की शक्ति है? ना तुम प्रेम करना चाहते हो, ना कर्तव्य निभाना, फिर मुझे क्यों लोगों के सामने नष्ट किया चाहते हो?
2: मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, ये कह रही हो?
0: हाँ, मैं यही कह रही हूँ। लुका चोरी ढकना उघाड़ना, कभी इधर कभी उधर, तुम्हारी चोरों जैसी प्रवृत्ति देखकर मुझे घृणा होती है। अभी अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, जाओ यहाँ से।
2: तुम मुझसे घृणा करती हो विनोद?
0: हाँ, घृणा करती हूँ। बिहारी लाला जी।
3: अरे भाभी, आप कैसे?
0: यहाँ तुम्हारा आत्मीय स्त्रियों में कोई नहीं है?
3: आत्मीय भी नहीं, पराई भी नहीं। बुआ है, सो देश के मकान में रहती है।
0: तुम अपने देश के मकान में मुझे ले चलो।
3: तुम्हें क्या कह के वहां ले चलूंगा?
0: दासी कह के, मैं वहां घर का सब काम काज करूंगी।
3: ये बात मन में उठी कैसे?
0: महेंद्र मुझसे प्रेम करता है।
3: ये बात कोई नई नहीं है कि दोबारा सुनने की इच्छा हो।
0: मेरी इच्छा भी नहीं।
3: महेंद्र जिस रास्ते पर चला जा रहा था, उसे उससे किसने हटाया?
0: मैंने, अपने हृदय की आग से मैंने महेंद्र का घर जलाया है। मैंने समझा था कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, पर वो मेरी भूल थी।
3: प्यार करने वाली क्या इस प्रकार आग लगा सकती है?
0: वो तुम्हारे शास्त्रों की बात है, अभी उसे समझकर चलने की बुद्धि मुझ में नहीं है। सुनो लाला जी, मैं निर्लज्ज होकर कह रही हूँ, तुम ही मुझे बचा सकते हो। महेंद्र मुझे चाहता है, पर अंधा है, मुझे समझता नहीं। एक बार मुझे लगा था तुम मुझे समझ गए हो, शायद तुमने मुझ पर श्रद्धा भी की थी। सच कहना, छिपाना नहीं।
3: हाँ, की थी।
0: तुमने भूल नहीं की थी, किंतु यदि समझ नहीं लगे थे, श्रद्धा ही करने लगे थे, तो वहीं क्यों रुक गए? मुझे प्रेम करने में तुम्हें क्या बाधा थी? मैं आज निर्लज्ज होकर तुमसे कह रही हूं, तुमने भी मुझे प्यार क्यों नहीं किया? मेरा चला भाग्य, तुम भी आशा के प्रेम में थी। नहीं, तुम क्रोध न कर सकोगे, मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगी। तुम आशा को प्यार करते हो, ये बात जब तुम स्वयं नहीं जानते थे, तब भी मैं जान गई थी। आशा में तुमने क्या देखा? मैं

0: समझ नहीं पाती। विधाता के पुरुष को आंख के साथ अंतर्दृष्टि कुछ भी नहीं देते, तुम लोग क्या देखकर भूल जाते हो?
1: भाभी, अब तुम जो सुनाओगी सुनूंगा, पर जो बात कहने की नहीं है वो ना कहो, यही मेरी प्रार्थना है।
0: लाला जी, मैं जानती हूं तुम्हें कहां पीड़ा हो रही है, किंतु जिसकी श्रद्धा मुझे मिली थी और जिसका प्रेम पाने पर मेरा जीवन सार्थक हो जाता, उसके पास इस रात मैं संपूर्ण भय और लज्जा छोड़कर आई हूं। उसमें मेरे मन की कितनी वेदना छिपी है, जरा इस पर विचार कर धीरज धरो। मैं सच कह रही हूं लाला जी, यदि तुम आशा को प्रेम न करते तो मेरे द्वारा उसका सर्वनाश कभी नहीं होता।
1: आशा का क्या हुआ? तुमने उसके साथ क्या किया?
0: महेंद्र सब कुछ छोड़कर कल ही मुझे साथ ले घर से निकल जाने को तैयार है।
1: नहीं, ये किसी तरह नहीं हो सकता, किसी तरह नहीं।
0: महेंद्र को आज कौन रोक सकता है?
1: तुम
0: किसके लिए रोकूं? तुम्हारी आशा के लिए? मेरा अपना सुख दुख क्या कुछ नहीं? तुम्हारी आशा का भला हो, तुम्हारे महेंद्र के घर गृहस्थी का भला हो, इसके लिए मैं अपने समस्त दावों को छोड़ दूं? इतनी भली मैं नहीं हूं, धर्मशास्त्र की पोथियां मैंने इतनी नहीं पढ़ी हैं। मैं जो छोड़ूंगी उसके बदले मुझे क्या मिलेगा?
1: सुनो, मैं भी तुमसे एक बात स्पष्ट कहता हूं कि ये सब जो तुमने कहा है उसका अधिकांश तुम्हारा नहीं है। छोटे दर्जे के नाटक उपन्यास तुमने पढ़े हैं और उससे ही चुराया हुआ है। तुम अगर नितांत अबोध बालिका रहती तो भी संसार में प्रेम से वंचित न रहती। नाटक की नायिका स्टेज पर शोभा देती है, घर में उसे लेकर काम नहीं चल सकता।
0: तुम मुझे क्या करने को कहते हो?
1: असाधारण कुछ न करो, साधारण स्त्रियों की शुभ बुद्धि जो कहती है वही करो। देश चले जाओ, मैं जनानी डिब्बे में बैठा कर तुम्हें देश तक पहुंचा दूंगा।
0: तो आज की रात यहीं रह जाऊं?
1: नहीं, मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं
0: है। बस इतनी दुर्बलता बनाए रखना लाला जी, पत्थर के देवता की तरह बिल्कुल पवित्र ना हो जाना। किसी बुरे से प्यार करके सरा बुरे बने रहना।
1: विनोद, मैं
0: जीवन सर्वस्व जानती हूं कि सदा के लिए तुम मेरे नहीं हो सकते, किंतु आज एक मुहूर्त के लिए मुझे प्यार करो, उसके बाद मैं अपने उसी वन जंगल में चली जाऊंगी और किसी से कुछ न चाहूंगी। मरण पर्यंत मन में रखने लायक तुम कुछ तो दे दो मुझे, कुछ तो दो।
1: रात 1 बजे पैसेंजर ट्रेन जाती है।
0: मैं उसी गाड़ी से चली जाऊंगी। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी कि तुम मुझे चिट्ठी अवश्य लिखना, मैं रोज तुम्हारी चिट्ठी पाने की प्रतीक्षा करती हूं। तुम मेरे विचारक हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं। तुम्हारी 2 लाइन की चिट्ठी ही मेरे निर्वासन में मेरा आहार है। कहते हैं एकाग्र मन से जिसे पुकारा जाता है वह अवश्य आता है। मैं भी तुम्हें पुकार रही हूं, मेरा जीवन सूना है। इस सूनेपन में एक बार तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ, तुम्हें आना ही होगा। मैं किसी तरह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हें आना ही होगा। तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ,

0: गया विनोद,
1: तुम चले जाओ यहां से। मैं कहती हूं चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से।
0: मैं इतना कायर नहीं कि तुम्हें इस लोक निंदा की आग में छोड़कर चला जाऊं यहां से। तुम्हें ले ही जाऊंगा, उसके बाद मुझे छोड़ देने की इच्छा हो तो छोड़ देना, मैं कुछ भी बाधा नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें छूकर कसम खाता हूं कि तुम जो इच्छा करोगी वही होगा। मैंने अविश्वास के कितने ही काम किए हैं, परंतु आज मेरा विश्वास ना करो। चलो, मैं सवारी लेकर आया हूं।
1: चलो, मैं चलती हूं।
2: जरा जल्दी चलकर माँ को देखिए, बड़ा कष्ट हो रहा है उन्हें।
3: माँ, प्रणाम माँ।
4: बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं रे, तू है तो अच्छी तरह।
3: माँ, तुमने अपनी बीमारी का समाचार क्यों नहीं दिया? सुनकर मैं एक क्षण भी रुक सकता था।
4: खोकू, अरे क्या मैं जानती नहीं,
3: माँ
4: तुझे सिर्फ पेट पे नहीं रखा रे, अन्यथा तुझसे बढ़कर दुनिया में मेरा कौन है रे?
3: माँ,
4: मुझे बहुत दुबला हो गया रे, तेरे देख रेख करने वाला कोई नहीं, अब तो बहू लिया, मछली बहू।
2: हाँ हाँ जी जी,
4: इसका भार तुम पर रहा, इसे सुखी रखना।
2: बिहारी, जरा बाहर तो आ।
3: कहो काकी।
2: तुझे नहीं मालूम क्या, महेंद्र विनोदरी को लेकर कहीं चला गया है। एक बार महेंद्र को तो बुला नहीं लाएगा, और देरी करना उचित नहीं है।
3: अच्छा काकी, तुम माँ की पथ्य और दवा का ख्याल रखना। काकी काकी, महेंद्र का उद्धार मैं करूंगा।
0: विनोद, ये क्या तुमने फूलों से अपनी बेकी गूंथी? गले में भी फूलों का हार, ये सादा मोटे कपड़े, सारा कमरा, ये बिछौना, सब तरफ फूल ही फूल। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? ये बिछौना जी चाहता है।
1: नहीं नहीं, तुम जाओ, इस बिछौने पर मत बैठना।
0: तो फिर ये श्रृंगार किसके लिए किया है?
1: जिनके लिए किया है वे मेरे हृदय के भीतर हैं।
0: कौन है वो? बिहारी?
1: उनका नाम तुम मुंह से न लो।
0: उसी के लिए तुम मेरे साथ इधर उधर घूमती हो?
1: हाँ, उन्हीं के लिए।
0: उसका पता ठिकाना जानती हो?
1: किसी न किसी तरह जान ही लूंगी।
0: मैं किसी भी तरह जाने नहीं दूंगा।
1: न जानने दोगे ना सही, पर मेरे हृदय से उन्हें किसी भी प्रकार निकाल न सकोगे।
0: ओह, तुम मर क्यों ना गई? तुम्हारे मरने से कितना मंगल होता।
1: जब तक बिहारी की आशा है मैं मर नहीं सकती।
0: अगर तुम मेरी नहीं हुई तो बिहारी की भी नहीं हो सकती, समझी?
1: मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।
0: मेरी माँ रो रही है, मेरी स्त्री रो रही है, उनके आंसू मुझे दूर से ही जला रहे हैं। तुम्हारे मरे बिना मुझे उनके आंसू पहुँचने का अवसर नहीं मिलेगा।
1: मैं कहती हूँ तुम अपने घर जाओ, जाओ यहाँ से, तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं। तुम नहीं मानोगे, क्यों मुझे बार बार तंग करने के लिए आ जाती हो तुम?
3: महेंद्र, महेंद्र,
1: महेंद्र नहीं है, वो शहर गया है।
3: अच्छा, मैं चलता हूँ।
1: तुम्हारे पांव पड़ती हो, तुम्हें थोड़ी देर बैठना होगा।
3: कहो, क्या कहना है?
1: तुम जो कुछ मन में समझ रहे हो वो बात नहीं है। इस घर को किसी कलंक ने नहीं छुआ है, ये

0: ये फूल, ये फूल तुम्हारी ही पूजा में सूख गए हैं। तुम्हें यही बैठना होगा, तुम्हें यही बैठना होगा। बैठो।
1: लो, बैठ गया।
0: तुमने दया पूर्वक मुझे ये स्थान दिया है और दूर रहकर भी मैं इसकी रक्षा करूंगी। अच्छा बताओ, मैंने काव से जो पत्र लिखा था उसे तुमने खोलकर उत्तर दिए बिना महेंद्र के हाथ वापस क्यों कर दिया?
1: मुझे तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला और ना ही महेंद्र के हाथों मैंने कोई चिट्ठी वापस की।
0: अच्छा अब समझ में आया। सुनो, मैं सब बातें तुमसे कहती हूँ, विश्वास करोगे तो अपना सौभाग्य मानूंगी, ना करोगे तो तुम्हें दोष ना दूंगी।
1: ना ना ना, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। बिना कुछ कहे ही मैं तुम्हारा विश्वास करता हूं। मैं खुद तुमसे घृणा नहीं कर सकता। बस अब तुम एक शब्द भी मत कहो।
0: तो भी बताए बिना जी न सकूंगी। मैंने तुम्हें मन में रखा है, इसीलिए पवित्र बनी रही। आज आज मैं तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मेरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है, मेरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है।
2: अच्छा, तो अब रंग भूमि से महेंद्र का प्रस्थान और बिहारी का प्रवेश।
1: सुनो महेंद्र, तुम्हें विनोदनी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। मैं उससे विवाह करूंगा। और सुन लो महेंद्र, तुम्हारी मां मृत्युशैया पर पड़ी है, उसके बचने की कोई आशा नहीं है। मैं आज रात की गाड़ी से विनोदनी को लेकर चला जाऊंगा।
2: ठीक है, मैं जाता हूं।
0: सुनो, ये बात तुम्हारे मुंह से निकली कैसे? मेरा उपहास कर रहे हो?
1: नहीं, मैं सचमुच तुमसे विवाह करूंगा।
0: इस पापिष्ठा के उद्धार के लिए?
1: नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए।
0: बस यही मेरा चरम पुरस्कार है, इतना जो तुमने स्वीकार किया है उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिलने पर भी वो रहेगा नहीं, धर्म उसे कभी सहन नहीं करेगा।
1: क्यों नहीं करेगा?
0: जी जी, ये बात सोचने पर भी लज्जा होती है। मैं विधवा हूं, निंदिता हूं, समस्त समाज में तुम्हें लांछित करो ये कभी नहीं होगा।
1: किंतु विनोदी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं।
0: सुनो, दूसरे जन्म में तुम्हें पाने के लिए तपस्या करूंगी, इस जन्म में और कोई आशा नहीं करती। मुझसे विवाह करके तुम सुखी ना हो सकोगे, तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, मैं भी संपूर्ण गौरव खो दूंगी। तुम सदा से निर्लिप्त और प्रसन्न रहते आए हो, आज भी वही बने रहो। मैं अन्नपूर्णा काकी के साथ काशी चले जाऊंगी।
1: भाभी, न जाने इस जिंदगी में फिर आपसे मिलना हो या ना हो, मैं तुम्हारी कोई निशानी अपने पास रखना चाहता हूं।
0: जी जी
1: भाभी, मैं क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता?
0: तुम तो बहुत पहले ही मुझे जो दे चुके हो वो मेरे शरीर का भूषण है, उसे मरते दम तक कोई नहीं ले सकता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
1: मैं समझा नहीं, मैंने ऐसा तुम्हें क्या दिया है?
0: भूल गए लाला जी, ये देखो।
1: अरे, ये तुम्हारे हाथ में चोट का निशान?
0: हाँ लाला जी, एक दिन गुस्से में घृणा के साथ तुमने मुझे धक्का दिया था ना, मेरे हाथ में चोट लगी। उस खाप का ये निशान उसी दिन से मेरी आत्मा का आभूषण बन चुका है।
1: भाभी,
0: लाला जी, भगवान तुम सबको सदा सुखी रखे, सदा सुखी रखे।

आंख की किरकिरी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली के इस रेडियो नाट्य रूपांतरण का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं चौथा और अंतिम भाग।
1: चूंकि बातें गौरी जी की हो रही हैं, तो इसी विषय पर बना रहता हूँ। आपके निर्देशन में उन्होंने किन नाटकों में काम किया?
2: काफी जुलवा में ही थी पहले तो
1: जी,
2: और जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। मतलब जितने शो हो गए, शायद वो एक आध दो शो में नहीं थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन लगभग मैं नहीं होता था कई बार शो में, लेकिन वो जरूर होती थी। तो उन्होंने रेणुका करके उसका कैरेक्टर था सैया जी, और उनका पेयर होता था वो साथ में, वो भी जोगतीन कम्युनिटी की थी और सैया जी जोगत्या था, तो उसको कर्जा देने वाली, उससे वसूलने वाली, ऐसी एक थोड़ी सी रिच उन्हीं के कम्युनिटी की, पर धाकड़ कैरेक्टर था, उन्होंने वो बखूबी निभाया। उसके बाद एक झुंझ वारियाशी जो मैंने नाटक किया, उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया, क्योंकि उस पूरे नाटक में उनके हिस्से में केवल दो छोटे छोटे सीन्स थे।
1: ओके।
2: लेकिन पूरा नाटक उनके हस्बैंड जो जर्नलिस्ट होता है, उसके करियर को लोगों ने कैसे बर्बाद किया, बड़ा पॉलिटिशियन बनने के लिए, बड़े अहदे पे जाने के लिए, और वो सारा कैबिन में हो रहा है और ये कैबिन के बाहर बैठी हुई है, और उनको पीठ ऑडियंस की तरफ करके बिठाया था मैंने। वो पता चलता था इनके पीठ से कि ये अंदर के इसको कैसे रिस्पॉन्स कर रही, इसके ऊपर क्या क्या परिणाम हो रहा है। और जब वो अंदर आके बर्स्ट आउट होती थी, दैट सीन वॉज मेमोरेबल सीन इन दैट प्ले। उसके पास मी राष्ट्रपति नाम का प्ले मैंने किया था, उसमें भी उन्होंने बहुत मेजर रोल निभाया। तो मुझे लगता है ये दो तीन चार नाटक थे। उसके बाद फिर मैं बाहर भी नाटक करने लगा, व्यावसायिक भी नाटक करने लगा। फिर उसके बाद ये भी हो गया कि चार पांच साल पर रुत्वी का जन्म हुआ, तो वो स्कूल में काम करती थी, हफ्ते में दो बार सेंट कोलंबा जो स्कूल थी वहां जाके बच्चों के साथ क्लास लेती थी, तो इसीलिए वो भी एक उनके लिए मर्यादा हो गई कि व्यावसायिक नाटकों में जाना है तो फिर लंबा जाना पड़ता है, 10-15 दिन के टूर लगते थे उस समय पर। पर उन्होंने अपने लेवल पे स्पर्श नाम के नाटक में काम किया, जो दी गोवा हिंदू

0: एसोसिएशन का व्यावसायिक नाटक था। फिर उन्होंने हैंड्स अप नाम के नाटक में काम किया जो व्यावसायिक नाटक था। तो उन्होंने अपने लेवल पे बहुत सारे, तू का जातो वैकुंठाला नाम के नाटक में काम किया, तो बहुत सारे नाटकों में काम किया उन्होंने, सीरियल में काम किया। सह्याद्री की बहुत फेमस इर्जिक नाम की एक धारा चली थी, उसमें उन्होंने कई सारे एपिसोड किए। विजय मेहता के साथ लाइफलाइन जो उन्होंने सीरियल पहली डायरेक्ट की थी उसमें काम किया। गोटिया जो सीरियल चल रही थी उसमें भी उन्होंने काम किया, बहुत सारी सीरियल्स में उन्होंने काम किया, फिल्मों में काम किया। फिर उसके आगे बहुत सारी महत्वपूर्ण फिल्मों में भी काम किया। अशोक सराफ जी के साथ उन्होंने फिल्म संजय सुरकर ने डायरेक्ट की हुई चौकट राजा, उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। उसके बाद अक्षय कुमार जी के साथ खिलाड़ी 420 में उन्होंने हिंदी में काम किया
1: जी,
0: फिर मराठी में और सारी फिल्मों में काम किया। और खास उनका बहुत ज्यादा पॉपुलर काम रहा है वो देवयानी नाम की जो सीरियल लगातार 3-4.5 साल चली, उसमें मेजर रोल था उनका और जिसको हाईएस्ट टीआरपी थी उस सीरियल को। तो उसके बाद उन्होंने तय किया कि हमें दिल्ली से आता था तब भी वो 30 दिन शूटिंग करती थी और कभी कभी संडे को एक स्पेशल एपिसोड होता था उसके लिए रात दिन वो भी काम करती थी। ऋत्विक भी उसी समय सीरियल में काम करता था लीड रोल में, मानसी था चित्रकार तो स्टार प्रवाह के ऊपर। तो मैं जब दिल्ली में आता था ये दोनों बिजी होते थे और ये दिल्ली आते थे कभी कभी जब मैं दिल्ली में था तब, तो ये जैसे ही पहुंचते थे तो दूसरे दिन सुबह फोन आता था कि कल के एपिसोड में प्रॉब्लम हो गया आप तुरंत निकल आइए
1: लीजिए।
0: तो एक या दो दिन से ज्यादा हम रह नहीं पाते थे। तो फिर उन्होंने दोनों ने भी यह तय किया वो सीरियल कंप्लीट करने के बाद कि अब हम ज्यादा समय सीरियल में नहीं देंगे, फिल्म और नाटक यही। और उनका सबसे अच्छा मुझे लगा कि पैरेलल जो उन्होंने करियर किया वो चिल्ड्रन थिएटर में
1: जी, बहुत बड़ा योगदान,
0: लीडिंग थिएटर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट इन महाराष्ट्र की, बहुत सारे बच्चों को उन्होंने करियर तक पहुंचाने का काम किया है। और अपने किस्म का वो नाटक करती है बच्चों के साथ, उनको एक अपना नैक है, उनकी अपनी एक मेथोडोलॉजी बनी है कि 10 दिन में वो बच्चों को पूरा आर पार बदल देती हैं और नाटक भी करवाती हैं अंत में, और जो नाटक बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल भी होते हैं, ह्यूमरस भी होते हैं और कुछ मैसेज लेके भी वो नाटक करती हैं। तो इसीलिए अपने आप में वो अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है, वो एक्ट्रेस भी है, थिएटर की भी है, सिनेमा की भी है, सीरियल की भी है, ये तीनों मीडिया में वो कंफर्टेबल है। और चौथा है वो चिल्ड्रन थिएटर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर है। मुझे लगता है कि सुधा करमरकर और 2-3 सुलभा देशपांडे और इनके बाद बहुत ज्यादा कांचन सोनटक्की जी के बाद मराठी थिएटर में बहुत ज्यादा उन्होंने चिल्ड्रन थिएटर में काम किया है
1: जी। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: जब आपके शुरुआती दो तीन नाटक बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और ये लगा कि ये अलग ताप के नाटक हैं, इनके तेवर बहुत अलग हैं, और आपने उसमें अपना बहुत कुछ झोंक दिया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस डायरेक्टर के तत्व जल्दी चुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो क्या चीज थी जो लगातार आपको आगे प्रेरित करती रही और दूसरा दलित थिएटर मूवमेंट को आप लगातार जिंदा रखे रहे?
1: दलित थिएटर मूवमेंट की बात तो थी, जैसे मैंने कहा कि दो नाटक में तो मैं उसका हीरो था
0: जी,
1: नायक की भूमिका में था। उसके बाद दिल्ली जाने के बाद एक्चुअल उस मूवमेंट से मेरा संबंध थोड़ा सा विरल हो गया, कम हो गया, लेकिन मैं जो नाटक करता रहा
0: यस,
1: उसमें वो तत्व जो है, मतलब मैंने जिस काम के लिए मैं नाटक में आया था, मैं आज तक उसको भूला नहीं हूं। मैं नाटक में क्यों हूं ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। मुझे कौन सा नाटक करना है ये भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। मुझे कौन सा नाटक नहीं करना है, कितना भी पैसा दे दो, वो भी मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। तो इसलिए मेरे नाटकों के जो विषय है, चाहे वो जुलवा है या जाने मन है, मुझे लगता है जिन लोगों की अभिव्यक्ति को, जिन लोगों की जिंदगी को, जिन लोगों के दबे पन को आवाज नहीं मिली है, मुझे लगता है उनको मैं अपने नाटक का विषय बनाता हूं।
0: हमेशा हाशिए पर जो लोग हैं,
1: हाँ, हाशिए पे जो लोग हैं, जो गांव के बाहर है, गांव के अंदर के भी नाटक किए मैंने, पर जो ज्यादातर जो विषय चुने मैंने वो गांव के बाहर है, उनको गांव में एंट्री नहीं है। अब देखिए झुलवा जोकते जोकतीनी पर है, एक झुंझ वारियाशी एब्सोल्युटली डायरेक्ट ये मेन स्ट्रीम कंटेंट था कि किस तरीके का भ्रष्टाचार पूरे सत्ता कारण में हो रहा है और उसमें इनोसेंट टैलेंट का बलि कैसे चढ़ाया जाता है, और वो भी जो जर्नलिस्ट है। उसके बाद मैंने नाटक किया दूसरा सामना जो सतीश आलेकर जी ने लिखा, जो हमारी ये शुगर सहकार मूवमेंट है उसके अंदर किस तरीके से फिर वही दलित का बलि कैसे चढ़ाया जाता है। पहला सामना तो जो था वो फिल्म थी, उसका सिक्वेल था जो लिखा गया कि जो दलित का बेटा है जो आईएएस है और आज वो अपर कास्ट का है क्योंकि उसको अडॉप्ट किया गया और उसको मालूम नहीं, और एक दिन अचानक उसको मालूम हो जाता है कि वो जिस जाति से और जिस संस्कार को बिलोंग करता है उसका है ही नहीं, जो भी आईएएस होने के बावजूद भी वो तो है दलित। उसके बाद जो टूटना है उसका, वो टूटना विक्रम गोखले वो रोल करते थे और दूसरा विनय आप्टे करते थे और तीसरा इला भाटे का पहला नाटक था
0: जी।
1: तो ये उस नाटक में भी वही बात अलग किस्म से थी, नाती गोती था, एक मिडिल क्लास फैमिली में एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा होने के बाद उस फैमिली की वाताहत कैसे होती है, उस फैमिली की जिसको हम मराठी में वाट कैसे लग जाती है और उसके ऊपर क्या सोल्यूशन है, इस तरीके का विषय था
0: जी।
1: जाने मन का बिल्कुल किन्नरों के जीवन पे विषय था उसका, लड़ी नजरिया पे डेमोक्रेसी की कैसी हम लोगों ने 12 बजा दिए हैं उस कॉन्सेप्ट के, और हम अपनी तरीके की डेमोक्रेसी कैसे लाद रहे हैं, ये विषय था। तो जितने भी विषय हैं, ती फूल रानी तक, रणांगण एक ऐसा विषय था कि ये भारतीय आदमी जीतता क्यों नहीं है, क्या ऐसे उसमें खून में, संस्कार में, उसके जीवन में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा वो विष घोला है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कोऑपरेट ही नहीं करता, ये बेदिली है, ये धोखा देना है, ये भारतीय स्वभाव में कैसे, और उसके बाद ज्यादा तो मराठी में कैसे है, पानीपत का थर्ड वॉर हम हारे क्या जीते,

0: इसको लेकर वो सारा का सारा असेसमेंट था भारतीय मन का, भारतीय स्वभाव का, बिल्कुल बहुत तटस्थता से किया हुआ और जो नाटक बहुत अंतर्मुख करता था
1: जी,
0: और जिसके 700-750 शो, मतलब दैट वाज सपोज टू बी फर्स्ट 70 mm प्ले ऑन मराठी स्टेज,
1: बिल्कुल,
0: जिसमें भानु अथैया गांधी फिल्म के लिए जिनको ऑस्कर मिला था, उन्होंने जीवन में पहली बार नाटक के लिए कॉस्ट्यूम किए।
1: वाह।
0: मंगेश पाड़गांवकर जी ने गाने लिखे।
1: क्या बात है।
0: ये ऐसे ऐसे दिग्गज, पहले कुसुमाग्रज गाने लिखने वाले थे पर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, फिर उसके बाद फिर हमने मंगेश पाड़गांवकर जी से गाने लिखवाए, अनंत अम्मेम्बल ने उसमें म्यूजिक किया। ये सारा का सारा मुझे लगता है कि वो भी एक अलग किस्म का विषय था। तो लेट्स पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये कह रहे कि हमारे पास जीतने का जज्बा क्यों नहीं है। जीतने के बाद भी हमारे आसपास क्या है कि दिल्ली मराठों ने जीतने के बाद भी उस समय मराठों को दिल्ली के गद्दे पे नहीं बिठाया। हमारे ही नेता ने क्या थी उसके पीछे की सोच, क्योंकि उससे पहले ही हमारे कारोबारियों ने दिल्ली पंजाब के राजाओं को बेच दी थी
1: जी।
0: तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर कुरघोड़ी करने का स्वभाव है, एक तरीके से धोखा देने का स्वभाव है, कभी भी कोई भी आदमी एक दूसरे से बेदिली करने का स्वभाव जो है, इसको उस नाटक में क्या कहते हसीये पे रखा था। और वो एक नाटक लोगों को लगा था पानीपत थर्ड यू आर जैसे हार गए वैसे ये नाटक भी बहुत जोर से गिरेगा, उसकी आवाज सुनने के लिए सारे कान बेताब थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस नाटक ने जो खौफ है मराठी मानस में, कुछ भी हुआ तो पानीपत हुआ बोलते हम उसका, डिजास्टरस एक्सपीरियंस इज पानीपत, तो उस पानीपत शब्द से हमने उस नाटक ने लोगों को बाहर निकालने का काम किया। पानीपत वॉज नॉट डिजास्टर बट इट वॉज द बिगेस्ट वॉरफेयर प्लेड बाय मराठास हेल्प ऑफ अदर पीपल इन इंडिया, और जिसमें मुसलमान भी थे
1: जी।
0: तो ये भूमि पे प्यार करने वाले लोगों का जो एक गठ्ठा था वो मरते दम तक एक दूसरे के लिए लड़ते रहे मरते रहे, उसकी कहानी थी ये रणांगण।
1: क्या बात है। और फिर ती फूलरानी आया,
0: उसके बाद ती फूलरानी आया, उसके बाद ये मध्यम व्यय किया, जब एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स का पहला प्रोडक्शन कौन सा किया जाए तो हमने कहा चलो परंपरा से शुरू किया जाए। कालिदास भास ये पहला नाटककार माना जाता है तो हमने उनके मध्यम व्यय से शुरू किया। उसमें भी मुझे हिडम्बा है वो मुझे दिखाई दी, मैं क्योंकि केरल में रहा था, द्रविड़ में मातृसत्ता कुटुंब पद्धति है और आर्य में पितृसत्ताक है, तो उनकी जो प्रेम की कहानी है भीम की और हिडम्बा की और उनका बेटा जो घटोत्कच है, मुझे लगा कि जो औरत हमारे स्वार्थ से परे हैं, स्वार्थ के अड़े आती हैं, जो भी है, हम किसी को डेरोगेटिव टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको हम हिडम्बा बोल देते हैं। अरे यार उसके हिडम्बा के क्या चक्कर में आता है, मतलब देखने में वो खूबसूरत भी हो तो जो हमारे स्वार्थ के आड़े आता है उसका कैरेक्टर असेसिनेट करने का हमारा पुराना स्वभाव है
1: जी जी जी।
0: उस स्वभाव को पकड़कर वो नाटक बनाया हुआ है। और फिर आर्य और अनार्य के बीच की जो राजनीति है वो जेंडर बेस्ड भी है, वो क्लास बेस्ड भी है, वो हर तरीके की राजनीति है। और वो जब सवाल पूछती है भीम को और बेटा सवाल पूछता है कि आप कहाँ गए थे, बच्चा पैदा होने से लेकर बच्चा बड़ा होने तक वॉरियर होने तक वो वापस आके देखा नहीं उन्होंने, उसके बारे में जो सवाल पूछती है बोलती है कि अगर होती मैं आर्य स्त्री तो क्या होता आपका यही उत्तर।
1: वाह।
0: तब तो राजदरबार बैठते, तब तो तहकीकात होती, चर्चाएं होती, न्याय मंडली बैठती, न्याय होता। चूंकि मैं आर्य नहीं हूं इसलिए आपको लगा कि यू कैन इग्नोर मी।
1: ओहो।
0: तो इस तरीके के मुझे लगता है बहुत बुनियादी जो सवाल है हमारे ही समाज के विसंगति के, वो कहीं ना कहीं मेरे नाटक उठाते हैं। और वो केवल कोई सेंसेशन क्रिएट करने के लिए नहीं उठाते हैं, मुझे लगता है वो अंतर्मुख करने के लिए उठाते हैं। क्योंकि नाटक का मूल जो स्वभाव है वो किसके लिए नाटक करना है
1: जी।
0: नाटक केवल लोगों को हा हा हू हू करके जाओ घर में,
1: केवल मनोरंजन,
0: केवल मनोरंजन के लिए नाटक नहीं, मनोरंजन तो रुलाना भी है। 9 रसों में से कोई ना कोई एक रस ऑडियंस के मन में पैदा करना नाटक का मूल रस है, मूल स्वभाव है, मूल चिंतन है, मूल भाव है। हम ये कहते हैं कि नाटक इसीलिए करते हैं ताकि हम समाज को उसका आईना दिखाए,
1: बिल्कुल,
0: उसमें विसंगतियां क्या है, संगतियां क्या है, अच्छा क्या है, अच्छा क्या नहीं है, वो आईना दिखा के हम समाज में

0: एक अच्छा समाज कैसे हो, कल्याणकारी समाज कैसे हो, ये करने के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण देने के लिए नाटक होता है। वो हमेशा ऐसा नहीं है कि व्यवस्था के खिलाफ कोई विद्रोह बार बार दिखाने के लिए नहीं है
1: जी,
0: पर वो विसंगतियां हैं, जो विरोधाभास है वो सारा तो दिखाना नाटक का काम है ना। सिनेमा नहीं करेगा, नाटक नहीं करेगा, साहित्य नहीं करेगा, पेंटिंग नहीं करेगी तो कौन करेगा।
1: बिल्कुल, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: समाज को समृद्ध भी करना है, संवेदनशील भी करना है और आगे अच्छा समाज बनाने के लिए सोच के लेवल पर अग्रेसर भी बनाना है, इसके लिए ये मुझे लगता है कला दालन है।
1: बिल्कुल,
0: ये संस्कृति का दालन यही है कि वो आपको एनरिच करता है
1: जी,
0: एक आपके दायरे का विस्तार करता है, सोच का विस्तार करता है, आपकी दिमाग में जो दीवारें आपने बनाई है उसको ढहाने का काम करता है, क्योंकि आखिरी इंसान और आप दोनों एक ही है, क्योंकि आप एक भूमि के हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप एक हैं क्योंकि नैसर्गिक अधिकार आपको दोनों को एक ही दिया है और जिसका नाम है शांति से जीना। मुझे लगता है वो नाटक का मूल पर्पज है। अब वो पर्पज हम किस एंगल से दिखाए वो आपका तरीका है। अगर हम बीरबल की एंगल से दिखाएं तो बीरबल वही करता था जो अकबर को विसंगतियों का, विरोधाभास का वो आईना ही तो दिखाता था। वो भी नाटक ना करे तो कौन करेगा, वो भी सिनेमा ना करेगा तो कौन करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी व्यवस्था में नाटक का रोल यही होता है, व्यवस्था को अपना मन खुला होकर। इसीलिए एक कहावत है ना कि एक ऐसा कहते हैं कि अगर किसी भी समाज को आपको समझना है, मान लीजिए आप यूरोप गए या किसी भी समाज में कोई भी देश में चले गए, आपको उस समाज को फास्ट समझना है तो आप जाके उसके 5-6 नाटक देख लीजिए।
1: क्या बात है,
0: उस समाज का आकलन उस 5-6-7-8 नाटकों में से जो आपको जितने जल्दी मिलेगा उतना एक साल भर रहने से नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आईना दिखाता है। अगर ये सच्चाई है तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये निराशावाद है, ये तुलनात्मक फैसिलिटी का कम आंकना है एक

0: दूसरे को, ये जो दीवारें खड़ी करना है इंसान इंसान में, वो चाहे धर्म की है, जाति की है, परंपरा की है, वर्ण की है, वर्ग की है, कुल की है, परिवार की है, इससे क्या बनने वाला है
1: जी?
0: इससे कुछ नहीं बनने वाला। अगर हमें एक स्ट्रेंथफुल देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमें सारे समाज की सारी क्षमताओं को साथ लेकर इस देश का जब विकास करेंगे, तो हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप हमें विश्व गुरु बनाइए
1: जी। एनसीपीए में एक रिकॉर्ड आपने कायम किया था, एक ही दिन में 3 अलग अलग भाषाओं के नाटक
0: जी
1: हुए।
0: ये मध्यम व्यायोग नाटक जो था, इसको मैंने हमारे एकेडमी के विद्यार्थियों के लिए एज अ डेमो ऑफ क्लासिकल इंडियन थिएटर किया था। उसके बाद एक 10-12 शो के बाद वो खत्म हो गया और मैं भूल गया उस नाटक को। ये 2004 में किया था, 5 साल में वो बैच निकल गई।

0: एक 10-12 शो के बाद वो खत्म हो गया और मैं भूल गया उस नाटक को। ये 2004 में किया था, 5 साल में वो बैच निकल गई, उसके बाद भूल गए। कुछ सालों बाद जैसे मैंने कहा कि भास ने जो लिखे हुए नाटक में जो अधूरे छोड़े हुए थ्रेड्स है उसका कहीं ना कहीं मुझे हंट आउट करने लगे। बेटा भी पूछ रहा है और माता भी पूछ रही हिडम्बा भीम जी को, वो सारे सवाल बाद में दिखाई देने लगे और मैंने कहा कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग नाटक हो सकता है, इसका नया संस्करण तैयार करना पड़ेगा। ये रंगावृति नई तैयार करनी पड़ेगी, जहां भास रुके हैं उसके आगे भी तो हम नाटक को ले जा सकते हैं। इसको लेके हमने वो नाटक करने की बात सोची, पहले मराठी में करते हैं, फिर करते करते पता चला हम हिंदी में क्यों ना करें इसको।
1: क्या बात है।
0: तो हमने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके उसकी शुरुआत की। फिर ऐसा लगा कि यार ये हिंदी मराठी तो ठीक है, लेकिन जो कुछ मराठी या हिंदी भाषी लोग है जिसको जब तक आप अंग्रेजी में कुछ नहीं करते तब तक वो आपको समझना नहीं चाहते, अपनी संस्कृति को समझना नहीं चाहते, उनके लिए हम अंग्रेजी क्यों ना करें।
1: अब तीन भाषाएं हो गई
0: तो तीन भाषाओं में हमको लगा कि एक ही टीम के साथ करें, नहीं तो बड़ी सर्कस हो जाती। तो इसीलिए सारे मराठी स्पीकिंग एक्टर्स है मूलतः, उसी को हिंदी भी सिखाई, उसमें से बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी आती थी, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आती थी, तो वो अंग्रेजी भी हमारी इंडियन इंग्लिश है। तो ये सारे तीनों भाषाओं में 3 जुलाई 2011 को NCPA के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में इस नाटक को लेके हमने सोचा कि इसका शुभारंभ करेंगे
1: जी,
0: और तीनों नाटक एक ही दिन में ओपन करेंगे, एक ही टीम, एक ही डेट, एक ही थिएटर।
1: वाह।
0: तो हमने दोपहर 2 बजे मराठी में नाटक ओपन किया, वही नाटक प्रिया बावरी, उसके 3 अलग अलग नाम जानबूझ के रखे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता कि मराठी कौन सा है हिंदी कौन सा है। दोपहर 4:30 बजे हमने वही से नाटक किया मोहे पिया हिंदी में, और शाम को 7 बजे वही नाटक किया हमने ओ माय लव इस नाम से, वही नाटक तीनों भाषाओं में, सेम फॉर्म, सेम कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग इज सेम, भाषा अलग है, गाने अलग है, सब अलग है।
1: गजब।
0: और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया और आज तक वो विश्व रिकॉर्ड ऐसे ही है, अभी तक किसी ने तोड़ने की कोशिश नहीं की उसको, तो हम ही शायद तोड़ने की कोशिश करेंगे कि इसको और एक भाषा में गुजराती में करके 4 भाषाओं में एक ही दिन में कर लेंगे। तो इसको लेकर ऐसा काम हो गया और उस नाटक ने पूरे देश में गजब ढा दिया
1: जी।
0: मराठी में हमने 150-200 शो किए, हिंदी में अभी भी वो चल रहा है मोहे पिया, अभी 300 शो होने को आए हैं अलग से हिंदी में
1: जी,
0: वो कभी हम सेलिब्रेट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। अंग्रेजी के भी हमने 70-75 शो किए, तो हम ये 15 दिन के नोटिस पे हम किसी भी भाषा में ये नाटक कर सकते हैं।
1: क्या कमाल है।
0: हाँ, तो अभी बहुत सारे भारत भवन में भी, दिल्ली में भी संगीत नाटक अकादमी है या और कोई है, वो चाह रहे कि ये इस तरीके का एक प्रयोग हम दिल्ली में भी करें या और शहरों में भी करें, इस तरीके के आमंत्रण न्योते आ रहे हैं, अब हम उसके ऊपर भी सोच रहे हैं।
1: एक और कमाल है आपका, NSD के दोनों अवार्ड आपको मिले।
0: जैसे एक संगीत, क्योंकि हमारे देश में एक ही अवार्ड था जो संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिलने के बाद एक आपका रुतबा माना जाता था कि आपके योगदान को माना जाता था। मैं ये अनुपम खेर जी चेयरमैन थे तब, उन्होंने मुझे सोसाइटी का मेंबर बनाया। उसी समय हमने ये कहा कि भाई पूरे देश को, संगीत नाटक अकादमी तो पूरे देश को लेकर काम करती है, अब उसमें ज्यादातर अलग अलग भाषाओं में NSD के लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत है, पर अवार्ड देते समय ये तो ध्यान में रखा जाएगा कि भाई हर साल NSD एल्युमिनाई को तो वहां अवार्ड नहीं दिया जाएगा ना
1: जी,
0: दूसरे भी भाषाओं के लोग है और भी लोग है जिन्होंने भारतीय थिएटर को जिंदा रखा है और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतना ही स्वाभिमान पूर्वक है। तो हमें ये काम करना चाहिए, हमें 2 अवार्ड स्टार्ट करने चाहिए, नहीं तो बूढ़ा होने तक जब तक उसको 2 आदमी उठा के पकड़ के ले जाते तब उसके बाद अवार्ड दे के उसका इंस्पिरेशन क्या है
1: जी।
0: तो हमने एक सुझाव दिया था कि भाई ऐसे 2 अवार्ड, एक 50 साल के ऊपर जो रंगकर्मी ने आउटस्टैंडिंग काम किया है NSD के एल्युमिनाई ने, उसको एक अवार्ड दिया जाए, और 50 के नीचे जो भी नया हो 20-25 साल से लेके उस रेंज में एक अवार्ड दिया जाए, ताकि NSD जब एल्युमिनाई को अवार्ड देगी तो वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार है
1: जी,
0: तो हम NSD के एल्युमिनाई को ही इंस्पायर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर करते रहें, काम करते रहें। तो फिर वो सोसाइटी ने मंजूर कर लिया और एक युवा जो आवास पुरस्कार था उसको मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार के हैसियत से उसका नाम दिया।

0: और जो दूसरा था जो सीनियर को मिल रहा है वो बीवी कारंत स्मृति पुरस्कार
1: जी,
0: और हम भूल गए वो सोसाइटी में, फिर उन्होंने कोई कमेटी वगैरह बिठा दी और पहला ही जो पुरस्कार डिक्लेयर किया कि जो सीनियर कैटेगरी में पुरस्कार जो दिया गया बीवी कारंत पुरस्कार वो रतन थियाम जी को दिया गया,
1: आपके और गुरु,
0: हाँ हमारे गुरु मतलब
1: जी।
0: और दूसरा जो पुरस्कार युवा रंगकर्मी का पुरस्कार तो वो अमन केंद्रे को दिया गया,
1: क्या बात
0: अब तब तक के लिए योगदान के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहा और जब मैं एनएसडी छोड़ने के बाद मतलब मेरा टर्म खत्म होने के बाद 2-3 साल वो अवार्ड दे नहीं पाए थे कई कारणों की वजह से, उसके बाद 2-4 साल नहीं दे पाए थे, तो फिर हमारे बाद के डायरेक्टर ने वो सारे पुरस्कार की घोषणाएं की समिति गठित करके, तो उसमें से जो दूसरा पुरस्कार जो मिलता है
1: सीनियर वाला
0: वो मैं पहला एल्यूमिनाई हूं कि दोनों भी पुरस्कार, पहला तो स्मृति मिला ही था मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार और ये बीवी कारंत स्मृति पुरस्कार भी मुझे दिया गया। एंड ये भी एक रिकॉर्ड हो गया कि भाई ये दोनों पुरस्कार पाने वाला पहला एल्यूमिनाई ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वामन केंद्र है।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। और छोरी

0: लेकिन एक रिकॉर्ड और भी तो है कि वहीं पढ़ के वहीं के डायरेक्टर भी बने
1: जी,
0: और एक तूफानी कार्यकाल आपने किया जिसमें बहुत वाइब्रेंट काम वहां
1: हुआ। यस, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पहले भी कई सारे, मतलब जब विवेकानंद भी वहीं पढ़े थे वो डायरेक्टर हुए थे, ही वाज फर्स्ट एग्जांपल
0: जी।
1: उसके बाद बीएम शाह तो एनएसडी में नहीं पढ़े थे, लेकिन रतन थियाम हो गए, पर उन्होंने अपना डायरेक्टर का कार्यकाल पूरा नहीं किया, पर हुए वो भी। मोहन महर्षि हुए, पर उनके कार्यकाल छोटे छोटे रहे, मोहन महर्षि 2 साल के लिए रहे। उसके बाद कीर्ति जैन रही, उसके बाद अंकुर जी रहे
0: जी,
1: तो ये सारे जो थे वो वहीं पढ़े और वहीं डायरेक्टर हो गए।

0: पर महाराष्ट्र का ये पहला रंगकर्मी था जिसको सम्मान पूर्वक वहां पर विद्यार्थी के हैसियत से नहीं पर बाहर के कंट्रीब्यूशन के हैसियत से आमंत्रित किया गया एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो वहां पढ़ा था और उसके बाद डायरेक्टर बना कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये तो दर्ज हो ही जाएगा। पर वहां के इतिहास में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया उसमें से थोड़ा बहुत नाम तो ले ही लेंगे लोग ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए भी वो कार्यकाल वाइब्रेंट रहा ऐसा लोग अब कह रहे हैं। तब तो क्या होता है कि कोई भी कार्यकाल का महत्व योगदान रजिस्टर होने के लिए बीच में काल जाना चाहिए होता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। तो अब लोग कह रहे हैं कि दैट वाज वन ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वो इतना ही था कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करने गया था, जितना संभव है 24 घंटे से 36 घंटा कैसे हो सकता है ये कोशिश करके। मुझे लगता है कि वहां की खूबसूरती, मतलब कैंपस की खूबसूरती, कैंपस का आर्टिस्टिक होना, एकेडमिक जो हमारी गतिविधियां हैं उसको पुख्ता करना, जितनी विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उसको पहले सुनना, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बाकी चीजों के लिए नहीं, पहले विद्यार्थियों के लिए बनी हुई है
1: जी,
0: वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसमें क्या क्या मैं था तब उस समय में कौन सा माहौल था, फिर क्या खामियां थी, क्योंकि मैं यहाँ मुंबई विश्वविद्यालय में 10 साल एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स खड़ा कर चुका था, तो यहाँ क्या प्लस पॉइंट्स है, वो सारे उसमें ढालते ढालते ढालते ढालते एक बहुत स्ट्रांग एकेडमिक स्ट्रेंथ वाले विद्यार्थी पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को एक्टिंग में काम मिले, जो एक्टर्स है डायरेक्शन में डायरेक्टर को स्पेशलाइजेशन 3 कर दिए, 2 ही थे, एक एक्टिंग था और डिजाइन एंड स्टेज टेक्निक्स था, तो इसमें से डायरेक्शन हटाता था वो डिजाइनर को ही डायरेक्ट करने के लिए बोल देते थे। तो मैंने कहा ये उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है ना, डायरेक्टर एक सेपरेट टेम्परामेंट है, वो अलग स्वभाव है, डिजाइनर एक अलग स्वभाव है, एक्टर एक अलग स्वभाव है। तो सिलेक्शन से ही फिर हमने वो सारा माहौल बदलने की कोशिश की और तीनों स्पेशलाइजेशन वापस शुरुआत करके, तो एक ही साथ एक बैच के साथ दो दो नाटक करने से एक्टर को काम मिलना शुरू हो गया और जो एक्टर भी और डायरेक्टर भी, तो दोनों को भी ये कॉन्फिडेंस मिलना, और डिजाइनर कॉमन होते थे, उनको तो दो दो प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिलता था, फिर उनको अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन तो करना ही करना है। तो इस तरीके से मुझे लगा कि एकेडमिक माहौल बहुत स्ट्रांग बन गया, फैकल्टी जितनी संभव था देश की और दुनिया की लाने की कोशिश की गई, तो ये सारा है। उसके साथ साथ उसका विस्तार किया, जो लोग कहते थे कि वो नेशनल नहीं बचा है, उसका थोड़ा सा स्वभाव दिल्ली के आसपास का बना है, तो हमने कहा ऐसा नहीं है, हम उसको डिसेंट्रलाइज कर लेते हैं, मतलब एकेडमिक एक्टिविटी तो रहेगी लेकिन उसका विस्तार हो। मतलब मेरे दिमाग में ये था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा केवल एल्यूमिनाई को ये ना लगे कि ये हमारी संस्था है, पर जो भी थिएटर कर रहा है, वो चाहे अमेटर थिएटर कर रहा है, चाहे प्रोफेशनल कर रहा है, चाहे पैरेलल कर रहा है, चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चाहे मूवमेंट की हैसियत से थिएटर कर रहा है, चाहे चिल्ड्रन थिएटर कर रहा है, कोई भी किस्म का थिएटर कर रहा है, फार्मर का कर रहा है, कामगारों का कर रहा है, वो हर किसी को कोने में खड़े हुए किसी खेत में थिएटर करने वाले आदमी को ये लगना चाहिए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरी है,
1: वाह,
0: और मैं वहां जा सकता हूं, या वो मुझ तक पहुंच सकती है और मुझे लाभ दिला सकती है, वो ट्रेनिंग के लेवल पर हो, फेस्टिवल के लेवल पर हो। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शंस इन फेस्टिवल्स यहां से हो, क्वालिटी इज द ओनली क्राइटेरिया।
1: यस,
0: मैं हमेशा ये कहता था, भारत रंग महोत्सव हो या कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे जिसने बचपन हो, बाल संग हो, कोई भी हो, या हमारे आदि क्या कहते हैं ये क्लासिकल थिएटर का फेस्टिवल हमने शुरू किया, नॉर्थ ईस्ट में अलग फेस्टिवल शुरू किए, इस सब में एक ही था, क्वालिटी इज इन सेंटर। मैं ये कहता था भारंगम में कि अगर कल को मेरे पिताजी का नाटक आता है और यहाँ कंसीडर करने के लायक नहीं है तो उस डीवीडी को फेंक दो और तोड़ दो, कोई पर्सनैलिटी नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, कोई किसी का नहीं है, जो थिएटर क्वालिटी का काम करता है वो हम सबका है।
1: क्या बात है?
0: और उसको ही सेंटर में रख के कोशिश यही की गई कि 5 साल उस एनएसडी का जो क्वालिटेटिव माहौल है उसको भी एनहांस करने की कोशिश की गई, बहुत विनम्रता के साथ ये सब कह रहा हूं। दूसरा मुझे लगा कि जो विस्तार होना चाहिए था उसका, जैसे बंगलोर में हमारा एक सेंटर था पर वो रिसोर्स सेंटर बन के रह गया, तो हमने

0: ये तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उसको कन्वर्ट किया एक साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में और वहां बच्चों को स्कॉलरशिप देके अब वहां 20 बच्चे हर साल पढ़ते हैं। जो एक सेंटर नया क्लासिकल थिएटर में जो हमारी धारणा थी कि एक संस्कृत शैली का थिएटर जो करना चाहता है, सीखना चाहता है, कहीं और से थिएटर सीख के आया और उसको स्पेशलाइजेशन करना है, उसके लिए मौका ढूंढना चाहिए, रखना चाहिए। इसलिए वाराणसी में एक साल का कोर्स शुरू किया, सेंटर शुरू किया, और वो क्लासिकल इंडियन ड्रामा सीखने के लिए।
1: जी,
0: जो सिक्किम का सेंटर था वो एक साल का था, हमने कहा इसको दो साल करिए, फिर उसको दो साल करने का सारा जो कुछ था उसको करने की कोशिश की। एक त्रिपुरा में था, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए था, तो हमने कहा नहीं है, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग जो थिएटर एजुकेशन में निर्माण करना इतना ही उसका काम नहीं है, आर्टिस्ट निर्माण करना भी उसका काम होना चाहिए, थिएटर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, प्रैक्टिशनर भी निर्माण करे और हम टीचर भी निर्माण करे, इसी के लिए वो सेंटर, और दोनों सेंटर नॉर्थ ईस्ट कन्फाइंड हो कि वहां के लोगों के लिए बनाए, तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उस 7 और 8 स्टेट को होना चाहिए। तो इस तरीके से मुंबई सेंटर का जो लेआउट था वो पूरा सैंक्शन करके रखा था। जम्मू कश्मीर में भी अभी अभी सेंटर खुल गया मेरे आने के बाद, तो ये सारी बहुत अच्छी चीजें वहां करने का मौका मिला। फिर थिएटर ओलंपिक्स, एक सबसे बड़ी जो मतलब भारत रंग महोत्सव का, तो हमने ये तो किया ही किया, पर एक दिन मुझे अचानक पता चला कि थिएटर ओलंपिक्स नाम की कोई एक चीज होती है। तो जब मैंने उसका इतिहास ढूंढने की कोशिश की तो जो पहले ओलंपिक होता था जो स्पोर्ट्स का है, उसमें स्पोर्ट्स भी होता था, उसमें थिएटर भी होता था, म्यूजिक भी होता था, डांस भी होता था, विजुअल आर्ट्स भी होती थी, ये सब मिलके ओलंपिक होता था।
1: ओके,
0: पर आगे चलकर स्पोर्ट्स वाले ने उस प्लेटफॉर्म को हाईजैक किया और ये सब पीछे छूट गए। फिर थिएटर के कुछ लोग इकट्ठा आ गए और उन्होंने कहा कि यार हम इसका हिस्सा थे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ से गया। तो कुछ विद्वानों ने, थिएटर के रंगकर्मियों ने ये तय किया कि हम अपना थिएटर ओलंपिक्स क्यों ना शुरू करें, और फिर वो शुरू किया। पहला वो ग्रीस में हुआ और ये मुझे पता चला फिर बाद में तुर्की में हो गया, फिर कहीं जापान में हो गया, चाइना में हो गया, कनाडा में, यहाँ वहां हो गया, और 8वां होना है ये मुझे पता चला। तो मैंने अपने सोसाइटी से कहा कि भाई ये ओलंपिक अगर हमें मिलता है तो हमको लेना चाहिए। फिर हमारी मिनिस्ट्री है जो केंद्र सरकार की, उनको कहा तो उनकी परमिशन ले ली और 8वां थिएटर ओलंपिक्स भारत में हो, इसके लिए हमने कमिटी से रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा हमें आके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तो हमने बुलाया उनको, आइए, न्योता दिया, वो आए, सब देख लिया, दिल्ली देखा, मुंबई देखा, ये 2-4 जगह देखा, और उन्होंने कहा नहीं है, ओलंपिक होने लायक तो यहाँ है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और NSD कैन हैंडल इट, क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल तो हैंडल करती ही है। तो फिर उन्होंने वो हमको मौका दिया और सौभाग्य की बात है कि 51 दिन का तो 8वां थिएटर ओलंपिक्स हो गया, जो 17 राज्यों में हुआ, जम्मू कश्मीर से लेके त्रिवेंद्रम तक, और इधर मणिपुर और गुवाहाटी से लेके आसाम से लेके इधर अहमदाबाद तक, मुंबई, बंगलोर, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, ये सारे उसके सेंटर थे। 17 सेंटर में 51 दिन में हमने 450 नाटक, 32 देशों का पार्टिसिपेशन, ये मेजर नाटक जो मेन थिएटर में किए, उसी को यूथ से जोड़ने के लिए हमने 300 कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के 300 नाटक सेलेक्ट करके, मतलब उसमें भी 1100 नाटक आए थे, एक कमेटी ने 300 नाटक सेलेक्ट किए, वो 300 शो और फोक, ट्राइबल और स्ट्रीट प्लेयर्स जो है हमारे संस्कृति के आधार स्तंभ, वो कव्वाली से लेके सारा कुछ, तो उनके 600-650 शो,
1: तो ये तो कितने,
0: ये लगभग 1500 शो, 1500 शो हमने उसमें 51 दिन में किए, और जिसमें 25,000-26,000 आर्टिस्ट इन्वॉल्व हो गए देश के और दुनिया के।
1: ये तो बहुत भव्य,
0: बहुत बहुत हो गया, ये ऐसा माना गया कि ये भारत के इतिहास का नहीं, रंग जगत के इतिहास का नहीं, नाटक जगत के इतिहास का नहीं है, दुनिया के इतिहास का, नाटक जगत के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट किसी ने किया हो तो भारत देश ने किया, और वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने किया।
1: वाह वाह,
0: ये मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट हुआ। और एक बहुत अच्छी बात है, जितने

0: डायरेक्टर नाटक वाले थे, हमने 125 डायरेक्टर को इनवाइट किया जिन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया जिस किसी भी भाषा में, उनको हमने हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक इनवाइट किया कि भाई आप अपना बेस्ट प्रोडक्शन लेके इसमें शामिल हो जाइए। अब 125 तो नहीं हो पाए लेकिन 105 इनवाइटेड डायरेक्टर ने उसमें नाटक किए।
1: वाह,
0: कॉम्पिटेटिव फेस्टिवल में हमने कहा था कि उसमें 1200 नाटक आ गए, उसमें से 250 नाटक चुन लिए गए और विदेशी नाटक 32 देशों के नाटक आ गए। तो ऐसा मिलाकर ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा इवेंट हो चुका है और इतना बड़ा क्वालिटेटिव थिएटर फेस्टिवल मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ। उसके बाद तो एक्टिविटी चलती रहती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए और सौभाग्य से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए, और उसका मैं डायरेक्टर था, ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: सिनेमा के आकर्षण से आप कैसे बचे रहे अपने पूरे जीवन काल में?
1: नहीं, मुझे मालूम था कि मुझे पहले अपनी स्पेस नाटक में पैदा करना जरूरी है, क्योंकि मेरी जगह है। मैं कहीं भी जाऊं, भूला भटका हो जाऊं, पर गिरने के बाद मुझे अपनी एक जगह चाहिए, वो पुख्ता जगह तैयार होना जरूरी था। पर वो क्या हो गया कि मैं एकेडमिक से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया पहले से ही।
0: जी जी,
1: हाँ, एनएसडी हो गया, रिसर्च हो गया, आके एनसीपीएम में 10 साल, फिर वही एसोसिएट हो गया, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में 10 साल हो गया। जब भी मैंने थिएटर से फिल्म की तरफ जाने की कोशिश की, रंग देवता ने किसी न किसी बहाने मुझे वापस खींच लिया।
0: वहां नहीं जाना है,
1: वहां जाने नहीं दिया। मतलब ऐसी कोई परेशानियां या उस तरीके की अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी की कि आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं और ज्यादा कंट्रीब्यूट करो। मतलब मैं जाने मन नाटक किया और रणांगण किया, दो बहुत मेजर प्लेस थे मेरे हिसाब से, एक ही साल के आसपास किए मैंने। और ये तय किया था कि आप 5 साल में नाटक नहीं करूंगा, तब भी ये नाटक चलते रहेंगे और नाम गूंजता रहेगा, तो अब मैं फिल्म करूंगा। तो कोई एक प्रोड्यूसर उस समय मुझसे बहुत बड़ा मेगा इवेंट करना चाह रहे थे फिल्म में, और मेगा कंटेंट पे वो बजट लेके बैठे हुए थे। तो उसी दरमियान डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर, जो वाइस चांसलर थे मुंबई विश्वविद्यालय के, बाद में प्लानिंग कमीशन के मेंबर हो गए, फिर राज्यसभा के मेंबर हो गए, तो उन्होंने एक कमेटी स्थापन की। उस कमेटी में मुझे भी लिया गया और बोले कि 35 साल से मैंने देखा हिस्ट्री मुंबई विश्वविद्यालय में, नाटक का विभाग हो, इसके लिए इतनी कमेटियां हो गई, इतना हो गया, पर आज तक वो हो नहीं पाया। उसमें जब्बार पटेल थे, दामू केंकरे थे, मैं था, उसके बाद रघुवीर तड़ाशीलकर थे, जयंत पवार, ऐसे 7-8 लोग थे। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई कमेटी बिमिटी, आपकी कमेटी है अंतिम है, अब आपको 4 महीने के अंदर मुझे ये विभाग

0: शुरू करना।
1: अरे गजब,
0: आप जो जो चाहिए बताइए मुझे क्या चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा एक सिलेबस दे दो, तो हमने कहीं यहाँ वहां से कटिंग पेस्टिंग करके एक सिलेबस दे दिया उनको, जो उन्होंने एकेडमी काउंसिल में पारित कर लिया, मैनेजमेंट काउंसिल में पारित कर लिया कि हमको ये डिपार्टमेंट खोलना है। चौथे महीने में उन्होंने डिपार्टमेंट खोल दिया।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: वो चार महीना मेरे पीछे पड़े रहे कि तुमको इसका हेड होना है, तो मैंने मना कि मुझे तो जाना है, मैं तो सिनेमा करने वाला हूँ।
1: कोई मेगा प्रोजेक्ट है?
0: हाँ, मेगा प्रोजेक्ट है। और फिर उन्होंने जब्बार पटेल जी को, दामू केंकरी जी को, ये सारे हमारे दोस्तों को बोला कि नहीं इसको राजी करो। तो फिर वो होते होते फिर सुशील कुमार शिंदे जी तक बात पहुंच गई। और एक दिन उनका भी फोन आ गया कि वैसे भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर अच्छा नहीं है मुंबई में, तो इसीलिए अगर वो सही आदमी के हाथ में नहीं जाएगा तो फिर ये आप लोग रोते रहोगे। तो वो जो कह रहे हैं मुनगेकर, उसकी बात मानो। और मैं आपको महाराष्ट्र की जनता की ओर से बोल रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि एक दो तीन साल दे दो, दो दिन तीन तीन घंटा चार घंटा दे दो, बाकी अपना काम करते रहो। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है सर, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है तो आप, मैं आपको बता देता हूँ, 10 साल रात दिन काम करेंगे तभी खड़ा होगा। बोले जो भी है कर लो और इसको फाउंडेशन करके फिर बाद में छोड़ के जाओ। तो अब इतने सारे रंगकर्मी भी हैं, राजनेता भी हैं और मित्र भी हैं, ये सारे मेरे नाटक देखने वाले भी थे, तो सभी की ओर से, चारों ओर से वो लगा कि आपको करना, आपको करना चाहिए। फिर हमने कहा कि चलो यार इसको 2 साल के बाद प्रोजेक्ट को करते हैं, वह 3 साल के बाद फिल्म को, तो वो स्वीकारना पड़ा। और एक बार वो स्वीकारने के बाद 2003 में मैंने उसको स्वीकारा, 13 कब आया मुझे समझ में नहीं आया।
1: जो दो तीन साल
0: सोचा था। और रात दिन मैं सुबह 7:45 बजे पहुंचता था, रात को 12 बजे घर पहुंचता था।
1: अरे बाप रे।
0: पर चूंकि वो उतनी इन्वॉल्वमेंट से किया, इसलिए एक नेशनल लेवल का 10 साल में एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, और जहां पर लोग पढ़ने के लिए ज्यादा पसंद करते थे बजाय के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाए। तो जो सारा का सारा फ्लो था वो वहां से मुंबई की तरफ मुड़ गया, क्योंकि अल्टीमेटली मुंबई में ही जाना है सबको, मतलब ज्यादातर लोगों को, अपवाद तो बहुत है। तो फिर 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी मिल रही है।
1: जी जी।
0: तो ये भी जिसको एकेडमिक्स में जाना है उसके लिए ये भी और एक शॉर्टकट हो गया। और वो सारे लोगों को हम बुलाते थे जो बाहर जाके, जिनके साथ इनको काम करना है, चाहे वो फिरोज अब्बास खान है, चाहे दिनेश ठाकुर है, चाहे रमेश तलवार है, एमएस सत्यू साहब है, जब्बार पटेल है, डॉक्टर लागू है, नीलू फुले जी है, विजया मेहता जी है, जितने भी मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और परेश रावल जी है, नसीरुद्दीन शाह है, मैं ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं हमने जिनको बुलाया नहीं। तो एक तरीके का वो अड्डा बनते बनते वो एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, वो भी एक अपने आप में एक यूनिक, यूनिवर्सिटी के पूरे प्रेशर में, सेटअप में वो खड़ा करना भी अपने आप में एक चैलेंज था, बट आई एंजॉयड दैट आल्सो। और एक बहुत अच्छे, एक से एक बेहतर प्रोडक्शन भी हो गए। ये मध्यम व्यायोग तो उसी के लिए किया था। फिर ईडीपस किया, 2 मंजिला सेट लगा के। मेरे बाद और भी डायरेक्टर्स ने भी काम किया, विजय केंकरे ने किया, चंद्रकांत कुलकर्णी ने आके काम किया, पुरुषोत्तम बेर्डे ने किया, रंजीत कपूर ने आके काम किया, अंकुर जी ने आके काम किया, इतने सारे। और ये पहला विभाग है पूरे देश में यूनिवर्सिटी के मर्यादा में कि पहले साल हमने अपना नेशनल फेस्टिवल शुरू किया।
1: वाह वाह वाह।
0: राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव।
1: जी।
0: इसमें ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है कि जिसको हमने इनवाइट नहीं किया, पूरे हर एक। रतन थियाम मणिपुर से 2 बार आ गए, बंसी कौल आ गए, उसके बाद रैना साहब आ गए, उसके बाद रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आ गए, मतलब कोई भी, साउथ का बी जयश्री आ गई, अहमदाबाद से फलाना आ गया, सौम्या जोशी आ गए, इतने सारे पुराने भी डायरेक्टर्स और नए भी डायरेक्टर्स, सबको वहां लाया। ऐसे प्रोडक्शन हम चुन चुन के लाते थे कि जो अदरवाइज मुंबई में देखने सुनने को मिलेंगे नहीं, तो वो लंबी लाइन में खड़े होके लोग अंदर जाते थे और वो माहौल भी देखा हमने। और सारा का सारा विद्यार्थी ऑर्गेनाइज करते थे, हम सिर्फ उसके पीछे खड़े रहते थे।
1: वाह वाह।
0: कि अंत में अगले जनरेशन के रिस्पॉन्सिबल लोग बनाने का काम वो यज्ञ जैसा हो रहा था। तो वो भी एक अपने आप में मुझे लगता है कि मिसाल है, जो माहौल दिल्ली में मैं ले गया वो यहीं बनाया हुआ था।
1: जी।
0: क्या करने से बच्चे के जीवन में परिवर्तन होता है, वो सारा का सारा वहां, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें एड ऑन क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कम पड़ा था, क्या ज्यादा था। तो मुझे लगता है कि वो सारा जो एकेडमिक्स है उससे मेरी कहीं दोस्ती नहीं टूटी, जो प्रैक्टिसेस है उस

0: में मेरी कोई दोस्ती नहीं टूटी। तीसरा है मेरा रिसर्च का स्वभाव अभी तक वैसा ही है। चौथा है दुनिया भर का जो हो रहा है उसका कॉग्निजेंस रखना कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी एक अपने आप में दिलचस्प बातें थी। मुंबई में जो जो भी आता था, जो किसी भी देश से आए, वो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में आए बिना जा नहीं सकता था।
1: जी जी,
0: ऐसा कुछ हमने, चाहे ब्रिटिश काउंसिल हो, चाहे अमेरिकन सेंटर हो, चाहे जर्मन सेंटर हो, रशियन सेंटर हो, छोटे से छोटे देश का कोई भी रंगकर्मी आता था वो मुझे पता चलता था, क्योंकि वो नेटवर्क था, दोस्ती थी इन लोगों से, जो दिल्ली में भी बहुत काम आया मुझे बाद में आगे चल के। तो इसकी वजह से ये भी खड़ा हो गया। और अभी तक मैं जब तक था, मुझे लगता है 8 बार राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव हुआ, 8 या 9 बार
1: जी।
0: तो उसमें भी हमारे बच्चों को दुनिया भर का बेहतर नाटक देखने को मिलता था। कोई नॉर्वे से आ रहा है, एक कोई आदिवासी ग्रुप थिएटर लेके, उसका परफॉर्मेंस हम वहां करते थे।
1: बाबा,
0: मतलब ऐसा नहीं है, कहीं से भी कोई भी आए और हमको पता चले कि हम उसको हाथ जोड़ के पकड़ के लाते थे और जितना भी संभव है हमारी अपनी इसमें सुविधा देना उतना करते थे। क्योंकि एक क्लोज थिएटर कुसुमाग्रज जो भाषा सभागृह है वो हमारे हाथ में था, और एक ओपन एयर थिएटर हमने हमारे लिए हमारे इंजीनियर से कंस्ट्रक्ट करवा लिया था। उससे बेहतर थिएटर तो आज इस देश में कहीं नहीं है। ओपन एयर थिएटर में जाइए, माहौल है कि यहाँ बैठे बैठे आप करियों का आस्वाद ले सकते हो।
1: सही है, सही है। तो सिनेमा के जो आपके सपने हैं, आपकी धारा को,
0: तो इसीलिए सिनेमा, मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि मैं सिनेमा नहीं करूंगा। मुझे लगा था कि यहाँ पर एक स्पेस बननी चाहिए, आपकी जगह बननी चाहिए, और ये मेरा स्वभाव नहीं कि इसको छोड़ के उसको पकड़ो और उसको पकड़ के उसको ताड़ो। मुझे लगा कि ये जहां काम करना है, जहां आनंद आ रहा है, और हर बार आप अपनी डिस्कवरी कुछ कर रहे हो। मतलब अभी तक मैं कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं किया कि मैं अपने आप को रिपीट कर पाऊं। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी कुछ नया नाटक करना चाहिए।
1: जी जी,
0: सिनेमा का भी सपने आते हैं कि भाई मुझे ऐसा सिनेमा करना है कि जैसे पहले नाटक ने देश को हिला दिया, वैसे मैं कम से कम पहले फिल्म में दुनिया को हिला दूं। ऐसा कोई कंटेंट मैं ढूंढ रहा हूं, ऐसा कोई कहने का तरीका ढूंढ रहा हूं, ताकि वो माध्यम में जाने के बाद लोगों को ये ना बुलाए मेरा कुछ देखो।
1: जी जी जी,
0: वो अपने आप इतना बोलना चाहिए कि यार आई शुड गो एंड सी दैट फिल्म।
1: तब तक इस धारा को ऋत्विक आगे बढ़ा रहे हैं।
0: ऋत्विक के 2 या 3 सिनेमा आ गए हैं, और तीसरा ही पिछले हफ्ते में उसके सिनेमा का फिल्म फेस्टिवल में एक स्क्रीनिंग हुआ है।
1: जी जी,
0: उसके पहले उसका ड्राई डे एक सिनेमा रिलीज हो गया है। अभी रिसेंटली एक बहुत इम्पोर्टेंट सिनेमा है जो उतना अंडरलाइन होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया, पर आगे चलकर होगा। सरगम नाम का सिनेमा है और बहुत यूनिक स्टोरी पे बनाया है, और उसका खासियत यह है कि गिरीश कारनाड जी का आखिरी सिनेमा है जिसमें गिरीश कारनाड जी ने स्वतः काम किया है।
1: जी,
0: और वो मराठी सिनेमा है, और वो बहुत अच्छा रोल किया है गिरीश कारनाड जी ने, और ऋत्विक और गिरीश कारनाड जी आमने सामने हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: ऋत्विक प्रमुख भूमिका में, नायक की भूमिका में है, और वो ऐसा लगता है खलनायक है लेकिन वो है ही नहीं।
1: जी,
0: तो ये सारा जो मुझे लग रहा है कि ये जो धरोहर है या ये जो थ्रेड्स है या जर्नी है वो तो आगे चलती रहेगी। ऋत्विक अपने तरीके से वो थिएटर भी कर रहा है और सिनेमा में भी काम कर रहा है, और भी कुछ वो करना चाह रहा है जो कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है।
1: अच्छा क्या बात है,
0: ये तो चलते रहेगा सिलसिला, पर सिनेमा भी करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव रेजिस्टेंस अबाउट सिनेमा, आई एम वेरी हैप्पी विद सम एक्सप्रेशंस। सिनेमा में भी लोग बहुत यूनिक काम कर रहे हैं और भारतीय सिनेमा भी कर रहे हैं
1: जी,
0: पर वो मेन स्ट्रीम में नहीं है।
1: जी,
0: मेन स्ट्रीम जो हमारा व्यावसायिक सिनेमा है उसमें बहुत रेयरली आपको लगता है कि यार ये ठीक है।
1: जी,
0: इसलिए मैं सेंसर बोर्ड का बोर्ड मेंबर भी हूँ, तो वो इसीलिए हूँ कि मैं सिनेमा देखते रहता हूँ
1: हर तरह के
0: सिनेमा देखते।
1: जी, वामन केंद्रीय जी, आपकी तमाम अगली अभिव्यक्तियों का हमें इंतजार रहेगा, और इस लंबी बातचीत में बहुत आनंद आया। सबसे अच्छी बातचीत वो होती है जिनमें अगली बार की बातचीत की गुंजाइश बनी रहे।
0: जी जी जी,
1: मुझे लगता है इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूनुस जी और विविध भारती का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना सारा गपशप करवाने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू, धन्यवाद।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का 4th

और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना, मिति 7 सितंबर दिन सोमवार नु शाम 5 बजे प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत दौरान, सिलसिला अपना विरसा अपना सभ्याचार।

0: आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे श्रोतियो, मिति 7 सितंबर सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सर्जरी सवेर दे तहत तुसी सुनोगे सिलसिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस दे तहत तुसी सुनोगे दिलचस्प विषय आवाज दा सफर। पुराने जमाने तो लेके आज दी AI तक जिथे जानांगे आवाज नू रिकॉर्ड करन संभालन अते दुनिया दे एक कोने तो दूजे कोने तक पहुंचाउण दी टेक्नोलॉजी किवें बदल दी गई। प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भुलना, मिति 7 सितंबर दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत सिलसिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय आवाज दा सफर।
1: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है जी आकाशवाणी FM बठिंडा तो मिट्टी वाजा मारदी। इस प्रोग्राम का समा भी दस दिए सुन वाले सारे दोस्तों ना, तुसी इस प्रोग्राम का आनंद मानोगे शाम के 5 बजे तो लैके 5:30 बजे तक। तो तकरीबन हजे साढ़े स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक फोन जिहड़े असी मिलाने ने इधरों तकरीबन 16 मिनट का समा पिया है जी। तो 0164-2240-3131 असी नहीं तुहानू दसांगे नंबर, क्यों नहीं दसांगे उसका कारण यह भी यह प्रोग्राम डायल आउट बेस सिस्टम है, यानी कि असी आकाशवाणी FM बठिंडा के स्टूडियो के विचों इधरों लोगों को नंबर मिलावांगे तो उन्होंने राबता कायम करांगे। तो जब तक कोई दोस्त असी इधरों मिला के तुहाडे नाल सारयां दे नाल सांझा करांगे, तद तक आपां सुणांगे जी एक खूबसूरत गीत आवाज़ कुलदीप मानक की।

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना, मिति 7 सितंबर दिन सोमवार नू शाम 5 बजे प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत दौरान, सिलसिला अपना विरसा अपना सभ्याचार।

0: मिती 8 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम घर परिवार दे दौरान तुसी सुनोगे सिलसिला छावां ठंडिया ने बोर दिया। ते इस वार दे साडे मेहमान होंगे श्री राम प्रसाद मदान। ते उना नाल गल बात करांगी मैं यानी की दीपा छाबड़ा। सो सुनना जरूर इस वार दा सिलसिला छावां ठंडिया ने बोर दिया। मिती 8 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:30 बजे।
1: ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਆਗਿਆ।

हुने तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम गल्लां चों गल्ल। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दी प्रसारण। इस वेले साडे स्टूडियो दी घड़ी दे मुताबिक शाम दे 6:18 ते 44 सैकेंड होए ने। ठीक 6:20 ते रिले करांगे परदेशी खबरां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों। ते खबरों तो बाद आकाशवाणी FM बठिंडा अपना प्रोग्राम पेश करेगा युवाणी। आज दे इस प्रोग्राम के तहत तुसी सुनोगे सिलसिला रोजगार समाचार। ते उस तो बाद यानी कि ठीक 7 बजे फरमाइशी गीतों का लाइव फोन इन प्रोग्राम तुसी सुन सकोगे शाम सुहानी। ते इस प्रोग्राम का आनंद मानोगे रात के 8 बजे तक। 0164-22-40-331 आकाशवाणी FM बठिंडा के स्टूडियो का नंबर मिलाओ ते इस प्रोग्राम दे विच तुसी जुड़ सकते हो। 50 मिनट दे इस प्रोग्राम दे विच स्रोते साडा स्टूडियो नंबर मिला के साडे नाल राबता कायम करनगे। समा रहेगा प्रोग्राम शाम सोनी दा 7 बजे तो लैके 8 बजे तक। ते 8 बजे तो लैके 8:00 रात दे 45 मिनट तक तुसी सुनोगे गज़लां ते आधारित प्रोग्राम रंगे गज़ल। ते इस वेले स्टूडियो दी घड़ी दे मुताबिक 6:19 ते 48 सैकेंड होए ने। ठीक 6:20 ते रिले करांगे परदेशी खबरां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: तुहाडी चा EMI किराया किवें मैनेज करा? वो एक जुगाड़ है, चंगा पैसा मिलूगा। किवें? अपने बैंक का वेरवा दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उन्होंने दसे खाते विच पैसे ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलूगा। एना सौखा? वो कादा सोखा, ये मनी म्यूल है, गैर कानूनी पैसे कमाते ने दूजिया के खाते राही, अपराध है, वो जेल हो सकती है। ना भाई जी ना, अपना बैंक खाता सुरक्षित रखो, किसी नु वर्तन ना दियो। RBI कहता है
3: जानकार बनो ते सचेत रहो।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है, हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। सर्वोच्च अदालत ने कॉलसियम की सिफारिश तो बाद पंजाब के हरियाणा हाईकोर्ट समेत 8 हाईकोर्टा च नवे चीफ जस्टिस नियुक्त किए। राज जैव विभिन्नता बोर्डा ते केंद्र शासित प्रदेश जैव विभिन्नता परिषदा की 16वीं राष्ट्रीय मीटिंग चंडीगढ़ च शुरू हुई। पंजाब सरकार वालों अज जलंधर के आदमपुर में श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पुरब को समर्पित एक विशाल नगर कीर्तन दरबार आयोजन किया गया। कोला मंत्रालय ने उन्होंने मीडिया रिपोर्टा खारिज किया जिन्होंने केंद्र तो कोले की नाकाफी सप्लाई पंजाब के थर्मल पावर प्लांटा से घट बिजली उत्पादन का कारण दसया जा रहा है। गुरदासपुर पुलिस ने 3 वक् वक् मामलों च 2 किलो हैरोइन समेत 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया। सर्वोच्च अदालत के कॉलजियम की सिफारिश तो बाद 8 हाईकोर्टा में नवे चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। सोशल मीडिया एक्स से एक पोस्ट में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पंजाब के हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को अदालत का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के मौजूदा जज वलूरी कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। बंबे हाईकोर्ट के जज रविंदर वी कुगे कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अते संजय कुमार अग्रवाल राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। अल्पेश यशवंत कोकसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और पुष्पेंद्र सिंह भाटी जम्मू कश्मीर के लद्दाख हाईकोर्ट के जस्टिस महेंद्र चंद्र त्रिपाठी बंबे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक ने रवायती ज्ञान और भाईचारक भागीदारी समकाली संभाल पहुंच नाल जोड़न की महत्ता पर जोर दिता है। प्रशासक आज चंडीगढ़ में राज जैव विभिन्नता बोर्डा और केंद्र शासित प्रदेश जैव वन सुवनता परिषदा की 16वीं राष्ट्रीय मीटिंग के उद्घाटन मौके बोल रहे सन। जिक्रयोग है कि राष्ट्रीय जैव विभिन्नता अथॉरिटी वालों आयोजित 6 से 7 सितंबर तक होने वाली इस 2 रोजा मीटिंग च देश भर के बोर्डा के परिषदा के चेयरपर्सन मैंबर सकत्तरां दे नालों नाल सीनियर अधिकारियां माहर ते विज्ञानियां ने हिस्सा लिया। इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं राज्यपाल श्री कटारिया ने भारत की अमीर जैविक विरासत ते रवायती वातावरण कदरां कीमतां ते चानणा पाया। गुलाब चंद कटारिया ने जोर दे के कहा कि वातावरण सुरक्षा भोजन ते पानी सुरक्षा रोजी रोटी ते पायदार विकास नाल नेड़ियों जुड़ी हुई है। राज्यपाल ने पंजाब ते चंडीगढ़ दीआं जलगाहां नदी ते वातावरण प्रणालियां ते खेतीबाड़ी जैव विभिन्नता दे वातावरण महत्व वल भी ध्यान दवाया। उन्हां जैव विभिन्नता प्रबंधन कमेटियां ते पीपल जैव विभिन्नता रजिस्टरां नूं मजबूत करन दी लोड़ ते जोर दिता ते जैव विभिन्नता संस्थावां ते स्थानक भाईचारां दरम्यान नजदीकी तालमेल दी मांग कीती। इस मौके अपने संबोधन च केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण तहत किए गए वख-वख उपरालों का हवाला दिता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जैव विभिन्नता सोध एक्ट 2023 ते जैविक विभिन्नता नियम 2024 ने देश के जैविक विभिन्नता शासन ढांचे नूं होर मजबूत ते सुचारू बनाया। उन्होंने राजां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं आपो अपने नियमां संस्थागत विधियां अते लागूकरण प्रक्रियावां नूं सोधे हुए ढांचे नाल इकसार करन दी अपील कीती। पंजाब सरकार वल्लों अज आदमपुर दी दाणा मंडी विखे श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित एक विशाल नगर कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। इस मौके वड्डी गिनती विच श्रद्धालुओं ने अपने आप नूं रूहानी गुरबाणी कीर्तन च लीन किया। सूबे दे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस मौके इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं कहा कि श्री गुरु रविदास महाराज की दित्तीआं सिक्ख्यावां अज दे समाज विच बहुत प्रसंगक ने क्योंकि ये लोगों नूं जात नसल ते समाजिक वंड तो उपर उठ के समानता समाजिक न्याय सद्भावना ते आलमी भाईचारे लई काम करन वास्ते प्रेरित करदियां ने। पंजाब भर विच वख-वख थावां ते विशाल कीर्तन दरबार आयोजित कीते जा रहे ने। उधर जिला श्री मुक्तसर साहब के पिंडां विच वी गुरु जी नाल संबंधित दस्तावेजी फिल्म दिखाउण दा सिलसिला जारी है। बीते दिन

sbi.bank.in। अगला रोजगार समाचार युवा साथियों तुहाडे नाल सांझा कर रहे हैं जी। असी हुण रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वालों जूनियर इंजीनियर दियां कुल 4029 असामियां नूं पुर करन लई योग उम्मीदवारां पासों अर्जियां की मांग की जाती है। इन्हां 4029 जूनियर इंजीनियर दियां असामियां दे लई ऑनलाइन अर्जियां भेजण की जिहड़ी आखिरी तारीख रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वालों निश्चित की गई है वह है जी 13/9/2026 यानी कि 13 सितंबर 2026। तो इन्हां 4029 असामियां जेई दियां यानी कि जूनियर इंजीनियर दियां लई जिहड़ा एडवरटाइजमेंट नंबर है यानी कि सेंट्रलाइज्ड इंप्लॉयमेंट नोटिस नंबर है वह भी युवा साथी नोट कर लैन वह है जी 4/2026। तो इन्हां असामियां संबंधी सारिया शर्तों नूं विस्तार च वेखण दे लई यानी कि जेई दियां जिहड़ियां 4029 असामियां ने उन्हां संबंधी सारिया शर्तों नूं तुसीं जे विस्तार च देखना चाहते हो तो वैबसाइट नोट कर लैन। वैबसाइट युवा साथी है www.indianrailways.gov.in। युवा साथियों प्रोग्राम युवाणी तहत आपां तुहाडे लई होर भी रोज़गार समाचार अज्ज दे इस प्रोग्राम दे विच शामिल करांगे, पर हुण सुणांगे जी आपां गीत जिस नूं आवाज़ दित्ती है गिप्पी गरेवाल ने।

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई।
1: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो मिती 7 सितंबर दिन सोमवार नू शाम 5 बजे प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत दौरान तुसी सुनोगे सिलसिला अपना विरसा अपना सभ्याचार ते साडा इस वार दा विशा होएगा मालवे दे देसी रुख।

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना, मिति 7 सितंबर दिन सोमवार नु शाम 5 बजे प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत दौरान, सिलसिला अपना विरसा अपना सभ्याचार।

आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे स्रोतियो, मिति 7 सितंबर सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सर्जरी सवेर दे तहत तुसी सुनोगे सिलसिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस दे तहत तुसी सुनोगे दिलचस्प विषय आवाज दा सफर। पुराने जमाने

0: जी
1: जी वैसे ही मौसम भी हमारे यहाँ पे एकदम शाम सुहाना है। हाँ
0: अच्छा, आपका भी शाम सुहानी प्रोग्राम चल रहा है, तो मौसम भी बड़ा सुहावना है यहाँ पर।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी,
1: और
0: तो
1: बताना चाहूंगा मैं
0: है जी
1: जी, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: जी जी हमारे जो कार्यक्रम चलते हैं वो आप ऐप के जरिए सुनते होगे।
1: हाँ मोबाइल ऐप पर सुनता हूँ मैं।
0: जी, बहुत बहुत आपके साथ हमें बात करने के बाद खुशी हुई जी। इसी तरह हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखना और हमारे कार्यक्रम जो चलते हैं प्रसारित होते हैं उनको सुनते रहना। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका भी।

0: बीजी माफ कर दो।
1: लगदा खुशखबरी आने वाली है।
2: खुशखबरी ता लोका दी हुंदी आ, साडी ता दुखखबरी होवेगी। मेनू ते मेरे घर वाले नु HIV है ते मेनू डर है कि मेरे बच्चे नु भी HIV होवेगा।
1: ओ फेर ता तुहानु दो खुशखबरियां दिने आ।
2: ओ किवें डॉक्टर साहब?
1: HIV नाल जी रही कोई भी लेडी EVTHS प्रोग्राम अधीन ARV दवाइयां लेके एक सेहतमंद ते HIV मुक्त बच्चे नु जन्म दे सकदी है। बस शर्त ए है कि गर्भवती होण तो बाद सरकारी हस्पताल विच डॉक्टर दी सलाह नाल समय सिर दवाई शुरू कर ली जावे ते जनेपा हमेशा हस्पताल विच करवाया जावे। ये इलाज भी मुफ्त है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
3: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, मिति 7 सितंबर दिन सोमवार नूं शाम 5 बजे प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत दौरान तुसी सुनोगे सिलसिला अपना विरसा अपना सभ्याचार। ते साडा इस वार दा विशा होएगा मालवे दे देसी रुख।

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना, मिति 7 सितंबर दिन सोमवार नू शाम 5 बजे प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत दौरान, सिलसिला अपना विरसा अपना सभ्याचार।

आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे स्रोतियो, मिति 7 सितंबर सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत तुसी सुनोगे सिलसिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस दे तहत तुसी सुनोगे दिलचस्प विषय आवाज दा सफर। पुराने जमाने तो लैके अज दी AI तक

जिथे जानांगे आवाज नू रिकॉर्ड करन संभालन अते दुनिया दे एक कोने तो दूजे कोने तक पहुंचाउण दी टेक्नोलॉजी किवें बदलदी गई। प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भुलना, मिति 7 सितंबर दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत सिलसिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय आवाज दा सफर।

0: मिति 8 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम घर परिवार दे दौरान तुसी सुनोगे सिलसिला छावां ठंडिया ने बोर दिया। ते इस वार दे साडे मेहमान होणगे श्री राम प्रसाद मदान। ते उन्हां नाल गलबात करांगी मैं यानी की दीपा छाबड़ा। सो सुनना जरूर इस वार दा सिलसिला छावां ठंडिया ने बोर दिया। मिति 8 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:30 बजे।
1: लो जी प्रोग्राम शाम सवानी दे विच 0164-22-40-331 नंबर मिला के अगले कॉलर जुड़ चुके ने। हेलो
2: हेलो
1: हां जी नाम दसो जी।
2: वीर जी साडा नाम नवरीत कौर है।
1: किथों बोलदे ने नवरीत कौर?
2: वीर जी असीं फरीदकोट जिले दे कांदाला पिंड दा।
1: अच्छा जिला फरीदकोट।
2: हां जी
1: नवरीत ने आपे नंबर मिलाया साडे स्टूडियो दा।
2: हां जी
1: चलो वधिया गल आ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨਗੇ?
2: ਜੁੱਤੀ ਕਸੂਰੀ।
1: ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ?
2: ਹਾਂਜੀ।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ?
2: ਹਾਂਜੀ।
1: ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚੋ?
2: ਫੋਰਥ।
1: ਚੌਥੀ ਚੋ?
2: ਹਾਂਜੀ।
1: ਫਿਰ ਭੈਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹਨਾ?
2: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
1: ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਐਨ ਚੱਕ ਦੀ ਫੱਟੇ ਕਰਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀ ਨੰਨੀ ਮੁੰਨੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਗੀਤ।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ।

0: जी
1: हाँ जी, शुक्रिया
0: नाम दास दो थे, फरमाशी की दास दो।
1: जी। नाम नंदराम, पिंड मीठड़ी, जिला मुक्तसर साहब। तो ये गुरदास मान दा सैकड़ा जी।
0: साइकिल गीत सुना गुरदास मान की आवाज।
1: हाँ जी, हाँ
0: चलो जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, तुहाडी फरमाइश ते सुनते हैं गुरदास मान नू।
1: ठीक है भाई जी, शुक्रिया जी।
0: शुक्रिया जी तुहाडा भी कॉल मिलाने लिए।

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना, मिति 7 सितंबर दिन सोमवार नु शाम 5 बजे प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत दौरान, सिलसिला अपना विरसा अपना सभ्याचार।

0: आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे स्रोतियों, मिति 7 सितंबर सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सर्जरी सवेर दे तहत तुसी सुनोगे सिलसिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस दे तहत तुसी सुनोगे दिलचस्प विषय आवाज दा सफर। पुराने जमाने तो लेके आज दी एआई तक जिथे जानांगे आवाज नू रिकॉर्ड करन संभालन अते दुनिया दे एक कोने तो दूजे कोने तक पहुंचाउण दी टेक्नोलॉजी किवें बदल दी गई। प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भुलना, मिति 7 सितंबर दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत सिलसिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय आवाज दा सफर।
1: जी दोस्तों, 0164-22-43-331 आकाशवाणी FM बठिंडा दे इस नंबर नूं डायल करके अगले दोस्त जुड़ चुके ने। जेकर तुसी भी साडे इस चलदे प्रोग्राम दे विच शामिल होना चाहुंदे हो तां इस नंबर नूं मिला के शामिल हो सकदे हो। अगले केड़े कॉलर जुड़े ने देखदे हां, सज्जन दा नाम पुछांगे, फरमाइश चाहांगे। हैलो,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, गहरी बुट्टर जिला बठिंडा तो लखवीर सिंह जी, केड़ा गीत क्या? मेहरबानी।

0: मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का, रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई।

0: पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
2: दो टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, जहां पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहां पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है, उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
3: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
3: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग डिनिस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के

0: इसलिए हैं ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
3: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
2: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के

0: मारी से गिरफ्तार किया है। शेरो पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर है और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
1: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Multi-story building collapses in Satyaniketan area of Delhi. 3 persons dead and 11 evacuated. Several feared trapped as rescue operation continues. Home Minister Amit Shah announces a 3-year roadmap for drug-free India by 2029, outlines 4-pillar strategy to dismantle narcotics networks. Vice President C.P. Radhakrishnan urges youth to shun substance abuse, lead healthy and disciplined lives, calls for constructive use of social media. Science and Technology Minister Jitendra Singh calls for expanding India's growing startup ecosystem beyond metropolitan centers, stresses stronger science, startups and industry linkages. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches maiden title at China Masters in Shenzhen. And now the news in detail. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said, relief and rescue operations are continuing on a war footing. Ms. Gupta said, those found responsible for the incident will not be spared.
3: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं,
2: Whether it is the building owner or any official found responsible, guilty will not be spared.

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर
3: सिर्फ विविध भारती पर।
4: कुमार सानू और अलका याग्निक को सुनिए। फिल्म का नाम है हम सब चोर हैं। गीत है नवाब आरसू का, संगीत बप्पी लहरी का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये प्रोग्राम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, पर या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

0: होने दो।
1: 6 सितंबर 1949 को मुंबई में जन्मे राकेश रोशन, संगीतकार रोशन लाल नागरथ के पुत्र और संगीतकार राजेश रोशन के भाई हैं और ऋतिक रोशन के पिता हैं। और अब तो राकेश रोशन का नाम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्माता निर्देशकों में शुमार होता है। लेकिन पिता संगीतकार रोशन के अचानक देहांत के बाद राकेश रोशन के लिए अपने करियर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ऐसे में उनकी मदद के लिए आगे आए निर्माता निर्देशक मोहन कुमार। इन्होंने कई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को राकेश रोशन का नाम सजेस्ट किया एक्टिंग के लिए और आखिर 1970 में फिल्म घर घर की कहानी से राकेश रोशन की एक्टिंग की कहानी शुरू हुई।

ये गाना जो अभी आपने सुना, अभिनेता जलाल आगा पर फिल्माया गया था। इस फिल्म घर घर की कहानी में राकेश रोशन सपोर्टिंग रोल में थे। बतौर अभिनेता उन्होंने अधिकतर सपोर्टिंग रोल्स ही किए। सोलो हीरो के रूप में उनकी कम ही फिल्में आईं, लेकिन जो भी आईं वो भी यादगार रहीं। और उनका संगीत तो सुपर

0: वराधन फिल्म में हेमा मालिनी के साथ थे तो आंखों आंखों में इस फिल्म में राखी के साथ।
1: सुनरी को समझा ले, मुखड़ा तेरा छिपाती है।
2: अच्छा

0: जरा इधर कर लूं।
1: हाँ कर लूं जी, कामों में हाथ तुझे भर लूं।
0: कर लो जी।
2: एक कुंवारा एक कुंवारी में लीला चंद्रावरकर के साथ।
0: अगर

0: इन दोनों ही फिल्मों में हालांकि मुख्य भूमिकाओं में देवता में संजीव कुमार थे और जख्मी में सुनील दत्त, लेकिन राकेश रोशन ने अपनी उपस्थिति बहुत ही पुरजोर तरीके से जाहिर की। उसके बाद फिल्म खट्टा मीठा में गोविंदिया गोस्वामी के साथ इनका ये गीत आज भी लोगों का दिल जीत लेता है।
1: ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ।

ऐसी ही और भी फिल्में हैं। इनमें एक फिल्म याद आती है, फिल्म खूबसूरत। हालांकि फिल्म में टाइटल रोल रेखा का था, लेकिन राकेश रोशन और रेखा की जोड़ी ने बहुत ही कमाल अभिनय किया।

ऐसी और भी फिल्में हैं जिनमें राकेश रोशन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे, लेकिन इससे राकेश रोशन खुश नहीं थे। इसीलिए 1980 में राकेश रोशन ने स्थापित की अपनी फिल्म निर्माण संस्था फिल्म क्राफ्ट और फिल्म बनाई आपके दीवाने।

0: तुझको देखा नहीं था, देखे हसीन तो लाखों हजारों है, कोई भी तुम सा नहीं था। काली जुल्फे उड़ते बादल, गोरा चांद का चेहरा, तेरा जलवा तौबा है तेरा जलवा, अरे जब से देखा तौबा है तेरा जलवा।
1: फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया तो फिर बाद में जो फिल्म बनी वो थी कामचोर।
0: तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर

फिल्म कामचोर सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म को राकेश रोशन ने प्रोड्यूस किया था और यहीं से शुरू हुआ राकेश रोशन की फिल्मों में क शब्द का कमाल। यहां से आगे राकेश रोशन ने जो भी फिल्में बनाई उनका शुरुआती अक्षर क रहा और अब तो राकेश रोशन एक ब्रांड बन गए। राकेश रोशन ने 1987 में निर्देशन की कमान भी संभाल ली। फिल्म थी खुद

खुदगर्ज की सफलता के बाद राकेश रोशन सफलता की गारंटी माने जाने लगे। खून भरी मांग 1988 में रेखा के साथ, फिर किशन कन्हैया 90 में, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला, और इसके बाद कुछ वर्षों तक बतौर अभिनेता कुछ फिल्मों में कभी कभार नजर आए। लेकिन सन 2000 में बिग बैंग के साथ आए अपने बेटे को लेकर ऋतिक रोशन के साथ कहा, कहो ना प्यार है।

0: इस फिल्म कहो ना प्यार है की सफलता को तो सभी जानते हैं और ये भी जानते होंगे कि बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस फिल्म का नाम है क्योंकि इसे सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले। इसके बाद राकेश रोशन ने जितनी भी फिल्में बनाई सभी ने सफलता का एक नया मकाम हासिल किया। यहाँ ये भी बता दें आपको कि खूबसूरत फिल्म में रेखा के साथ अभिनय करने वाले राकेश रोशन ने अपनी दोस्ती को निभाया और रेखा को कोई मिल गया और क्रिश जैसी फिल्मों में बहुत ही दमदार भूमिका दी। तो अब वो फिल्में जिन्होंने सफलता का इतिहास रचा, कोई मिल गया।
1: यूं तो हम तुम मिलने को मिलते रहे पर क्यों आज

0: फिल्मकार राकेश रोशन के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की विविध भारती कामना करता है।
1: ऐसे ही चाहत

0: फिल्मकार राकेश रोशन पर केंद्रित इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

हमेशा या गीत में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसे फिल्मी गाने जिनके दो संस्करण हैं और सुनने के कौतूहल आश्चर्य और आनंद के लिए हमने इन दोनों संस्करणों को किसी अप्रत्याशित मोड़ पर जोड़ दिया है। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आंखों की कोरों से बरसता है दुख, छा जाते हैं उदासी के बादल और घनघोर घटाएं भिगो देती हैं सब कुछ। कभी कभी आसमान की मुंडेर से बजता है उदासी का वायलिन।

क्या किसी स्केल से नापा जा सकता है प्यार? कैसे कहें कि सही सही बयां हो जाए प्यार? अल्फाज नाप में जैसे कुछ कम पड़ जाते हैं, कई बार अल्फाज की बजाय खामोशी से काम लेना मुनासिब होता है।

जैसे आसमान पर चमके थोड़ी देर सूरज और फिर गुम हो जाए बादलों की ओट में, जैसे पत्ते पर ठहरे पानी की बूंद और हवा का झोंका आकर उसे ढुलका दे, जैसे होंठों पर तैरे एक सूक्ष्म मुस्कान और फिर छा जाए गहरी उदासी, इतनी थोड़ी सी खुशी, इतना थोड़ा

आज के छाया गीत में थे ऐसे गाने जिनके दो संस्करण हैं, और सुनने के आश्चर्य, कौतूहल और आनंद के लिए हमने किसी अप्रत्याशित मोड़ पर इन दोनों संस्करणों को आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

0: फिल्म महबूबा, आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन। फिल्म शर्मीली, नीरज सचिन देव बर्मन।
1: हमें तुमसे प्यार कितना
2: ये हाल नहीं।
0: फिल्म कुदरत, मजरूह सुल्तानपुरी, राहुल देव बर्मन। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार। ढलती जाए रात।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से

0: हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: चित्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।